किशोर कुमार की आवाज से सजा ये गीत मशाल फिल्म से साथियों अभी आपने सुना। 1984 रिलीज ये फिल्म। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था और जावेद अख्तर की लिखी रचना थी।

इस समय श्रोता साथी सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी। प्रातः के 5:35 हुए हैं। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। साथियों, भोर सुहानी हो चुकी है, सूर्य की किरणें सज चुकी हैं और हम भी तैयार हैं अपने सपनों को, जो सपने हमने बुने हैं उनको पूरा करने के लिए। आइए हम सब बढ़ें अपने सपने पूरा करने के लिए, जो हम सब ने बड़े ही चाव से बुने हैं।

मुकेश की आवाज से सजा। ये गीत अभी आपने सुना मुकेश की आवाज से सजा। आनंद ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1971 रिलीज ये फिल्म। सलील चौधरी का संगीत था, गुलजार की लिखी रचना। और अब जिंदगी का सबक देता, संदेश देता ये तराना।

जिंदगी का सुंदर संदेश देता ये गीत आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम पगला कहीं का, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। और अब एक और संदेश देता ये गीत।

0: लाते चले।
1: नौशाद का संगीतबद्ध किया ये गीत शकील बदायूं ने की लिखी रचना, फिल्म का नाम अनोखी अदा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1948 में, मुकेश की आवाज। और अब आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये गीत।

लता मंगेशकर, मुकेश की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, इंद्रजीत सिंह तुलसी के बोल, फिल्म का नाम शोर, रिलीज वर्ष 1972।

साथियों, इसी गीत के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई वर्ष 2026। प्रातः के 5:53 और 38 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दिए देते हैं। कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। छह बजकर 44 मिनट 30 सेकंड पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। बालकांड होगा इसमें। आज भाग 71 प्रसारित किया जाएगा।

संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 6:55 पर, 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं, अंग्रेजी में समाचारों का वक्त रहता है 7:05।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 7:10 पर। आज सवेरे इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 7:30 पर। समाचार प्रभात प्रातः 8:00। अंग्रेजी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा प्रातः 8:15 पर। उर्दू खबरें आप सुन सकते हैं प्रातः 8:30 पर।

म्यूजिकल दिल लगी ये कार्यक्रम सुन सकते हैं आप प्रातः 8:45 पर। समाचार सुन सकते हैं हिंदी में 9:00 और 9:05 पर अंग्रेजी में। ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मन से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अरकेल।

ईश्वर की योजनाएं हमारी सीमित इच्छाओं और समझ से कहीं ज्यादा बड़ी और खूबसूरत होती हैं। हमें अपनी इच्छाओं पर अड़े रहने की बजाय ईश्वर पर भरोसा करके उसके विधान के अनुसार जीना चाहिए। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

परमहंस योगानंद ने कहा है कि ये जीवन ईश्वर के द्वारा लिखित एक उत्कृष्ट उपन्यास है और यदि मनुष्य केवल बुद्धि से इसे समझना चाहे तो वो पागल हो जाएगा। इसलिए वे अधिक ध्यान करने को कहते हैं। अपने अंतर्ज्ञान के जादुई प्याले का विस्तार करो और तब तुम अनंत ज्ञान के महासागर को धारण करने के योग्य हो जाओगे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
2: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
1: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
2: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
1: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

6:33 अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसे एक। किसी विपत्ति में आपको ज्ञान विनम्रता बुद्धि साहस अच्छे कर्म सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास जैसे ये 7 गुण ही बचाते हैं।

चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, दोपहर का समय, भगवान का अभिजित मुहूर्त था, जब ब्रह्मलोक से ब्रह्मा समेत सभी देवता विमान सजाकर अवधपुरी के आकाश पर छा गए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards.

7:19 गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिर कब मिलोगी फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश को।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

दिन भर की प्लानिंग करने के लिए आज का मौसम जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहेगा। दिन भर तेज धूप खिली रहेगी। सूर्योदय हुआ सुबह 5:25 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:10।

0: नमस्कार कार्यक्रम आज सवेरे में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज और आज मेरा साथ दे रही हैं मेरी सहयोगी नीना रक्कल। आज के संक में हम आपको देंगे देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका है आपसे सरोकार। महानगरों की खबरें होंगी, इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का भी हम जिक्र करेंगे और याद करेंगे अंत में कुछ जानी मानी शख्सियतों को। तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। नमस्कार नीना।
1: नमस्कार फरहत। गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स। इट्स अ ब्राइट न्यू डे एंड डियर लिसनर्स, if you can't stand the heat, prepare yourself to beat the heat. Keep your water cold, your steps light, and your mind perfectly chilled. Just do not let the temperature outside dictate the temper inside. With that thought, we welcome all our listeners tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani Network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 25th of May 2026. Let's begin with the headlines, Farah.
0: जी, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पद्म पुरस्कारों से जुड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति भी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकार हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: On this occasion, we are broadcasting special programs as part of our series People's Padma on Akashwani.
3: चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे।
4: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
1: In these episodes, we provide listeners insights into work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 AM onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel.
0: Grihmantri Amit Shah.

0: ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: The Central Board of Secondary Education, CBSE, extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly.
0: और नीना, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने के 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी।
2: Union Education Minister Dharmendra Pradhan has directed teams of professors and technical experts from Indian Institute of Technology Madras and Indian Institute of Technology Kanpur to assist the Central Board of Secondary Education in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The move comes after students and parents raised concerns over technical issues on the CBSE post-result services portal. The Education Minister also spoke with Finance and Corporate Affairs Minister Nirmala Sitharaman regarding payment and technical problems faced by students during the re-evaluation process. Following the discussion, it was decided that State Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank and Indian Bank will help CBSE strengthen its payment gateway and improve integration with post-examination services portal.
0: सिक्किम के गंगटोक में चौथे क्युआबगोन डुमचुन ने जिग्मे थुपटेन फ्रिनेले प्लांगजांगो के पवित्र अवशेष की अंतिम यात्रा और प्रतिष्ठापन के साक्षी बनने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु, भिक्षु और गणमान्य व्यक्ति एक साथ आए। लुक्सियामा से देवराली चौटेन गोम्पा तक निकली इस शोभा यात्रा में पूरे राज्य से आए श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने थोंग द्रोल खांगजांग का उद्घाटन किया। इस भवन में वे पवित्र अवशेष और निजी वस्तुएं सुरक्षित रखी गई हैं, जिनका उपयोग परम पावन ने अपने जीवनकाल के दौरान किया था।
2: The annual five-day Hajj pilgrimage commences today amidst regional tension in West Asia as more than 1.6 million Muslims from across the world, including India, begin their journey from holy city of Mecca to assemble in tent city of Mina in Saudi Arabia. About 1,75,000 pilgrims from India are participating in this year's Hajj pilgrimage.
0: और श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। रुक करते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद से जुड़ी खबरों का। तो सबसे पहले चेन्नई में नीना, क्या है खास?
2: The construction of a new bridge across the Adyar River connecting two parts of the Officers Training Academy campus is 80% complete. The Water Resources Department said the high-level RCC bridge will replace the existing causeway, which was blamed for obstructing the natural flow of the river and worsening floods near Chennai Airport during the northeast monsoon. Some more from Chennai. CISF personnel from the Raja Aditya Chola Regional Training Center in Takolam, along with the Sports Authority of India, Chennai, organized a Sundays on Cycle program yesterday under the Fit India movement. Around 100 CISF personnel participated in the event, cycling through Takolam village and interacting with public to promote fitness, unity and sportsmanship. Local residents also joined the program enthusiastically, making the event a success. And now what do we have from Delhi for us?
0: जी नीना, दिल्ली में सबसे पहले बात कर लेते हैं यातायात से जुड़ी खबर से। दिल्ली यातायात पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मात्र दो दिनों में लगभग 1100 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की है और 12,000 से अधिक चालान जारी किए हैं। यातायात अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता आर्य ने बताया कि इस विषय पर पहले भी समन्वित कार्रवाई अभियान चलाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं देश भर में फिटनेस के प्रति

0: जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का कल आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस विशेष संस्करण में सहभागिता और साइकिलिंग के माध्यम से फिट और स्वस्थ भारत के संदेश को आगे बढ़ाया।
1: Now, news from Bengaluru. Karnataka Minister for Forest and Environment Ishwar B. Khandre has said that Karnataka had a social revolution for creating a just and egalitarian society. He was speaking at the Yug Mahotsav of Jagadguru Renukacharya and Basav Jayanti organized by the Veerashaiva Mahasabha in Bengaluru yesterday. The minister noted that social reformer Basavana strived to create caste-free, gender-biased free equal society in the 12th century. He fostered to establish a social framework that was based on spiritual ethos, liberated from all social ills like untouchability. The minister noted that the youth must inculcate the philosophy of Lord Basaveshwara and work for social equality by opposing all discriminations based on caste and gender.
0: और अब हम लोग मुंबई का रुख कर लेते हैं। बृहन मुंबई नगर निगम महाराष्ट्र लोक भवन के सहयोग से टीबी मुक्त मुंबई अभियान शुरू करेगा, जिसका उद्देश्य शहर में टीबी उन्मूलन प्रयासों को मजबूत करना है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा द्वारा परिकल्पित इस अभियान का उद्घाटन धारावी और सायन में किया जाएगा। टीबी रोगियों को पोषण किट वितरित किए जाएंगे और शीघ्र निदान में सुधार के लिए हैंडलेट एक्सरे उपकरण भी यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मुंबई और आसपास के इलाकों में मानसून से पहले की बारिश हुई कल, से गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। थाने, मीरा भाईंदर, माहिम, मुलुंड और भाडुम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान व्यक्त किया है।
1: Moving on to Hyderabad now, Telangana government has launched a massive 10-day paddy procurement drive to ensure farmers can sell their produce without delay. The State Irrigation and Civil Supplies Minister N. Uttam Kumar Reddy called it a warlike special operation. The state expects paddy arrivals to touch 75 lakh metric tons. Telangana recorded a record paddy production of 140.81 lakh metric tons this season from 65.91 lakh acres. The government has already released 8,749 crore rupees as minimum support price payments to farmers. As of May 23rd, around 58.79 lakh metric tons of paddy had arrived at procurement centres, out of which 50.01 lakh metric tons has already been purchased. Officials said that the remaining 8.78 lakh metric tons will be cleared within 72 hours. The minister directed officials to purchase even rain-damaged paddy to protect farmers from losses caused by bad weather.
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग की आधिकारिक सूचना के अनुसार सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन और स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कार्य करने का भी निर्देश जारी किया गया है। और अब महानगरों के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज राजधानी दिल्ली में गर्मी से राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने आज बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे, वहां पर भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। शहर का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं कोलकाता में भी बारिश हो सकती है, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
1: Chennai is expected to generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 28 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is expected to partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 33 degrees. Hyderabad is expected to partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm.

0: The temperature will hover between minimum of 26 degree and a maximum of 41 degree Celsius.
1: यानी कि मौसम जो है आज मेहरबान होगा सभी महानगरों में.
0: Yes.
1: और अब आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र कर लेते हैं. बात सबसे पहले 1955 की जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड के नेतृत्व में एक ब्रिटिश पर्वतरोहण दल ने भारत नेपाल सीमा पर स्थित दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर पहली बार आज ही के दिन सफलता हासिल की.
0: इन 1977, 20th सेंचुरी फॉक्स रिलीज द फर्स्ट स्टार वॉर्स मूवी एपिसोड 4 अ न्यू होप, क्रिएटिंग एन इंस्टेंट ग्लोबल सिनेमैटिक फेनोमेनन स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप.
1: 1995 में अमरीकी वैज्ञानिकों को इतिहास में पहली बार एक जीवित जीव यानी बैक्टीरिया के संपूर्ण डीएनए को पूरी तरह से डिकोड और अनुक्रमित करने में सफलता मिली.
0: In 2008, NASA's Phoenix Mars lander successfully touched down on the surface of Mars to initiate a mission searching for evidence of water ice on the red planet.
1: सन 2010 में भारतीय मूल की कमला प्रसाद बिसेसर ने आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और त्रिनिदाद और टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया.
0: इन 2011, द ओपरा विनफ्रे शो एड इट्स फाइनल एपिसोड आफ्टर अ फिनोमिनली सक्सेसफुल 25 ईयर रन, कंक्लूडिंग द मोस्ट हाईली रेटेड टॉक शो इन अमेरिकन टेलीविजन हिस्ट्री, द ओपरा विनफ्रे शो.
1: और आइए श्रोताओं, अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे कुछ जानी मानी शख्सियतों को. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रख्यात वकील और शिक्षाविद राज बिहारी बोस की. राज बिहारी बोस प्रख्यात क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिंद फौज के निर्माता भी थे. देश के जिन क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्र सरकार का संगठन करने के लिए प्रयत्न किया, उनमें श्री राज बिहारी बोस का नाम सबसे पहले लिया जाता है.
0: Today we remember a voice that helped define the sound of the 1990s alternative era, the unforgettable Bradley Nowell. Bradley James Nowell grew up surrounded by music. A childhood trip to Jamaica opened his ears to reggae and dancehall, while his guitar led him deeper into rock with albums like 40 Olds to Freedom and Robin the Hood. Sublime captured both critical acclaim and commercial success, blending punk energy and reggae grooves. That fusion of influences became the heartbeat of Sublime, the ska punk band he formed with Eric Wilson and Bad Gog while at California State University, Long Beach. Let's hear this from the same album.

श्रोताओं, आज के दिन जन्म हुआ था जाने माने शायर दाग दहलवी का। उनके जीवन का अधिकांश समय दिल्ली में व्यतीत हुआ और यही कारण है कि उनकी शायरियों में दिल्ली की तहजीब नजर आती है। दाग दहलवी की शायरी इश्क और मोहब्बत की सच्ची तस्वीर पेश करती है। वो कहते थे, तदबीर से किस्मत की बुराई नहीं जाती, बिगड़ी हुई तकदीर बनाई नहीं जाती। तो आइए सुन लेते हैं जगजीत सिंह की गजल, यानी उनकी आवाज में और उनकी गजल।

0: दाग दहलवी का ही जो है नीना बहुत ही मशहूर शेर था, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है।
1: डेफिनेटली इट्स एन इमॉर्टल गजल बाय हिम। किलियन मर्फी बिगैन हिज आर्टिस्टिक जर्नी नॉट ऑन स्टेज और स्क्रीन बट एज अ रॉक म्यूजिशियन। आफ्टर टर्निंग डाउन अ रिकॉर्ड डील, डेस्टिनी nudged him towards acting, and what a journey it has been, from the haunting brilliance of 28 Days Later 2002 to chilling charm of Red Eye. Murphy quickly proved himself a master of transformation. His Golden Globe nominated performance in Breakfast on Pluto

0: cemented his reputation as an actor of extraordinary depth. He became unforgettable as Jonathan Crane, better known as Scarecrow, in Christopher Nolan's Dark Knight trilogy, and Nolan clearly knew he had found a muse casting Murphy in Inception and later entrusting him one of the most monumental roles of our time. Of course, audiences worldwide know him as a razor-sharp Thomas Shelby in Peaky Blinders, a role that earned him multiple Irish film and television awards. But it was in 2023 that Murphy delivered perhaps his most defining performance yet, stepping onto the shoes of physicist J. Robert Oppenheimer in Nolan's epic Oppenheimer. With piercing intensity, he embodied the father of the atomic bomb, capturing both the brilliance and the burden of a man whose work changed history forever. Coming up, a dialogue from Oppenheimer.
1: Can you hear the music, Robert? Yes, I can. Our bodies, mostly empty space. Groupings of tiny energy waves bound together. I'm teaching something no one here has dreamt of. But once people start hearing what you can do with it, there's no going back.
2: और श्रोताओ, बात एक ऐसे भारतीय अभिनेता की जिनको पर्दे पर देख एक आम हिंदुस्तानी अपनी जिंदगी की झलक देखता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त की। सुनील दत्त की पहली फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म 1955 में प्रदर्शित हुई, जिसमें इन्होंने अभिनेता के रूप में कार्य किया। अपनी पहली फिल्म से उन्होंने कुछ खास पहचान नहीं बनाई, लेकिन इस फिल्म के बाद कुंदन, राजधानी, किस्मत का खेल और पायल जैसी कई छोटी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, लेकिन इनमें से उनकी कोई भी फिल्म सफल नहीं हुई। लेकिन फिर वक्त आया 1957 का, जहां प्रदर्शित हुई उनकी फिल्म मदर इंडिया और सुनील दत्त को अभिनेता के रूप में खास पहचान मिली इसी फिल्म से। सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म वक्त 1965 में प्रदर्शित हुई। उनके सामने इस फिल्म में बलराज सहानी, राजकुमार और शशि कपूर, रहमान जैसे नामी सितारे थे, और इसके बावजूद सुनील अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इसके अलावा उन्होंने फिल्म साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी सफल फिल्मों से भारतीय दर्शकों के बीच एक सफल अभिनेता के रूप में पहचान बनाई। तो आइए सुन लेते हैं उन्हीं की कुछ चुनिंदा फिल्मों से ये प्यारा सा मेडली।

0: Ralph Waldo Emerson was more than an essayist, lecturer, philosopher, and poet. He was the beating heart of the transcendentalist movement. A champion of individualism, he challenged the pressures of conformity and urged people to trust the infinitude of their own private selves. In his 1836 essay, Nature, laid the foundation of transcendentalism, and just a year later, his speech, The American Scholar, was hailed as America's intellectual declaration of independence. Emerson's words were not confined to the page. He delivered over 1,500 lectures across the United States, stirring minds and inspiring generations. His collection, Essays, First Series, 1841, and Essays, Second Series, 1844, gave us timeless works like Self-Reliance, The Oversoul, and Experience. These writings explored freedom, individuality, and the profound relationship between the soul and the universe. Emerson's philosophy was deeply spiritual, often described as pantheist, seeing God not as separate from the world, but woven into its very fabric. Here are some powerful lines from Ralph Waldo Emerson on what success is.
1: To laugh often and much, to win the respect of intelligent people and the affection of children, to earn the appreciation of honest critics and endure the betrayal of false friends, to appreciate beauty, to find the best in others, to leave the world a bit better, whether by a healthy child, a garden patch, or a redeemed social condition, to know even one life has breathed easier because you have lived, this is to have succeeded.
2: और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं जाने माने फिल्म लिरिस्ट लक्ष्मीकांत को, जिन्होंने आज ही के दिन हमें अलविदा कहा. 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, जिसके कारण उन्हें बीच में अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी. बचपन के दिनों में लक्ष्मीकांत का रुझान संगीत की ओर था और वो संगीतकार बनना चाहते थे. इसके अलावा उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उस्ताद हुसैन अली से हासिल की. इस बीच घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई संगीत समारोह में भी वो शामिल हुए और इसके बाद उनका जो था वो शुरू हो गया और कामयाबी के शिखर तक वो पहुंचने लगे. अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद के सहायक के रूप में इन्होंने मदारी, सट्टा बाजार, छलिया, दिल तेरा, हम भी तेरे जैसी कई फिल्मों में काम किया. और एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत रहा इनका, यशोदा का नंदलाल. आइए सुन लेते हैं.

और श्रोताओं, आज जाने माने फिल्म निर्देशक करण जौहर का भी जन्मदिन है। 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता है की सफलता के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसके बाद एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी। तो आइए सुन लेते हैं सबसे पहले इस फिल्म से ये प्यारा सा गीत।

0: और इसी प्यारे से गीत के साथ अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हमें अपने श्रोताओं को कहना होगा अलविदा.
1: Stay tuned for coming up next is Samachar Prabhat, our Hindi news bulletin, followed by morning news in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
0: Namaskar.

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं।

0: होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
0: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन

0: के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सब

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से बीजेपी के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नजर यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए उसकी बाजाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान के जवाब के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसीख कर दी है जो कल तक थी। सीबीएसई ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरखास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल को की खामियों को दूर करने के लिए सीबीएसई की मदद की गरज से आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला सीबीएसई के नतीजे के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नजर किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि आईआईटी के माहिरीन की यह टीम निजाम में तकनीकी बेहतरी लाने नीज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। यह बातचीत सीबीएसई के बाद के नतीज और जवाब के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक सीबीएसई को इसकी अदायगी के निजाम और इम्तिहानात के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका को दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मुअस्सर दिफाई शराकत दार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर को फोन किया। उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम

0: नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह रायजनी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और यह मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई मुआहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा मुआहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और यह मुआहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मौजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफा जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है

कि भारत उन पर पूरी तरह इतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के बड़े परस्तार हैं। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।

8:45 और 56 सेकंड म्यूजिकल दिल्ली की सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, स्वीकार करें मेरा नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सबके साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करें आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका की 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी की आशंका है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
2: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ke nate.
4: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has worked to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
3: The Home Minister also said the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. Petrol price has been hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre today, marking the fourth hike in 2 weeks. With this revision, petrol will now cost 102.12 rupees per litre in Delhi, while diesel will now cost 95.20 rupees per litre in the national capital. The National Testing Agency, NTA, has postponed the Common University Entrance Test Undergraduate 2026 examinations scheduled for 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha or Bakri Eid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. For any queries or clarifications, candidates may email at cuet-uginta.ac.in. The Central Board of Secondary Education, CBSE, has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12 board examination by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. It stated that the start date for accepting re-evaluation requests shall be communicated soon. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at 250th Independence Day celebration of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jaishankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism. U.S. President Donald Trump dialed U.S. Ambassador to India, Sergio Gore, during an event celebrating America's 250 years of independence at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. Mr. Trump described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been so close. Mr. Trump said he loves India.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस पॉडकास्ट में मैं नरेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। मीलों मुश्किल दुर्गम पगडंडी पथरीले और धूल भरे रास्तों से सफर करते हुए गांव-गांव तक पहुंचना, स्थानीय बोली में संवाद और 1 लाख से भी अधिक लोगों का उपचार, ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे? मूल रूप से तो आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूं, और जब मैं बीएएमएस डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था तो ये 1980 की बात है करीब करीब, तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था, उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है, वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा सा स्पर्श हुआ मेरे मन में कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है कि जो आदिवासी समाज के लिए जीवन भर के लिए वहां जाके काम करे। ऐसा भी एक जीवन मैंने अभी पढ़ा है डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर, वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश अमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं वहां कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया, वहां मिला मैं उनको, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है, तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, उनकी गरीबी, पहाड़ी क्षेत्र में उनका दुर्गम इलाके में रहने का उनका जो जीवन है, बारिश में उनको होने वाली समस्याएं, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा, ऐसा मेरा जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे।

0: आपका ये कमिटमेंट कि आपको आदिवासी क्षेत्रों में ही काम करना है, ये कैसे हुआ? आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
1: हाँ, इसका दो प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए, अब मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था, और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण, और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण, वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके कारण मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग, और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं, और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, जिसको हम अन्न वस्त्र और मकान कहेंगे तो उतना भी मतलब उनको नसीब नहीं है। ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे, और वो हमेशा यह आह्वान करते थे हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए, अपने देश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, केवल मैं मेरा करियर मेरा नौकरी इतना ही ना सोचते हुए इस प्रकार से कुछ काम हमें करना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया था कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकती
0: और
1: हूँ।
0: ये शादी से पहले आपने सोच लिया था?
1: हाँ, तो नहीं, शादी से पहले तो ये सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ सामाजिक काम करना है। फिर जब मैंने मुझे जब ऐसा एक ये हुआ, बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है, तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदा ताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है, तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है, तो आप वहां जाके आपके मन में जो काम की इच्छा है वो कर सकते हो, आप देख के तो आओ कम से कम इस प्रकार से। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा, और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। शादी के पहले भी मैं काम करती ही थी, 3 साल काम किए, तो
0: पहली
1: उसमें
0: बार
1: ये
0: काम कर
1: विचार
0: रहे हैं,
1: पक्का
0: डॉक्टर
1: हुआ कि भाई मुझे अभी, अब फिर घर से प्रेशर होने लगा कि भाई मतलब बात होने लगी कि आप लड़की हो शादी करना चाहिए वगैरह, तब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कार्यकर्ता से ही शादी करना है, मेरे संगठन को भी वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन को भी मैंने बताया कि मुझे शादी करना है, तो आप कार्यकर्ता कोई है तो देखिए मुझे अच्छा लगेगा ऐसा शादी करके काम करने का। तो फिर घर के और संगठन के दोनों ने मिलके हुई वो सब ढूंढा, फिर डॉक्टर गोडबोले जी का नाम सामने आया, उसके बाद फिर जैसा रामचंद्र जी के पीछे पीछे फिर
0: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहां से गतिविधियां शुरू की। अबूझमाड़ तो उस समय और भी दुर्गम रहा होगा, आज भी अनसर्वेड एरिया है। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
2: अबूझमाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय। फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे। देखने के लिए आया था बस्तर, उस समय भी अबूझमाड़ ही जाके आया। थुनथुनी कोलंकाल जो गांव अभी हम लोग सुना है, वहां तक मैं उस समय घूम के आया था। तो अबूझमाड़ तो काफी मुझे देखने से ही पता चला कि ये काफी कठिन है, और इतना दूर से पेशेंट आते हैं तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं। बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहां ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबूझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे तो उनका आना ही इतना कठिन था। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, कभी कभी 6 बजे पेशेंट निकला है, वो पेशेंट शाम को 6 बजे हमारे पास आ रहा है, 12 घंटा उनको पैदल आना पड़ता है। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गीदम है, चार चार महीना में गीदम नहीं आता था, मैं बारसूर में ही बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत

0: डेंजरस केस है। ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो महारानी अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है। तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। इतना इतवार को भी हम लोग सतर्क रहते थे, और पेशेंट को हम जैसा करेंगे ट्रीट करेंगे, अब नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, तो 1.25 घंटा में उसको महारानी में जाके पहुंचाना है। ये हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही हो गया था वो, इसलिए कई पेशेंट वो हम जान बचा पाए, क्योंकि हम हमारे पास आने के बाद जहाँ मुश्किल से 15-20 मिनट हमको मिलेगा, अगर झटका आ रहा है, सिरबड़ मरिया की केस है, हम जितना कर सकते उतना कर लेंगे, 1.25 घंटा में उसको कैसा भी करके महारानी में पहुंचाना है। हम लोगों का एक नीतिगत निर्णय था वो, इसलिए हम लोग कर पाए और हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग ये कर पाए। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिलाएं थी, इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
1: अच्छा मैडम, आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां आपने क्या देखा और कैसे देखा कि जो सिस्टम में काम हो रहा है उसकी सीमाएं हैं, बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से कहीं कोई अंदर जा नहीं सकता, तो आपने क्या देखा कि वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
2: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसीलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वहां से आना ही उनके लिए एक बहुत ही कठिन बात थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तखत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है, कभी कभी कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, पहले तो नहीं आई लेकिन धीरे धीरे समझ में, क्योंकि हम जैसा अस्पताल तो चलता ही था, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता महिला थी, बहनें थी और मैं, हम लोग तो गांव-गांव में जाते थे, तो गांव-गांव में ये सभी समस्या आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रख बहुत सारा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है। पहले तो बारसूर में अस्पताल भी ढंग का नहीं था, लोग हमारे यहाँ ही कल्याण आश्रम के ही अस्पताल में आते थे, तो ऐसे में और वो महिलाओं को उतना ये भी नहीं था, मतलब अभी भी बहुत जगह जो पहुंच विहीन गांव अभी भी है, तो ऐसे गांव में यही मान्यता है कि जैसे हमारे आजू बाजू में वो आदिवासी जो है ना, वो एक निसर्ग का भाग है ना, तो ये सब देख के हमें लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इस प्रकार से अगर इनके समझ में हमको बदलाव लाना है तो सबसे पहला है कि महिला ही है कि जो ये बदलाव की वाहक है, तो उसको हमने फिर हाथ में ले लिया, भाई ऐसे महिलाओं के हमने समूह बनाए, समूह मतलब आज की भाषा में जो आर्थिक समूह है वैसा नहीं, लेकिन उनका गुट बनाना, उनकी महिला समिति बनाना, फिर कुछ महिलाएं वहां पर थोड़ी जागरूक थी, जागरूक इन द सेंस कुछ आध्यात्मिक संप्रदायों से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे महिलाएं साफ सुथरा रहना है, कुछ अच्छे कपड़े, मतलब ठीक ठाक कपड़े, बहुत फैशन के कपड़े की आवश्यकता नहीं है या महंगे भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक कपड़े पहनना, अपना जैसे पानी भी भर के लाया या पेज बनाया, मतलब घर में जो भी अन्न बनाएंगे उसको ढक के रखना, यहाँ तक मालूम नहीं था, ये तो बाल संगोपन और ये सभी की बातें तो और दूर की बातें हैं, ये सब हमने धीरे धीरे उनके शिविरों में ऐसा जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहनें थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहनें जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी, उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है, अपने बच्चे को भी जो बीमारी हुई है उसको कैसे बताना यहाँ तक भी सिखाना पड़ता था। एक बच्चा आया था, मतलब माँ लेके आई थी उसकी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का होगा, गोद में उसको बिठाई, ये जांच कर रहे थे, और जांच करते समय उसने बताया कि इसको दस्त हो रहा है, 8-10 दिन हो गया ऐसा वैसा, फिर उन्होंने पूछा बुखार है क्या, ये है क्या, जो भी उससे संबंधित जो भी पूछना था जानकारी पूछ लिया, फिर उसको इंजेक्शन देना था या और कुछ जांच करना था, तो जांच करते समय

0: वो ऐसा पल्लू रखी थी उसके सिर पर, वो पल्लू हट गया। हटने के बाद देखते हैं तो क्या वहां पर पूरा घाव सिर में, और उसमें कीड़े हुए थे, और वो महिला उसके लिए नहीं आई थी। ये मुझे आश्चर्य लगा। मैं बोली आपको, मैं उसको पूछा मैंने कि आपको ये नहीं लग रहा है कि ये भी है बीमारी? हाँ बीमारी है, लेकिन वो गुनिया के पास हम जाते हैं। उसने इतना सहजता से जवाब दिया कि 2 साल के बच्चे को यहाँ इतना घाव है, उसमें कीड़े हुए हैं, उसकी कोई जानकारी, मतलब वो गंभीरता है ये जानकारी नहीं है, और वो खाली दस्त हुआ है, बुखार आ रहा है, उसके लिए वो बता रही। तो ये जो ऐसे धक्के मिले ना हमको एक एक अनुभव के, तो ये मतलब अभी भी हमको ऐसे इस प्रकार के लोगों को इतना बता रहे हैं, फिर भी कुछ गांवों में अभी तक ये बातें पहुंची ही नहीं है।
1: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा? अबूझमाड़ क्षेत्र में जब आप गए तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए।
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है। तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है। अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी अबूझमाड़ से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है। और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, ऐसे 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। तो अबूझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद 3 दिन के बाद जाते तो पूरी चिक्की खत्म हो गई, कौन खाया? बोला हमारा एक साला है दूर से आया अबूझमाड़ से, वो आया है वो देखा और वो 4-5 के वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे, कोई आया और जवान लड़का आया और 4-5 चिक्की वही खा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोगों ने कभी लोग बोलते हैं अबूझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबूझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया? पहले आप बताइए कि वाकई में मतलब जो महिलाएं हैं वो कितने जागरूक हैं, एनीमिया है उनको इस बात को लेकर के, और क्या ये वाकई में कई तरह की बीमारियों को?
0: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गाँव है, आपको रोड साइड के गांवों में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, विटामिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी दुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गांव है वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं। वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है उसके अंतर्गत होते हैं, मेरे ख्याल से 2 नर्स और एक ये डॉक्टर तो कभी कभार ही आता है, लेकिन 2 नर्स वहां बैठे रहते, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही मतलब जो बुजुर्ग, पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है
1: कभी भी ये।
0: बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने, दिन तक है बीमारी और ठंड लग रही है ये है, तो वो सब पहचानते हैं और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी गुनिया के पास ही जाते थे। लेकिन ये है, और कुछ क्षेत्रों में गुनिया भी हमको सहयोग कर रहे हैं कि भाई आप जाओ जो मतलब, हाँ वो उनमें वो जागृति आई है कि भाई मलेरिया है वो तो तुम जांच करके आओ, उसके बाद मैं दवाई दूंगा। वो एक बार अस्पताल गए तो अस्पताल में दवाई मिलती ही है, वो थोड़ा बहुत ये होता है।
1: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम मास नाम से अलग से स्कीम बनाई है। उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबूझमाड़ या अबूझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, वहां हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुन

0: हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंट इसके नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं। उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उसकी पूरी जांच करवा लेते हैं। उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की, और एक चिवड़ा बनाते हैं कि वो चना मूंगफली तेल हल्दी जो मुरा ये सब चिवड़ा ये देते हैं। उसके बाद हम लोग तेल दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी ये सब कुछ तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को। तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले, हरे पन्ने का सब्जी डाले, ये भी हम लोग उनको देखते हैं। मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं, क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है तो वो मच्छरदानी का भी प्रावधान रखते हैं हम लोग। अगर मच्छरदानी नहीं है तो हम मच्छरदानी देंगे, लेकिन बच्चे को मच्छरदानी में ही सुलाना है। तो उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। अगर रिपोर्ट आया कि नहीं मिल रहा है तो हम मच्छरदानी भी भेजेंगे। इतना तो करने के बाद 6 महीना प्रयास करने से हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर चला गया, 10 में से 8 बीमारियां बंदी हो जाती। तो उनको मंत्री के पास जाना, सरकारी अस्पताल में जाना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, ये सारी चीजें, मलेरिया, ये सारी चीजें बंद हो जाती है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया, 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं, इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं, माने 80 बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है, 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को भी हम सुनाते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोगों को ठीक करना है। हमारा कुपोषण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मलेरिया भी हमारा शत्रु है, उससे हम लोगों को पार होना है। और तीसरा शत्रु हम लोग जो बोलते हैं कि गुटखा गुड़ाखू पोगो सल्फी लान मंदा, इससे दूर रहना ही है। ये भी अलग से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं।
1: मुक्ति के लिए भी आप लोग,
0: हाँ, हम शपथ लेते हैं बच्चों को, स्कूल में जाके बच्चों से शपथ लेते हैं कि हम इन नशीली चीजों को हम कभी स्पर्श नहीं करेंगे। जो दोस्त आपको भोजन खिला रहा है, केला खिला रहा है, सब्जी खिला रहा है, फल खिला रहा है, मछली अंडा खिला रहे हैं, वो आपका दोस्त है। जो आपको पोगो गुटखा गुड़ाखू सल्फी लन मंदा पिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं है, वो छद्म है। वो आप पहचानो आपका दोस्त कौन है, और दोस्त के ऊपर आपका प्रभाव होना चाहिए, दोस्त का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए।
2: सुनीता जी, आप और आपके पति बारसूर में रहते हैं, लंबे समय आप लोगों ने ऐसे क्षेत्र में आप रह करके आपने जीवन बिताया है, कभी शहरी जीवन की इच्छा नहीं?
3: नहीं नहीं, शहरी जीवन की इच्छा नहीं हुई अभी। जब भी कभी हम शहर में जाते हैं तो थोड़ा दिन के लिए जाते हैं, फिर हमको बारसूर की तुरंत याद आती है, जंगल की याद आती है, तो आ ही जाते हैं। और यहाँ जो सुकून है, भले वो चैलेंजेस है बहुत सारी, हमको भी निराशा का इसका सामना करना पड़ता था, और ऐसे सब कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी है इसमें स्वाभाविक रूप से, लेकिन एक जो मन में लिया है उसको तो हमको करना है, और वही जीवन में अब हमको रुचि है कि नहीं, हम आखिरी में जो हमको आनंद देते हैं, ऐसे भी तो बहुत सारे प्रसंग है ही, अरे चलो इनको ठीक किया तो वो बच्चा आज ठीक होके हमारे सामने चलने लगा, या उसकी माँ भी आनंद से बताती है कि नहीं देखो आपने जो ऐसा ऐसा इसको ठीक किया था ना, ये अभी बड़ा हो गया है, जब वो बाजार दिन लेके आती है तो अच्छा ही लगता है।
2: जी जी, रामचंद्र जी, आप दोनों ने आजीवन निस्वार्थ सेवा की है इस क्षेत्र में, बड़ा त्याग किया है जीवन का, तो अब आप जो नई युवा पीढ़ी है जो शहरी क्षेत्रों में है, इन विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में सुनती है, उनको लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किया ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, मेरे अंदर जो कोई एक भगवान बैठा है वो मेरे से करवा रहा है, तो ये है। दूसरी बात, मैं इसका एक अनुभव, मेरे जितने युवा लोग हैं, ज्यादा करके जो जनजाति समाज के, आदिवासी समाज के जो युवक लोग हैं, युवतिया लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारे सामने ऐसा कभी नहीं लगा था कि हमको केंद्र शासन से कोई पद्मश्री मिलने वाला है, हमको कभी हमने सोचा भी नहीं था, कभी हमने मन में इच्छा थी ऐसे भी नहीं है, इच्छा भी नहीं थी, मिलने का भी संभावना ही नहीं था, हम अपना काम करते रहे। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अच्छा कर्म का फल आपको अच्छा मिलता ही है, ये केवल मैं सुनता था पढ़ता था, लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूँ कि जो हम लोगों ने काम किया उसका फल हमको हमारी भारत माता ने हमको ये दे दिया है, ये एक प्रकार की माँ बच्चे को जो एक मीठा उपहार खिलाती है, उसी दृष्टि से मैं देखता हूँ कि भारत माता और मैं, हम माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो भारत माता ही हमको ये पुरस्कार के रूप में हमको उपहार खिला रही है, इसलिए उसका अलग आनंद ही है और आनंद ही आनंद है, प्रश्न ही नहीं। अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलता ही है, ये मैं जीवन से अपने अनुभव से मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ।
2: सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों की नई युवतियों को भी, और जो युवतियां हैं उनको भी, और जो शहरी क्षेत्र में अभी पढ़ लिख रहे हैं?
3: हाँ, दोनों के लिए भी एक है कि अपने समाज के बारे में हमें सोचना चाहिए, जो स्वयं जो जनजाति समाज से है उनको तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि जो भी बदलाव होता है वो समाज में जो विचार करने लायक युवक किशोरी वयन से वो जो सामने आते हैं और विचार करते हैं, कुछ उसमें कृति करते हैं उसके लायक, तभी वो बदलता है। क्योंकि हम जाके बताएंगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपने ऐसा करना चाहिए, ये बात एक अलग होती है। और मैं खुद उस गांव की हूँ और मैं स्वयं अपने गांव को अगर समझाऊंगी तो उसका असर अलग ही होता है। इसलिए वो ये जनजाति समाज में इसको सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया है, बाकी बहुत सारे है, रील्स बनाना है, ये करना है, वो सिनेमा देखना है, ये सब है, होटेलिंग करना है, गोलगप्पे खाना है, ये है, लेकिन इसके बाद भी मेरा गांव, मेरा परिवार, मैं तो स्कूल में आ गई लेकिन मेरा परिवार घर में कैसा है, वो अगर बार बार फिर वही जा रहा है, मेरी माँ, मेरी भाभी या मेरे बहन अगर वही कुपोषण में एनीमिया से जूझ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और मैं यहाँ पर हॉस्टल में रह के खाली पैसे की मांग कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, या पढ़ने में भी मैं अच्छी हूँ, तो भी उसका उपयोग नहीं है। मतलब लोकमान्य तिलक जी बोलते थे कि आपके विद्या का उपयोग अगर आपके देश के लिए ना हो तो वो विद्या का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार हो गया। इसीलिए हमने जो पढ़ा है स्कूल में तो उसका उपयोग हमें गाँव में अपने समाज के लिए करना चाहिए, शुरुआत हमेशा परिवार से ही होना चाहिए, तो ये है। और जो युवक इस मतलब जो शहर में रह रहे हैं उनको तो अपने समाज को देखना है, भाई मैं अकेला आगे गया तो जैसा परिवार का कोई एक व्यक्ति अकेला गया तो परिवार आगे गया नहीं बोलता है ना कोई, परिवार के अगर कोई कमजोर है पीछे है तो वो बोलेंगे ही। उसी प्रकार है कि भाई देश में कुछ समाज घटक ऐसे है कि जिनको जो वंचित है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बुनियादी ज्ञान से वंचित है, लेकिन उनमें भी कुछ विजडम है, कुछ अच्छी बातें है, उसको जीवित करते हुए हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए हम हमारे जीवन का कुछ काल अगर ऐसे इसमें गांव में या ऐसे परिसर में अगर हम बिताएंगे तो हम तो बोलते हैं कि स्वागत है। हम जो स्कूल में एजुकेशन का काम करते हैं, गांव में जाके काम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हल्दी गोंडी ये जो उनकी जो स्थानीय भाषा है वो सीखनी पड़ती है, लेकिन स्कूलों में जो हमारा काम चलता है उसमें हमें जरूर ये जो निवृत्त शिक्षक है या कोई भी जो रुचि रखता है कहानी बताने में, ये बताने में, गीत बताने में, कुछ खेल लेने में, तो वो जरूर आए हमारे पास, हम स्कूलों में उनका कार्यक्रम रखेंगे, हमारी ओर से कुछ हम प्रशिक्षण भी देंगे कि भाई कैसा होता है, क्या करना है, और 15 दिन भी रहेंगे, 15 दिन में 7-8 स्कूल तो आराम से हो जाते हैं, ऐसे 15-15 दिन में 2-2, 4-4 लोग आते जाएंगे, तो ये होना चाहिए। मेरा और एक मतलब है आखिरी का कि हमारा एक विनती है छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के जो शहर है वहाँ के जन युवक जो है वो हमारे क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, बाहर के राज्य के बहुत सारे आते हैं लेकिन यहाँ के क्षेत्र के बहुत कम आते हैं, तो यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को मैं जरूर आह्वान करूंगी और क्या आप जरूर बस्तर आइए, देखने के लिए टूरिज्म के लिए तो आते ही हैं, लेकिन कुछ एक अपना अच्छा यहाँ के लोगों के साथ जीवन कैसा ये करना है उसके लिए भी जरूर आइए।
2: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है, और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्रा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: पीपल्स पद्मा ऑन आकाश।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

देशम लवी का आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और ये है म्यूजिकल दिल लगी। आज का दिन भी खास है, बहुत खास है। बहुत सारी चीजें हैं आज जिनमें कि अगर हम बात करें खेलों की, तो आज है वर्ल्ड फुटबॉल डे और खेलों की दुनिया का ये सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, उसी के लिए समर्पित है आज का दिन, जो न सिर्फ खिलाड़ियों के कौशल और संघर्ष का सम्मान करता है बल्कि दुनिया भर के जो करोड़ों प्रशंसक हैं ना, उनको एकजुट भी करता है। तो खेल कोई भी हो ना, उस खेल में एक टीम वर्क, अनुशासन और एकता दिखाई देती है और यही है स्पोर्ट्स स्पिरिट, जो कि हमें जिंदगी में भी अपनानी चाहिए। अब इसी स्पिरिट को आप बनाए रखिएगा हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछ लेती हूं आज का सवाल। आकाशवाणी द्वारा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ था, यह है आज का सवाल, जिसका जवाब आप हमें भेजेंगे fmgoldairdelhi@gmail.com पर। और वक्त क्योंकि बहुत ही कम है, तो जल्दी से अपने जवाब हम तक पहुंचा दीजिएगा। मैं सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूं। आकाशवाणी द्वारा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू किया गया था, तो जल्दी से भेजिए अपने जवाब हम तक। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

आज हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कैसे महान क्रांतिकारी को, जिन्होंने देश की आजादी के लिए विदेश की धरती से भी संघर्ष किया और उसे नई दिशा दी, रास बिहारी बोस। 1915 के गदर आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और बाद में जापान में रहकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। उन्होंने ही आगे चलकर आजाद हिंद फौज की भूमिका नींव रखी, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने आगे बढ़ाया। रास बिहारी बोस का जीवन साहस, दूरदृष्टि और मातृभूमि के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो हमें आजाद कराने में लगा दिया। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ लोग होते हैं जो अपना जीवन त्याग देते हैं दूसरों के लिए, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि वो उस जिंदगी को जी भी पाएंगे कि नहीं जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। तो एक मकसद होता है ना, उस मकसद के साथ आगे बढ़ना, वही सबसे बड़ी बात है। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, और अब एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं अभी लौट के आती हूँ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर ये है म्यूजिकल दिल लगी। और अब हम बात करते हैं एक ऐसी योजना की जो कि भूजल को संरक्षित रखती है। आप और हम सब जानते हैं कि भूजल की कमी से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में बहुत सी संस्थाएं, सरकारें जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर और लोगों को जागरूक करने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। और ऐसी ही है अटल भूजल योजना, जो भूजल की कमी को रोकने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है भूजल के स्तर को बनाए रखना और भूजल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना, ताकि जल संरक्षण के माध्यम से भूजल की कमी को रोकने का प्रयास किया जा सके। और आज के दिन से बेहतर दिन और क्या हो सकता है हम पर्यावरण की रक्षा के लिए, क्योंकि आज है गंगा दशहरा, वो पावन पर्व जो धरती पर माँ गंगा के अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य और पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस अवसर पर, यानी आज के दिन, गंगा में स्नान किया जाए तो बहुत से पापों का नाश होता है। खैर, वो सब हमारे जितने भी आस्था के पर्व हैं ना, वो इसलिए हैं ताकि हम उन अपने हमें जो नेमतें दी गई हैं ना, हम उनका सम्मान कर सके, उनका संरक्षण कर सके। और यही संदेश देता है आज का दिन भी।

हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आकाशवाणी द्वारा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण कब शुरू हुआ, जिसका सही जवाब है 20 जुलाई 1952। लेकिन सही जवाब सिर्फ दो मिले हैं। एक कृष्ण कुमार गुप्ता ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पूरा जवाब दिया है, और दूसरा नवीन भाटिया ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल

0: पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉ जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी नैतिक साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से ओस्लो में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका की 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर को फोन पर बातचीत में ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तैयार है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा को उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में अमेरिका और भारत के संबंधों का महत्व उजागर करती है।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी। ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते से पूरी तरह अलग होगा। श्री ट्रंप ने ओबामा काल के ईरान परमाणु समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह,
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तुर्की की दंगा पुलिस ने कल मुख्य विपक्षी दल के मुख्यालय में आंसू गैस के गोले दागे और जबरन अपदस्थ नेतृत्व को बाहर कर दिया। इससे तुर्की के लोकतंत्र के केंद्र में संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट।
3: रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP की इमारत के अंदर आंसू गैस के बादल छा गए और अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तुर्की की एक अदालत ने

अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया की एक एरोस्पेस फैक्ट्री में प्लास्टिक बनाने वाले खतरनाक रसायन का टैंक क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का आदेश जारी किया गया है। पिछले सप्ताह GKN एरोस्पेस कंपनी में करीब 22,000 से 26,000 लीटर मिथाइल मेथिक्रिलेट केमिकल से भरा टैंक बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इससे शहर की हवा में जहरीली गैस फैलने लगी थी। इस बेहद ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल प्लास्टिक और नकली दांत बनाने में होता है। इससे फेफड़ों, आंखों और त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। स्पेन में कल मध्य मैड्रिड में हजारों लोगों ने आवास की तेजी से बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन बढ़ती कीमतों के कारण देश में हाल ही में हुई आर्थिक प्रगति के बावजूद कई नागरिक प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर हो गए हैं। 2027 के आम चुनावों से पहले आवास संकट प्रधानमंत्री पेत्रो सांचेज के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते किराए को नियंत्रित करने और किफायती आवास तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सरकार से और अधिक कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के अनुसार 2025 के अंत तक स्पेन में आवास की कीमतों में साल दर साल आधार पर लगभग 13% की वृद्धि हुई है। कांगो के पूर्वी हिस्से में चल रहे इबोला के प्रकोप में अब संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से अधिक हो गई है। कांगो के संचार मंत्रालय ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 904 संदिग्ध मामले मिले हैं और 119 लोगों की मौत हुई है। इनमें अधिकतर मामले इटुरी प्रांत से हैं, जहां ये प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये प्रकोप अब कांगो के लिए अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है, लेकिन इस बीमारी के दुनिया भर में फैलने का जोखिम अभी भी कम है। बांग्लादेश में वर्ष 2022 से कार्यरत भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कल अपनी विदाई के अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री रहमान ने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रणय वर्मा को धन्यवाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत दोनों देशों के लोगों के हित में बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है। दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रही है। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंडमास्टर मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से वार्षिक 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आज से ओस्लो में शुभारंभ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: इस पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजम के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है, इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने, 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है। तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा, चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने की, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो आकर के भाग जाते रहे। तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी,
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: बिल्कुल सहज रूप।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था? क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था। फिर जैसे ही 9 साल की हुई, रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कहिए 11th कहिए,
2: जी जी,
3: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है। तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइवेट गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
4: अच्छा।
3: तो पिताजी ने कहा तुम आज सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
4: जी।
3: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस रहा। 12 साल मैं बजा चुका और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी। और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकार नाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
4: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
3: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहाँ थी।
4: अच्छा।
3: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
4: जी।
3: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
4: हाँ।
3: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
4: जी
3: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा
4: जी।
3: तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। इस तरह शुरू हो गया।
4: और पंडित ओमकार नाथ जी के बारे में कुछ?
3: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
4: जी,
3: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
4: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
3: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
4: जी।
3: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
4: हाँ जी।
3: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया। वो सिखाते थे, मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
4: जी जी
3: है, उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया और एक एक करके हो गई बात।
4: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
3: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
4: जी, जी।
3: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
4: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टी एन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
3: बिल्कुल।
4: तो ये सवाल ऐसा है,
3: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
4: अच्छा।
3: मेरे पेरेंट्स के, तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है, चाहे लड़की हो या लड़का, पिताजी भेंट में दे देते हैं वो एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
4: जब कृष्ण साहब थे

0: बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को लेके?
1: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग, बाकी बच्चे बड़े रेस्पेक्ट से उनके साथ रहते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था।
0: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं। आपने वॉयलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
1: वायलिन में,
0: जी,
1: इंस्ट्रूमेंट में,
0: इंस्ट्रूमेंट में।
1: और जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट।
0: क्या बात। अम्मा जी, वॉयलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए। जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वॉयलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
0: जी,
1: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी
0: सेमी
1: क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है। इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए।
0: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं। आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में, और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स जिनके होते थे, उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी। तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
1: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का,
0: जी
1: बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे।
0: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं अम्मा जी। आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर हुई।
1: उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया,
0: जी,
1: खूब उन्होंने प्रोत्साहन
0: और जो
1: दिया।
0: कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी की?
1: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे,
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की।
0: जी
1: तो कहाँ शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहाँ शुरू होता है, और कहाँ वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता
0: बिल्कुल
1: था
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: लोगों को।
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मुझसे काफी सीनियर थे, तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ापन पिता तुल्य थे मेरे लिए वो।
0: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके
1: मेरे
0: साथ
1: भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है, तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी। अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गामक इत्यादि
0: जी
1: सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है।
0: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है, कुछ नया क्रिएशन। तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
1: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है,
0: जी जी।
1: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है, पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की। जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है, तो नया कुछ मैंने नहीं बना।
0: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में, तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
1: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं। हाँ, एक घटना बता दी इस संबंध में।
0: जी बिल्कुल।
1: बनारस बनारस

0: में मेरे गुरुजी रहते थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी तो, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतर। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे जब सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी लिए हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गई थी। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां उनको लोग बाग जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट दराग देश बजाया, तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो लोग कहाँ कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
1: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
0: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
1: जी।
0: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहाँ चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
1: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती हैं?
0: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहाँ तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
1: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
0: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
1: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में दिए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों

0: की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कहा कि इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों से जुड़े लोगों के अधिकारों को संरक्षित करना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। यह स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में 1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 874 अंक के उछाल के साथ 76,289, जबकि निफ्टी 264 अंक बढ़कर 23,983 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan, and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given

0: पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार, आकाशवाणी पॉडकास्ट में हम इन दिनों आपको पद्मश्री से सम्मानित उन शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्होंने देश और समाज में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है, और आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे बीच हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं बातचीत में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें उनसे बातचीत से पहले, तो भारत में जो हम चावल की खेती देखते हैं, या हम अगर अपने घरों में भी अपनी प्लेटों में खुशबूदार और लंबे चावल को परोसते हुए देखते हैं, तो इस चावल की किस्म की उपज में, पैदावार में, इसे उन्नत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत में कृषि उपज, कृषि विज्ञान में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपना बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और साइंस और इंजीनियरिंग में इस साल डॉक्टर ए के सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत स्वागत हम फिर से करते हैं आपका डॉक्टर के सिंह।
3: बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। तो सबसे पहले हम चर्चा को इसी से शुरू करते हैं कि इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है।
3: मैं आकाशवाणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस अवसर पर यहां पर बुलाया है। मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार, वह विशेष रूप से बासमती चावल के उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है और इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है। बासमती चावल अपने स्वाद सुगंध के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, और जो इसकी परंपरागत किस्में होती थीं, जैसे देहरादूनी बासमती, टाइप 3 आदि, तो ये किस्में लंबी होती हैं, ऊंचाई में ज्यादा होती है इनकी ऊंचाई, और पकने में 160 दिन का समय लेती थीं, और ऊंचाई ज्यादा होने के कारण अक्सर जब बाली में दाना भरता था तो ये किस्में गिर जाती थीं, जिसकी वजह से इनकी पैदावार कम होती थी, मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोध का कार्य बासमती पर सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि सबसे पहले डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो 1968 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे, उनके द्वारा ये सोच लाई गई कि किस प्रकार से हम बासमती चावल की गुणवत्ता बौनी प्रजातियों में ले आए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बासमती चावल कम क्षेत्र में पैदा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो उसी कड़ी में ये हमारा काम रहा। डॉक्टर स्वामीनाथन के बाद उनके छात्र डॉक्टर ए सिद्दीक, डॉक्टर VP सिंह, डॉक्टर जमन, ये लोग काम किए, और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम से छात्र के रूप में 1986 में जुड़ गया था, और तब से मैं लगातार PhD करने के बाद भी यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में शोध का कार्य बासमती पे कर रहा हूँ।
2: बिल्कुल, इस बारे में हम आगे बातचीत में जरूर जानेंगे किस तरह से आपने अपने करियर में और कृषि विज्ञान में इस क्षेत्र को चुना, लेकिन एक बहुत रोचक सवाल शायद हमारे देखने सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा कि बासमती चावल की हम उन्नत किस्म आजकल देखते ही हैं, लेकिन इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पहले भी इस पर शोध होते रहे, तो ये शोध क्यों हो रहे हैं और किस तरह से समय समय पर बासमती उन्नत हुआ है?
3: एक पहली बात तो मैंने बताई कि जो हमारी परंपरागत किस्में थीं, अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हों, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, सभी फसलों में लगते हैं, उसी तरह से चावल में भी लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था। और तीसरा, जब जलवायु परिवर्तन, जैसा कि आप जान रहे हैं, हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन का कृषि के ऊपर

0: होगी जिसमें गुणवत्ता अच्छी आती है, तो इसलिए हमको अधिक उपज देने वाली रोगरोधी किस्मों का विकास करना आवश्यक हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बासमती चावल के बारे में हमें बताया, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से और हम ये समझना चाहेंगे, और ये सवाल भी सबके मन में आ रहा होगा कि क्या हर खुशबूदार लंबा चावल ही बासमती चावल है? क्या होता है बासमती चावल? कहाँ इसकी उपज ज्यादा होती है? इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं।
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आमतौर पर एक अवधारणा होती है कि सभी खुशबूदार चावल जो है बासमती होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। सारे बासमती चावल जो हैं, ये बासमती किस्में खुशबूदार होती हैं, लेकिन सभी खुशबूदार किस्में बासमती नहीं होती हैं। तो खुशबू के साथ साथ बासमती होने के लिए चावल के अंदर कुछ और विशेष गुण होने चाहिए, जिसमें एक गुण तो आपने बताया कि चावल की लंबाई जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, करीब 6.7 मिलीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। पकाने के बाद चावल कम से कम दोगुना लंबाई में बढ़ जाता है, और एक कप चावल अगर पकाएं आप तो उसे कम से कम 4.5 कप जो है पका हुआ चावल बनता है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है आयतन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ पकाने के बाद चावल का एक एक दाना खिला हुआ होता है, एक दूसरे से चिपकता नहीं है। तो ये गुण जो है बासमती चावल को और भी बहुत सारे प्रोफाइल में, जैसे एमाइलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी मात्रा करीब 22% के आसपास बासमती में होती है, और वही होनी चाहिए तभी यह गुणवत्ता आती है। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सभी बासमती चावल खुशबूदार होते हैं, लेकिन सभी खुशबूदार चावल बासमती नहीं होते हैं। खुशबू के साथ साथ बासमती चावल होने के लिए चावल में लंबाई होना विशेष, उस पकाने के बाद चावल की लंबाई में बढ़ोतरी होना, और इसके बाद उसके आयतन में वृद्धि होना, चावल का एक दूसरे से चिपकना नहीं बिल्कुल खिला रहना, ये सारे विशेष गुण हैं जिनके साथ हम अगर एक साथ समाहित करते हैं तो उन किस्मों को हम बासमती कहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन किस्मों को जब एक निर्धारित जलवायु क्षेत्र में उगाया जाता है तभी हमको बासमती की असली गुणवत्ता प्राप्त होती है।
1: तो कौन से क्षेत्र हैं जैसे जहां पर ये उपज ज्यादा होती
0: जी
1: है?
0: तो इसलिए बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक रेखांकन इसको दिया गया है, और इसमें 7 राज्य आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, जिसमें कि जम्मू के 3 जिले हैं, इसके अलावे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले और उत्तराखंड, इन्हीं क्षेत्रों को हम GI मानते हैं, और यहाँ की जलवायु बासमती चावल की गुणवत्ता के लिए बहुत विशेष होती है। और उसका एक कारण होता है कि जो चावल पकता है तो उसके अंदर जो खुशबू होती है एक विशेष केमिकल के कारण होती है, जिसको हम 2-acetyl-1-pyrrolin बोलते हैं, और ये वोलाटाइल कंपाउंड होता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, चावल में दाना भर रहा होगा जिस समय, दुधिया दाना होगा, उस समय अगर गर्मी ज्यादा होती है तो ये खुशबू दाने में रहने के बजाय उड़ करके वातावरण में चली जाती है। तो इसीलिए माना जाता है कि जब चावल में दाना भर रहा हो उस समय जो है तापक्रम कम होना चाहिए, और वही इन क्षेत्रों में तापक्रम पाया जाता है जो कि चावल में ज्यादा से ज्यादा खुशबू होने के लिए जरूरी होता है।
1: तो क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये फैक्ट भी है कि चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में एक सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है, और खासतौर पर जो हमारी बासमती चावल की किस्म है उसमें भी भारत अग्रणी है। तो इस लक्ष्य तक हम जब पहुंचे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में हम चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, क्या इसमें भी जैसे आपने जो रिसर्च की है, जो अनुसंधान किया है, वो भी महत्वपूर्ण रहा है कि हम चावल का इतना बड़ा उत्पादन कर पा रहे हैं, उसका निर्यात कर पा रहे हैं, और कितना निर्यात और उत्पादन हम पूरे विश्व भर में कर पा रहे हैं, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं?
0: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सभी देशवासियों के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए गौरव की बात है, किसानों के लिए विशेष रूप से, कि भारत आज विश्व का नंबर एक देश है चावल के उत्पादन में। हम करीब 150-151 मिलियन टन चावल प्रतिवर्ष आज पैदा कर रहे हैं, और चावल की खेती करीब 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। दूसरे नंबर पे चाइना है, जहां पे चावल का उत्पादन 145 मिलियन टन है। और अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में भी भारत पूरे विश्व का पहला राष्ट्र है, जो करीब करीब हम 21-22 मिलियन टन चावल का निर्यात कर रहे हैं, जिसमें 6 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात होता है। और इस 6 मिलियन टन बासमती चावल के निर्यात से देश को तकरीबन

0: 50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, जो करीब 6 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ये बासमती किस्में मूलतः जितनी किस्में हैं, ये सब पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जहां पर पिछले 35 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, जिसमें कुछ प्रमुख किस्में हैं। उसमें पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1718 है, और इसके अलावे 1847, 1885, 1886, ये सारे किस्मों के नाम हैं। और इन किस्मों का कुल चावल का उत्पादन बासमती का देश में करीब 10 मिलियन टन के आसपास होता है, जिसमें से 6 मिलियन टन का हम निर्यात कर रहे हैं और बाकी चावल देश में प्रयोग में लाया जाता है खाने के लिए। तो इन किस्मों के विकास से बासमती चावल सर्व सुलभ हुआ है। आज किसी भी शादी विवाह पार्टी में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, तो सभी जगह आपको बासमती चावल खाने को मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: और सर्वजन सुलभ हुआ है, और इसका कारण है कि शोध के द्वारा हम लोगों ने अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की हैं।
1: बिल्कुल। तो इसी लाइटर नोट पर भी थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या आपकी भी भोजन की रुचि में चावल है, कि आपने चावल को भी अपना एक शोध का हिस्सा बनाया?
0: बहुत ज्यादा पसंद है चावल मुझे।
1: अच्छा।
0: और मैं बासमती, चूंकि हम लोग जब किस्मों का विकास करते हैं तो उस समय भी हजारों पौधे होते हैं, उनके चावल को पका करके उसकी खुशबू को सूंघना, किसमें खुशबू है किसमें नहीं है, उसको खा करके टेस्ट करना, तो वह भी, और उसके साथ साथ चावल हमारा एक विशेष भोजन है। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं, उन क्षेत्रों में चावल नहीं अगर मिला खाने को तो इसका मतलब आपका भोजन पूरा नहीं हुआ, तो चावल बहुत अच्छा लगता है।
1: थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे, जो आपकी शिक्षा रही उस पर भी हम लौटना चाहेंगे, बनारस की गलियों से लेकर दिल्ली में पूसा तक का सफर, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा।
0: मेरा जन्म जो है एक किसान परिवार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है, वहां पर बरहट गांव का नाम है हमारा, जहां पर जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा हमारी जो है प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा गांव में हुई। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए उस समय गांव में स्कूल उतने सुलभ नहीं थे, बहुत पास नहीं होते, तो हम लोगों को करीब करीब 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था और रोज आना पड़ता था। 40 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी पड़ती थी प्रतिदिन। अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई 4 वर्ष 1975 से लेकर के 1979 तक जो है, तो ये यात्रा हमारी शुरू की रही। और मैंने शुरू से ही पढ़ाई कृषि की, हाई स्कूल में भी कृषि, इंटरमीडिएट में भी कृषि की पढ़ाई की। और किसान परिवार में जन्म लेने के कारण खेती के सारे काम जो है शुरू से हम लोग करते रहे। बचपन में हम लोग बड़े हुए खेती को बहुत नजदीक से देखते हुए, खेती को करते हुए, पशुओं को चारा खिलाना पिलाना, उनको जो है खेत में जुताई करना, बुआई करना, हर तरह का काम, कृषि का हम लोग करते थे। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा गांव से पास करने के बाद, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है, इलाहाबाद बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, और उसमें हमारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में 4था स्थान आया था, तो एक गर्व की बात थी पूरे क्षेत्र के लिए। फिर मेरा प्रवेश जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर में मुझे प्रवेश मिला, और वहां से बीएससी कृषि, और इसके बाद फिर एमएससी कृषि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विषय हमने चुना। उसमें पढ़ाई करने के बाद फिर मैं पीएचडी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो पूसा इंस्टीट्यूट है, यहां पर मैं आया। और हमारे प्रेरणा स्रोत विशेष रूप से मैं कहूं तो पिताजी हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में थे, किसान थे, कृषि को बहुत अच्छी तरह समझते थे। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर ऋषि मुनि सिंह, वो उन्होंने भी कृषि की पढ़ाई की थी, और 1962 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से वो पीएचडी करके आए थे, और जेनेटिक्स में ही पीएचडी उन्होंने किया था। तो एक लक्ष्य हमारे सामने था कि उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां तक तो हमको पहुंचना ही चाहिए, तो वो लक्ष्य प्राप्त करना एक हमेशा ध्येय रहा। तो फिर मैं पूसा संस्थान में आया, और यहाँ पर पीएचडी करने के बाद फिर मैं यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में कार्यभार शुरू किया। 1994 में वैज्ञानिक के रूप में मैंने यहाँ पर अपनी सर्विस की शुरुआत की, और धान पे ही शोध शुरू से किया, और फिर वहीं पर मैं सीनियर साइंटिस्ट बना, प्रिंसिपल साइंटिस्ट बना। आनुवंशिकी विभाग जो है, जहां पर डॉक्टर स्वामीनाथन भी अध्यक्ष रहे उस विभाग के, पूसा संस्थान में उसका अध्यक्ष बना। फिर बाद में चल करके पूसा संस्थान का निदेशक मैं 2020 में बना और 2024 तक करीब 4.5 वर्ष जो है पूसा संस्थान का निदेशक रहा। लेकिन इस सारी यात्रा के दौरान 35 वर्षों का जो कार्यकाल हमारा रहा पूसा संस्थान में, चावल से हमारा नाता कभी छूटा नहीं।

0: में मैं हमेशा जुड़ा रहा और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में पूसा संस्थान में कार्य कर रहा हूं और चावल के ऊपर ही शोध कर रहा हूं। एक विशेष बीमारी होती है उसके निदान के लिए नई किस्मों के विकास पर मैं कार्य कर रहा हूं।
1: बिल्कुल, बहुत आपका व्यापक अनुभव रहा है कृषि विज्ञान के फील्ड में और इसी से मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने भारत की खेती में उपज में क्या बदलाव देखा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक तरफ जैसा कि आपने बताया किसान परिवार से थे तो व्यावहारिक तौर पर आपने खेती को देखा है और आपने लैब में भी खेती की रिसर्च की है। लैब से लेकर फार्म तक या प्रयोगशाला से खेत तक उन्नत खेती को जाना कितना जरूरी है और आपने क्या कुछ बदलाव देखा है इस मामले में कि जो शोध लैब में हो रहे हैं वो अब किसानों के पास फसलों के रूप में बीजों के रूप में पहुंच रहे हैं और उसके नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं।
0: निश्चित रूप से अगर हम भारत की कृषि यात्रा के ऊपर एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि सन 1950 के दशक में हमारे देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 50 मिलियन टन था। उस समय हमको बाहर से अमेरिका से PL 480 एक स्कीम होती थी, पब्लिक लॉ 480, उस स्कीम के तहत लाल रंग का गेहूं आता था, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती थी, रोटी कड़ी हो जाती थी, खाने में भी स्वाद नहीं होता था और वो प्रतिवर्ष करीब 5 से 7 मिलियन टन गेहूं आयात किया जाता था अपने देश की आवश्यकता पूरा करने में और गेहूं का उत्पादन मात्र 12 मिलियन टन के आसपास उस समय होता था। और आज अगर आप देखें तो गेहूं का उत्पादन बढ़कर के 115 मिलियन टन हो गया है और कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 50 मिलियन टन था इस समय 358 मिलियन टन के आसपास हो रहा है। तो सिर्फ हम अपनी आवश्यकता ही नहीं पूरा कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे देश हैं जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम निर्यात भी कर रहे हैं। चावल के निर्यात के बारे में मैंने बात की, उसी प्रकार से समय समय पर गेहूं का भी निर्यात किया जाता है। तो खाद्यान्न के उत्पादन के माने में अगर हम देखें तो एक तरह से राष्ट्र आत्मनिर्भर हुआ है, तो परिवर्तन बहुत आया है और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है किसानों तक गई है संस्थानों के माध्यम से। अगर देश की कृषि शोध प्रणाली के ऊपर आप देखें तो इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको हम ICAR या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, इसके अंदर 113 संस्थान पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, करीब करीब 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें की 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं और कुल मिलाकर के हमारे समझ करीब 12-13 हजार वैज्ञानिक जो है वो शोध का कार्य कृषि के विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं और जिसका परिणाम है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं और अपनी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं।
1: तो आज के समय में क्योंकि खेती में पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर और डिजीज को लेकर, जैसे कि आपने रोग रोधी फसलों का जिक्र किया, बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में भी अब हम जैसे उन्नत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपके अनुभव क्या कहते हैं कि हम किस तरह से जो रोग रोधी फसलें हैं, उपज है या जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और ये कितना जरूरी है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है और क्लाइमेट रिजिलियंट वैरायटीज ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है और इसमें मुख्य लक्ष्य यह है कि किस प्रकार से हम ऐसी किस्मों का विकास करें जिसमें कि रोग न लगे या बहुत कम लगे, कीड़े नहीं लगे। अगर हम धान की बात करें तो जैसे धान की जो किस्में हैं उनमें विशेष रूप से पत्ती का झुलसा रोग लगता है, झोंका रोग लगता है जिसको ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं, इसके अलावा ब्राउन स्पॉट एक बीमारी होती है, लीफ फोल्डर कीड़ा लगता है जो पत्ती को लपेट देता है, ब्राउन प्लांट हॉपर कीड़ा लगता है, तो ये सब तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े लगते हैं जो उत्पादन को गिराते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इन बीमारियों और कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए हमको रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़ता है, उसके चलते हमारा खर्चा भी किसानों का बढ़ता है। और इसीलिए जहां तक बासमती की बात है, मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया और इन किस्मों में प्रमुख रूप से पूसा बासमती 1637 जिसमें कि झोंका रोग नहीं लगता है, पूसा बासमती 1718 और जिसमें पत्ती का झुलसा रोग नहीं लगता है, उसी तरह से पूसा बासमती 1847, 1885 और 1886 इनमें झोंका और झुलसा दोनों रोग नहीं लगते हैं। तो करीब करीब 3000-4000 रुपये प्रति एकड़ तो दवाई का खर्चा जो है किसान का वो बच जाता है। अच्छा, जो दवा हम नहीं छिड़क

0: लगते हैं फसल के ऊपर, तो चावल में रासायनिक दवाओं का अवशेष नहीं आता है। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एक जो मानक निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा रासायनिक दवाओं का अगर अवशेष पाया गया चावल के अंदर, तो हमारी चावल की खेप जो है निरस्त कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शोध किया और हमारी किस्में जो है वो एक तरह से रोगरोधी है और उसमें बीमारी नहीं लगती है, तो दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जो दूसरा कार्य हम लोगों ने किया है उसमें सूखा रोधी किस्में उनके विकास के ऊपर या ड्राउट टॉलरेंट किस्में हैं, तो कुछ हमारी धान की प्रजातियां ऐसी हैं जो कि उनके अंदर ड्राउट टॉलरेंस का गुण है, लेकिन उनको हमने बासमती मिलाने का काम किया है और कुछ किस्मों का विकास किया है जिनमें कि कम पानी में इनकी खेती हो जाती है। और इसके अलावे और कई क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजी है, किस्में तो एक है, किस्मों के अलावे खेती करने का तरीका हमारा, जैसे धान की हम आमतौर पे जो खेती करते हैं वो रोपाई विधि से करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पहले हम पौध लगाते हैं, 25 दिन की नर्सरी जब हो जाती है तो उसको उखाड़ करके दूसरे खेत में हम रोपाई करते हैं, और जिस खेत में रोपाई करते हैं उसमें पानी भर करके खूब जुताई की जाती है गहरी, जिसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, और इसीलिए एक हमेशा चिंता का विषय रहता है कि धान की खेती में पानी बहुत ज्यादा लगता है, चावल उत्पादन में पानी बहुत ज्यादा लगता है। तो इसलिए अगर हम धान की सीधी बिजाई करें, और उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी शोध किया है, हमने अभी हाल में ही दो ऐसी किस्में विकसित की हैं, पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 1979, जो कि धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। क्योंकि धान की सीधी बिजाई में होता क्या है कि पानी की तो बहुत बचत होती है 35% के आसपास, उसी तरह से जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो भी घट जाता है 35%, और 4-5 हजार रूपये जो रुपाई का खर्चा आता है उसमें भी बचत होती है।
1: बिल्कुल,
0: जब इतने फायदे हैं, बस मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट करना चाहूंगा, जब इतने फायदे हैं धान की सीधी बिजाई के, तो किसान बड़े पैमाने पे क्यों नहीं अपनाए और क्यों हमको इस बात के ऊपर विशेष जोर अब देना पड़ रहा है। तो जब सीधी बिजाई करते हैं तो उसमें खरपतवार बहुत ज्यादा आते हैं धान के साथ जो है, और उनसे धान की फसल को नुकसान होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने जो किस्में दो अभी निकाली जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में हैं, और इनके ऊपर खरपतवार नाशी दवा जब हम छिड़कते हैं तो खरपतवार सारे मर जाते हैं लेकिन किस्मों को कोई नुकसान नहीं होता है, और अच्छी पैदावार धान की सीधी बिजाई में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, उतनी ही पैदावार जितनी रोपाई विधि से प्राप्त करते हैं।
1: बिल्कुल, और इसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसमें भी शायद थोड़ी सी हम मेहनत को कम कर सकते हैं। और हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अब क्योंकि हम उन्नत खेती की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र को एक करियर के तौर पर अपनाने वाले युवाओं का रुझान आपको किस तरह से दिख रहा है? जब आप युवा थे उस वक्त हम आप एक युवा के तौर पर अपने करियर को कृषि विज्ञान बनाया, लेकिन आज के युवा में क्या इस फील्ड को लेकर वो रुचि है, और उस रुचि को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे युवाओं से?
0: कृषि में युवाओं को रोक करके रखना, कृषि के प्रति उनके मन में जागरूकता पैदा करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसीलिए सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे एक कार्यक्रम आर्या है जिसको हम बोलते हैं अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, आर्या, और उसी तरह से मोटिवेटिंग एंड रिटेनिंग अट्रैक्टिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, माया करके कार्यक्रम है। तो इसमें विशेष रूप से इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है किस प्रकार से कृषि के प्रति हम युवाओं में जागरूकता पैदा करें, और अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से, ड्रोन के प्रयोग से, आपका जो है बिग डेटा है, रोबोटिक्स है, सेटेलाइट का प्रयोग है, सेंसर के प्रयोग से, इन सब सारे नई तकनीकियों के प्रयोग से हम खेती को किस प्रकार से आसान बना सकें, मैकेनाइजेशन की जरूरत है, और कृषि को हम इस तरह से इसका विकास करें कि युवाओं को ये कार्य करने में अपने मन में एक गर्व की अनुभूति हो। जैसे अगर मान लीजिए आपका एक ट्रैक्टर है और उसको अगर एयर कंडीशन ट्रैक्टर बना दिया जाए तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सब आदमी अपनी गाड़ी लेकर के जाते हैं गांव में भी, कहीं भी सब गाड़ी एयर कंडीशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, विपरीत मौसम में भी लोग काम कर सकते हैं, तो ऐसे ट्रैक्टर को चलाने में युवा कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी तरह से ड्रोन का प्रयोग जैसे हम खेती में करते हैं, तो सेंसर से ड्रोन के माध्यम से हमें पता कर सकते हैं कि हमारे खेत में कहां पर कीड़ा लगा है, कहां पे बीमारी लगी है, तो दूसरी बार जब ड्रोन उड़ेगा दवाई की टंकी लेकर के तो उसी जगह पर जाकर दवा का छिड़काव करेगा।
1: पूरे ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी,
0: हाँ, तो इन सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होगा। ये जो कुछ भी हम बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही ये सब सारी चीजें

0: की जाएंगी, तो उसी जगह पर दवा छिड़काव करेंगे तो आपको दवा की कम मात्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, पूरे खेत में दवा नहीं छिड़कनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको बीमारी तुरंत नियंत्रित हो जाएगी, फैलेगी भी नहीं, रासायनिक दवाओं का अवशेष भी नहीं आएगा। तो इस तरह से स्मार्ट एग्रीकल्चर की हम बात करें, डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करें, इसकी बहुत संभावनाएं हैं और आगे आने वाले दिनों में विशेष रूप से स्टार्टअप के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत जोर दिया गया है कि हम कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स का लक्ष्य रखा गया था जो पूरा हो गया है। उसी तरह से फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से FPO बना करके हम बहुत सारे किसानों को एक साथ जोड़ करके जब खेती करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो खेती में प्रयोग होने वाली जितनी इकाइयां हैं उनको हम एक साथ खरीदेंगे, जब एक साथ खरीदेंगे तो उसकी गुणवत्ता भी अच्छी मिलेगी और उसमें पैसा भी कम लगेगा। तो इस तरह से खेती को अगर किसान सब एक साथ जुड़ करके FPO बना के खेती करते हैं तो उनकी जब अपना उत्पाद बेचने के लिए जाएंगे तो पहले से ग्राहक उसके लिए उपलब्ध होंगे और अच्छा दाम उनको मिलेगा। तो इस बात पे भी हमको ध्यान रखना है और इनके प्रयोग से निश्चित रूप से हम खेती में युवाओं को आकर्षित कर पाएंगे। आजकल देखिए हमारे जितने स्टार्टअप कृषि के क्षेत्र में आते हैं, पूसा संस्थान में हम लोग हैंड होल्डिंग करते हैं स्टार्टअप्स की, और मैं आमतौर पर पाता हूं कि जो स्टार्टअप्स हमारे बनते हैं करीब 500-600 से ज्यादा स्टार्टअप्स अभी तक हम लोगों ने शुरू किए हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर बच्चे जो आते हैं वो या तो IIT किए हुए होते हैं या IIM किए हुए होते थे, मैनेजमेंट वाले होते हैं, इंजीनियरिंग वाले होते हैं, कृषि वाले बच्चे कम आते हैं। और हम लोग अब प्रयास यही कर रहे हैं कि उनके मन में भी किस प्रकार से इस विषय के प्रति जागरूकता पैदा करें और उनको इस दिशा में प्रशिक्षण दिया जाए
1: जी। और वो बच्चे भी, वो विद्यार्थी भी, जो जैसे कि आपने बताया आपका भी व्यवहारिक जीवन तो किसान परिवार से ही था, तो उनके लिए भी संभावनाएं हैं जो गांव से संबंध रखते हैं, खेती में जिनका जीवन बीता है, तो वो अपने जीवन या अपने करियर के तौर पर इस फील्ड को अपना सकते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी क्षेत्र में जैसे आपने टेक्नोलॉजी की प्रयोग की बात की, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक परियोजना द्रोण दीदी की चलाई गई थी, तो जिसमें 1,000 महिलाओं को द्रोण उड़ाने की ट्रेनिंग दी गई और उनको द्रोण पायलट का दर्जा दिया गया, तो उससे एक आत्मसम्मान अपने मन में आता है कि हम द्रोण उड़ा रहे हैं, द्रोण के प्रयोग से हम कृषि के विभिन्न कार्यों को कर रहे हैं, चाहे वो दवा छिड़कना हो या इंसेक्ट पेस्ट डिजीज का सर्वेलेंस करना हो, मॉनिटरिंग करनी हो।
1: तो निश्चित तौर पर आपके साथ इस बातचीत से हमारे जो युवा हैं वो जरूर प्रेरणा लेंगे, और जिस तरह से आपने बनारस से लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक तक का जो आपका सफर रहा और आपके शोध की यात्रा रही वो सचमुच प्रेरणादायी है, और बहुत धन्यवाद डॉक्टर AK सिंह आप इस बातचीत में जुड़े, आपने अपने बहुत सारे अनुभव हमारे सुनने वालों देखने वालों के साथ साझा किए और आपने आपके इस अनुभव से जरूर हम सभी को एक बहुत लाभ पहुंचा है, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मैं भी आपको अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं विशेष रूप से आकाशवाणी को मुझे यह मौका देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू है आपके साथ और चल रही है गानों की सौगात आपकी तरफ। तो चलिए पहला गाना ये सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूँ?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। मैं हूँ नीतू और समय जो है ना वो इतनी जल्दी आता है और इतनी जल्दी गुजर जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी बातें करने की होती हैं लेकिन जब वक्त गुजरता है तो ऐसा लगता है कि चुटकियों में समय चला गया है। अभी देखिए ना, मई जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, यानी कि 5 महीने साल के गुजर चुके हैं और साल जैसे ऐसे लग रहा है जैसे अभी अभी तो शुरू हुआ था, अभी आधा साल खत्म होने वाला है, ये कैसे हो गया। तो ऐसा ही होता है, लेकिन ठीक है, जिसको जब आना है वो तब आएगा और जिसको जब जाना है वो जाएगा। तो मेरे जाने का भी वक्त हो रहा है। तो नीति चलती है, फिर मुलाकात होती है आपसे कभी ना कभी इसी चैनल पर। सुनते रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या

0: क्वाड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची बाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। लगभग 966 बक्सों में करीब 12 टन चेरी को मौसम के पहले पार्सल वाहन में लोड किया गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janajati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
4: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri Nate.
5: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठर।
2: सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक राठर एज डायरेक्टर न्यूज एंड हेड ऑफ आरएनयू आपका खैर मकदम है। तो आज आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम बातचीत करेंगे वो हैं एक वन ऑफ द एमिनेंट राइटर्स ऑथर्स और एक एकेडमिक रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। इनका बहुत तकरीबन 35 साल का जो वक्त है उन्होंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में एज ए सीनियर एकेडमिक हैंडलिंग डिपार्टमेंट ऑफ कश्मीरी हैंडलिंग डिपार्टमेंट द एक्सपर्टीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड ही हैज बीन द एकेडमिक इन इंग्लिश कश्मीर यूनिवर्सिटी से एज सीनियर मोस्ट टीचर रिटायर होने के बाद। इसके साथ साथ वो उनका जो करियर रहा है उनका जो प्रेजेंस रही है ऑन द लिटरेरी एजुकेशनल लैंडस्केप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, प्रोफेसर शफी शौक साहब एक बड़ा ऐसा नाम है जिनका नाम सामने आते ही स्टूडेंट्स हैं, एकेडेमिक्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, लैंग्वेज जानने वाले लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, लिटरेचर से वाबस्ता जो लोग हैं वो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ विद ऑल रेस्पेक्ट लव फॉर प्रोफेसर शफी शौक साहब। तो आज हमारे स्टूडियो में हम उनसे बातचीत करेंगे ट्रेडी सफर का। सबसे पहले मैं प्रोफेसर शफी शौक साहब आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आपका खैर मकदम है सर।
3: बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये मौका दिया।
2: प्रोफेसर शौक साहब, हम मुख्तसरन हमारे जो लिसनर्स हैं हम आपकी जुबान से ही जानना चाहेंगे कि आप जिंदगी का सफर एजुकेशन का सफर किस तरह से चला, यहाँ इस लैंडस्केप में आप एक बहुत ही आला मकाम पे आ गए, पद्मश्री अवार्डी आप हैं, इसको आप कैसे हमारे सामीन हमारे लिसनर्स को उन तक पहुँचाना चाहेंगे।
3: मेरी जिंदगी का, मेरे अदबी सफर का और मेरी तालीम का जो सफर है वो किसी खाते मुस्तकीम से नहीं चला, एक लीनियर प्रोग्रेशन से नहीं चला, बल्कि बहुत ही जिगजैग तरीके से करूँ और अपने जो मैंने सोचा था करूँ वो नहीं हुआ। पूरी नाकामियों का एक लंबा सिलसिला है लेकिन वही नाकामियां मेरी कामयाबी बन गई। ये अजीब इत्तेफाक है कि मसलन मैं स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ने गया था, घर से बाहर गांव में गया हूँ तो इन एग्रीकल्चर के लिए मुझे भेजा गया, लेकिन फिर बीएससी बायोलॉजी में किया, बायोलॉजिकल साइंसेस में, लेकिन वहाँ नाकामी ये हुई कि मेरा अच्छा डिवीजन नहीं रहा, इसलिए मैंने साथ ही एकदम बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एडिशनल सब्जेक्ट्स पास किए वो 3 साल का। फिर जो ही फारिग हुआ बीएससी से तो सीधे कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे अंग्रेजी में मैंने एडमिशन ले लिया, कोई 1973 की बात है। उससे पहले मैंने हिंदी के कुछ इम्तिहान पास किए हैं, फारसी में कुछ इधर उधर हाथ मारा, यानी कि कहीं एक सीमत में नहीं रहा। अंग्रेजी अदब पर्टिकुलरली मेरा चॉइसेस्ट फील्ड था। मैं साइंस में तालीम हासिल करते वक्त भी अंग्रेजी के बारे में लिखता रहा, अंग्रेजी से ट्रांसलेट करता रहा या कश्मीरी से ट्रांसलेट करता रहा अंग्रेजी में, वो चीजें छपती रही, लेकिन साथ साथ बहुत सारी अजीब तरह की दिलचस्पियां रही। मैंने मसलन कश्मीरी जबान का पहला ग्रामर लिखा जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज में ही मैंने पहली बार एक जर्नल भी स्टार्ट किया, खुद ही अपने हाथ से कलम से लिखता था, उसका नाम था आश। और फिर लाल चौक में आकर शोपियान से अनंतनाग से लाल चौक में वो बेचता, उसे कुछ पैसे मिलते तो उसे नेक्स्ट चुमारा छपता। लेकिन अंग्रेजी डिपार्टमेंट में रहकर मेरी मुलाकात कश्मीर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े लोगों से हुई, जिनमें प्रोफेसर रहमान राही, प्रोफेसर हामदी कश्मीरी, डॉक्टर शमसुद्दीन अहमद वगैरह वगैरह, ऐसे काजी गुलाम मोहम्मद, ऐसे लोगों से उठना बैठना रहा। मैं तो स्टूडेंट था लेकिन वो मुझे पहले ही जानते थे क्योंकि वो मैगजीन जो मैं छापता था
2: जी।
3: उसकी वजह से वो मुझे जानते थे और इसी रेडियो स्टेशन से मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते थे, अदबी मबास में हिस्सा लेता था, इस वजह से भी वो मुझे जानते थे, यानी कि एक तालिबे इल्म की हैसियत से भी मुझे वो हौसला अफजाई मिली कि बड़े लोगों के साथ उठना बैठा रहा। और इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा माहौल था, अदबी हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एम एस वॉन्ट थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, और उसके साथ साथ प्रोफेसर जे रमन साहब थे, मेरे दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी। आज तक जो टीचर्स मैंने देखे उन सब में वो सबसे अच्छा टीचर था। तो उनके साथ दोस्ती का रिश्ता रहा। प्रोफेसर ए एन धर साहब जो मेरे सुपरवाइजर बन गए एमफिल और पीएचडी में, पहले जयरामन साहब थे, मैंने वहीं से एमफिल भी किया पीएचडी भी किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे कि मैंने कहा कि माय प्रोग्रेशन हैज नॉट बीन क्वाइट लीनियर इन स्ट्रेट डायरेक्शन, मैंने उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं, तो उसको कायम करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू की कि यहाँ कश्मीरी डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन्हीं दिनों कश्मीरी डिपार्टमेंट बन गया और जब मैं इंग्लिश में, मुझे ही ये काम सौंपा गया कि मैं उसका पहला टीचर बन गया, पहला रेगुलर कश्मीरी टीचर। हालांकि कश्मीरी में मेरे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी लेकिन मेरी किताबें थी,
2: राइटिंग्स थी
3: मसलन, इनको और कोई ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर मैंने ही लिखा था, कश्मीरी ग्रामर मैंने ही लिखा था वगैरह वगैरह, और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन ये भी मैंने ही लिखा कश्मीरी में, और भी कई किताबें मेरी पहले थी स्टूडेंटशिप के दौरान ही। तो उन्होंने ये बेहतर समझा कि मुझे यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीर का पहला लेक्चरर उन दिनों हुआ करता था, तो मुझे रेगुलर लेक्चरशिप मिल गई।
2: रिपब्लिक डे

0: बहुत खुशी हुई, लाजमन खुशी हुई।
1: प्रोफेसर साहब, आपने एक नुक्ता इसमें उबारा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जैसे somebody has to file an application या nomination, जैसे आपने कहा कि मैंने कभी इसके लिए इस तरह कोई पहल नहीं की, आपको क्या लगता है एज अ लिटररी पर्सन, एज अ राइटर, एज एन ऑथर, एज एन इंटेलेक्चुअल, क्या ऐसा सिस्टम सही है या होना चाहिए कि somebody would in any field, in any sector, in medicine, in engineering, in research, in literature, in all areas of you know our day-to-day life, governance system, structure जो है, क्या अप्लाई किया जाना चाहिए या खुद सरकार या जो institutions है कंट्री में उनको खुद देखना चाहिए on the basis of work, किस तरह का आप समझते हैं as an intellect, as a right?
0: मैं समझता हूँ कि one must not struggle hard to get this kind of honorary award. ये तो बहुत ही prestigious है. So the government and different circles of different levels, they must take the decision to choose the right person.
1: Okay. Professor Shaukat Sahab, what is the history of writing by human being? Where from this mode of expression has originated? तो आप क्यों लिखते हैं? आपने क्यों लिखना शुरू किया पहले से?
0: It is a matter of introspection when I think how did I write and why did I write. इस एज में पहुंचकर जो मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी इन इटसेल्फ इज एन इंस्टिंक्ट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. क्रिएटिविटी बचपन से ही पैदा होती है, प्लेफुलनेस. जो प्लेफुलनेस बचपन की है, बनाना, बिगाड़ना, तोड़ना, मरोड़ना वगैरह और फिर से नया बनाना, ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट है. तो इंस्टिंक्चुअली कुछ काम करने से ये है कि सबसे पहले जो इन्वॉल्व्ड है पर्सन हु क्रिएट्स, ही गेट्स सम काइंड ऑफ प्लेजर इन मेकिंग एंड रिशेपिंग, एंड वही बेसिक पर्पस है. फॉर इंस्टेंस फॉर मी, वेदर आई राइट इन इंग्लिश और कश्मीरी और हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज, इट गिव्स मी अ सॉर्ट ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट आई एम इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ राइटिंग. आई एम द फर्स्ट रीडर ऑफ माई राइटिंग, आंसरेबल टू माई सेल्फ. आई असेस माई राइटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिकम द फर्स्ट क्रिटिक ऑफ माई राइटिंग. तो ये अलग बात है, फिर मुझे कोई पढ़ने वाला मिले या ना मिले. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई पढ़ने वाला नहीं है, जिनका कोई रीडर नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छा लिख के गए हैं इस दुनिया से. मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हर किसी शायर को, नावल निगार को, अफसाना निगार को, ड्रामा नवीस को ये देखना है कि इज इट सेटिस्फाइंग द क्रिएटर्स ओन इंस्टिंक्ट टू क्रिएट और नॉट. इफ इट डज नॉट, देन इट नीड नॉट बी मेड पब्लिक. लोगों के सामने रखने से पहले खुद ही एसेस करना पड़ता है. और ऐसा भी है, बहुत सारे लोग बेनाम ही मर जाते हैं, तो बेनाम ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे क्रिएटर्स हैं. तो ये क्रिएटिविटी, अगर इसको हम कहेंगे ये इंस्टिंक्ट है, इंस्टिंक्चुअल प्रोपेंसिटी है, राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ ह्यूमैनिटी, राइट फ्रॉम कमिंग इन एग्जिस्टेंस ऑफ होमो सेपियंस, दिस हैज बीन एन इंस्टिंक्ट विद मैन. चाहे वो गारों में रहा, चाहे जंगलों में रहा, रेगिस्तानों में रहा, पुराने जमाने के क्रिएटिव लोगों की चीजें आज भी स्कल्पचर है, उनकी पेंटिंग्स है, उनकी राइटिंग्स हैं, अब भी उनका आनंद लेते हैं हम. लेकिन ये कि ये पूरा ह्यूमन एक्सप्रेशन है क्रिएटिविटी.
1: हिस्ट्री भी इसमें है कि इंसान का पहले से इंस्टिंक्ट रहा है. क्या आपको लगता है कि एज अ राइटर किस पॉइंट ऑफ टाइम पे या इन द लाइफ आपको लोग जो पढ़ते हैं या पढ़ते थे, आपको किस तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता था?
0: सबसे पहले हम अपने आप हो जाएं लिखने से, कुछ क्रिएट करने से, तो वो बड़ी कामयाबी है. लेकिन उसके साथ ये भी है, वरना कोई छापता ही नहीं, पब्लिश ही नहीं करता. पब्लिश इसलिए करते हैं कि कोई और भी उस दुनिया में हो जो मेरे एक्सपीरियंस में शरीक हो, शामिल हो. मेरा जो अपना एक्सपीरियंस कोई और समझने,
1: इन्हें रीडर जो आपका होगा,
0: रीडर जो होगा, या अगर कोई सिंगर हो, कोई सुनने वाला हो, अगर कोई पेंटिंग करता है तो कोई
1: देखने वाला हो.
0: तो इसी तरह स्कल्पचर वगैरह में भी फाइन आर्ट्स हैं, उनमें यही है, क्रिएटर के अलावा कोई और इसमें शामिल हो. लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी को बहुत सारे रीडर्स मिले, और मिलते भी नहीं. अगर हम किसी बड़े से बड़े बड़े राइटर को भी लें दुनिया के सबसे अजीम, बस मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे अजीम दुनिया का राइटर जो है वो विलियम शेक्सपियर है। सब उसका नाम जानते हैं, कोई दुनिया में है ही नहीं जो भी एजुकेटेड है जो उसका नाम
1: विलियम शेक्सपियर को उनके नाम को नहीं जानते।
0: उसके काम को कौन पढ़ा है? बहुत सारे लोग, उसके इतने दर्जनों ड्रामाज हैं उनको किसने पढ़ा है? किसी एक ने एक प्ले पढ़ा, किसी ने एक चैप्टर पढ़ा, किसी ने एक सीन पढ़ा,

0: कुछ डायलॉग्स याद किए, इतना ही मिल गया उसको। और शेक्सपियर को खुद क्या मिला? कुछ भी नहीं। वो ये कि अपनी जिंदगी उसने बहुत ही फायदेमंद तरीके से गुजारी कि वो क्रिएट करता रहा और खुश होता रहा। वही खुशी जब वो एक्सटेसी मिलेगी अपने आप को, क्रिएटर को, वो बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा इनाम है।
1: प्रोफेसर साहब, बीइंग एन ऑथर एंड राइटर, आपको क्या लगता है जिंदगी में किस तरह का पर्पस आपको लगा एज राइटर? आपको फीलिंग है आज की तारीख में?
0: न सिर्फ ये कि मैं अपने दुख दर्द और अपने तजुर्बात का इजहार करूं, बल्कि मैं एक जमाने में रहता हूं, किसी जगह रहता हूं। सबसे पहले मैं अपने घर में रहता हूं, फिर अपने मुल्क में रहता हूं, अपने रियासत में रहता हूं, और इस दुनिया में रहता हूं, 21वीं सदी में रहता हूं। मेरा अकेलापन बिल्कुल कोई मानी नहीं रखता। मेरी एग्जिस्टेंस जो है, मेरा वजूद जो है, इज इन रिस्पॉन्स टू अदर इंडिविजुअल्स ऑफ दिस 21st सेंचुरी लिविंग इन सरफेस ऑफ द ग्लोब। उन सब के साथ मेरा ताल्लुक है जिनको मैं जानता नहीं, लेकिन एज राइटर, सेंसिटिव राइटर, वो आंसरेबल है, चाहे वो अमेरिका में हो, कहीं भी हो। उन सब लोगों के साथ एक रिश्ता बनाना चाहिए, जो रिश्ता है अपने जमाने और स्पेस एंड टाइम के साथ रिश्ता है, वही रिश्ता। उस रिश्ते की बिना पर हम अब एक दूसरे के दुख दर्द समझते हैं और शरीक हो जाते हैं, चाहे उसके बारे में डायरेक्टली लिखें या ना लिखें। लेकिन जब भी मैं अपनी बात करूंगा, अपनी एगनीज और अपनी पेन के बारे में लिखा, वो मेरा इंडिविजुअल पेन, मेरी इंडिविजुअल एगनी नहीं, बल्कि पूरे इस 21वीं सदी के इंसान की मुसीबत है, उसका अजाब है, उसका तन्हाईपन है, वो लोनलीनेस है जो हमको मिली 21वीं सदी में। लोनलीनेस और सेंस ऑफ एलिनेशन को जब मैं बहुत ही इंटेंसिफाई करके लिखता हूँ तो वो यूनिवर्सल खुद ही बन जाता है। उसको और लोग भी समझ सकते हैं कि ये, हाँ ये आज से 200 साल पहले नहीं लिखी जाती ये बात, हाँ ये कोई 14वीं सदी में कोई ऐसा नहीं कहता, या 14वीं सदी में आज की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो यूनिवर्स हैं, फ्री फ्रॉम टेम्पोरल लिमिटेशंस हैं, लेकिन जो आज मैं लिखता हूँ वो मेरे आज के जमाने की तर्जमानी करता है। वो सारा अदब जिसमें ये तर्जमानी ना हो, अपने जमाने और मकान और अपने माहौल की कोई आकाशी नहीं हो, तो मेरे ख्याल से वो अच्छा अदब नहीं है। ठीक है, हम लिरिसिज्म को पसंद करते हैं, लेकिन खाली लिरिसिज्म, मूसीकी और तरन्नुम की बुनियाद पर अदब की पहचान नहीं करते। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज के दौर का अदब आज के दौर का ही होना चाहिए। इसके लिए जरूरी नहीं हम कोशिश करें, जब भी हम सिंसियरली कुछ लिखें तो उसमें अकासी खुद ही आ जाती है। यानी अदब की पहचान ही यही है, रिप्रेजेंटेशन, तर्जुमानी, तर्जुमानी अपने जमाने की, अपने आप की, विद रेफरेंस टू सर्टेन पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस, वो खुद ही आ जाती है। आज भी अगर हम कोशिश करेंगे कि हम जाने 16वीं सदी में या 17वीं सदी में कश्मीर कैसा था, कहाँ ढूंढेंगे वो? सबके सब इस जहानी पानी से चले गए हैं। अगर कुछ रह गया, इस हिस्ट्री तो लिखी नहीं गई कश्मीरियों की, तो अगर हम झलक ढूंढना चाहें वो उस जमाने के अदब पारों में ढूंढ के निकालेंगे। कहीं कहीं कोई एक शेर, कोई एक मिसरा या कोई एक नज़्म पूरी मिलेगी तो हम खुश हो जाते हैं कि हमने कुछ पाया 17वीं सदी या 18वीं सदी के बारे में, वरना लिरिसिज्म वो कॉमन हो जाता है। इसलिए तर्जमानी बुनियादी शर्त है अदब की।
1: प्रोफेसर साहब, व्हाट हैव बीन योर फोकस्ड एरियाज? आपके इमोशंस से जुड़ी हुई जो चीजें थी, वो हाउ दोज पैरामीटर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड योर राइटिंग्स?
0: लाजमन है कि कोई राइटर इस दुनिया में किसी भी जबान में किसी भी मुल्क में लिखता हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिखता, अलग से होके नहीं लिखता
1: जी।
0: ही राइट्स इन रिस्पॉन्स टू अदर लिटरेचर्स ऑफ अदर लैंग्वेज ऑल्सो, विद इन हिज ओन लैंग्वेज, विद इन हिज ओन सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। लेकिन इसके लिए डिलिबरेट कोशिश नहीं करनी चाहिए कि मैं जरूरी आज के मसलन हाई फाई साइंस के बारे में लिखूं, AI के बारे में लिखूं, या आज के इंतजार के बारे में। अगर डिलिबरेटली हम कोशिश करेंगे वो अच्छा अदब कभी नहीं बन पाता। हाँ, जरूर ये है कि मैंने जैसा कहा कि कोई भी शायर हो, अदीब हो, वो इन आइसोलेशन नहीं लिख पाता, ही हैज टू रीड अलॉट। क्योंकि अदब में दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसका सब्जेक्ट मैटर और हाइयत। ठीक है, हमें उसका सब्जेक्ट मैटर

0: मिलता है आसपास के लोगों से या बाय ट्रेडिशन मिलता है हमें, लेकिन हयात का ताल्लुक जहां तक है, मसलन अगर ये टेबल मेरे सामने है, ये वही आदमी बना सकता है जिसको मकसद के बारे में, वो एक कारपेंटर हो तो अगर कोई कारपेंटर बनना चाहे उसको जरूर है उस्ताद के पास जाना पड़ेगा।
1: Exactly.
0: इस वक्त मेरे सामने इतने सारे हाई फाई कैमराज लगे हैं तो इनको चलाने वाला
1: प्रोफेशनल होना चाहिए।
0: यानी कि एक तो अदब में दो चीजें हैं, जीनियस जिसको आप खुदादाद कहेंगे या इनबॉर्न कहेंगे या इंस्टिंक्चुअल प्रोपेंसिटी कहेंगे तो, लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है इसकी हयात
1: मीन्स
0: यानी फंक्शन, कोई द फॉर्म ऑफ एनीथिंग इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम इट इज फंक्शन। तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी, खुदादाद तो ये कभी नहीं आएगा, ये इंस्टिंक्चुअली किसी को नहीं मिलेगा। इसी तरह लिटरेचर में भी अगर कोई शॉर्ट स्टोरी राइटर हो, हमारे दौर का कोई भी शॉर्ट स्टोरी राइटर हरगिज नहीं लिख पाता तब तक जब तक कम अज कम उसने रशियन वगैरह लिटरेचर की बात न करूं, अगर अपने भारत की ही बात करें, कम अज कम प्रेमचंद को तो पढ़ना पड़ेगा, कम अज कम कृष्ण चंद्र को पढ़ना पड़ेगा, अगर उनका पूरा मुताला हो तो एक शॉर्ट स्टोरी लिख सकता है क्योंकि सीखेगा। लेकिन उससे पहले बड़े बड़े मास्टर्स रहे हैं शॉर्ट स्टोरी में जिन्होंने ये जॉनर ऑफ लिटरेचर कायम किया, मसलन चेखोव, ओ हेनरी, मापासान, बालजॉक, ऐसे लोगों को जो दूसरी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हो गए हैं इंग्लिश में, हिंदी में, कश्मीरी में, उनको तो पढ़ना पड़ेगा सीखने के लिए, ये हयात कहाँ से आएगी। वरना ऐसा होता है कि आज बहुत सारे लिखना चाहते हैं कि शॉर्ट स्टोरी, लेकिन उनको मालूम ही नहीं शॉर्ट स्टोरी क्या है जब किसी का पढ़ा ही नहीं। अगर किसी और जबान का न पढ़े, कम से कम अख्तर मोहिद्दीन को पढ़े,
1: हाँ। जम्मू कश्मीर की जब बात है किसने, अख्तर मोहिद्दीन साहब की पढ़े,
0: हरी कृष्ण कौल को पढ़े, रतनलाल शांत को पढ़े, ऐसे मास्टर्स को पढ़कर ही सोमनाथ जोशी को पढ़े। जब ऐसे मास्टर्स को पढ़ेंगे हमें आएगा कि अफसाना कैसे लिखते हैं। यही बात गजल में भी है, बहुत सब के सब गजल लिखते हैं, लेकिन ये जाने बगैर, उन उस्तादों का कलाम पढ़ने के बगैर, ईरान से आए फारसी की गजल गो राइटर्स, किसी न किसी हाफिज किसी को पढ़ें या गालिब को पढ़ें, अगर गालिब को पढ़ा ही नहीं है तो गजल कैसे लिखेंगे, ये रदीफ काफिया इस्तेमाल कैसे करेंगे, वजन अवजान का शऊर कैसे पैदा करेंगे। ये जो तहजीब है अदब की वो उधार लेनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है, हासिल करनी पड़ती है, ये इंसलाकी चीज है, एक्वायर्ड चीज है जो मेहनत से एक्वायर की जाती है। इसलिए दोनों चीजें सही है, एक तो जो तजुर्बा है वो अपनी जात का हो, लेकिन हयात का मामला जब तक है इसका प्रेजेंटेबल सूरत, वो प्रेजेंटेबल सूरत सीखनी पड़ती है। अगर एक मामले में कमजोर रहा, मसलन हमारे गजल गो कुछ बहुत सारे हैं जो सिर्फ रदीफ काफिया को जानते हैं, अवजान की तमीज रखते हैं, लेकिन मवाद कुछ नहीं, उनको कहने के लिए कुछ नहीं, फिर भी गजल बनाते हैं। अगर उसमें हमारे दौर की कोई रिफ्लेक्शन नहीं, अगले जमाने में किसी को याद करेंगे कि हम देखना चाहिए 21वीं सदी की इस कैसा इंसान था, सिर्फ इश्क आशिकी की बातें करने वाले से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, और सिर्फ मूसी की बुनियाद पर कुछ नहीं मिलेगा इसको। इसलिए न सिर्फ रवायत सीखना पड़ेगा हयात, और अपने जमाने से हासिल करना होगा, वो तभी मुमकिन है जब हम अमली तौर पर जिंदगी में शामिल हों। हमारी शायरी के लिए, अदब के लिए जरूरी है कि आई एम देयर फॉर आई, इसका रिवर्स एग्जिस्टेंशियली, मैं हूं इसीलिए सोचता हूं, ये नहीं कि मैं सोचता हूं इसलिए हूं, अगर वो तो सिर्फ थॉट बन गया। अगर हम कहेंगे मैं हूं, I exist, therefore I think, I am, therefore I think, तब रिवर्स हो जाता है कि हम इंसान की सतह पर बात कर पाते हैं।
1: इस तरह समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर हैं, they could be the good writers?
0: No, not necessarily. I have so many colleagues of mine who are good teachers, who know better English than me, ज्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं लेकिन क्रिएटिव नहीं है।
1: जिस भी लैंग्वेज में रीडर है, उस रीडर के जो मेंटल एंड इमोशनल होराइजन्स हैं, मेंटल डेवलपमेंट है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, किस तरह से आप इसको फील करते हैं, एक राइटर किस तरह से इसको बेस्ट तरीके से कर।
0: सिंसियर टू माई ओन एक्सपीरियंस दैट आई वॉन्ट टू डिलीवर समथिंग, transport something from my inner being to others, the listener or the reader, and then I become a part of the community. I cannot isolate myself from the community. Community ki jo problems hain, issues hain, musibatein hain, khushiyan hain, gham hain, anxieties hain, jis mahol mein hum rehte hain,

0: कौन अदीब, कोई शायर, कोई फिक्शन राइटर ऐसा नहीं हो सकता। लिटरेचर लिखना टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट में दो चीजें हैं, एक तो इसका मैटर है, दूसरा इसका कमिटमेंट है, ये किस पर्पज के लिए लिखा है। इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल जब हर किसी बात में है, अगर इस माइक्रोफोन का क्वालिटी कंट्रोल है, इस शीशे के गिलास का क्वालिटी कंट्रोल है, पानी का क्वालिटी कंट्रोल है, तो जो प्रोडक्ट हम लफ्जों में पेश
1: क्रिएट यू राइट एंड यू
0: हैज टू बी सब्जेक्टेड टू सम काइंड ऑफ स्क्रूटनी। इफ इट पासिस ऑल द टेस्ट्स ऑफ स्क्रूटनी देन इट इज जेन्युइन लिटरेचर, इफ इट डज नॉट देन इट इज नॉट गुड लिटरेचर। व्हेन वी कीप दिस थिंग इन माइंड एंड राइट, we are committed to our society, we are committed to our contemporary reality, contemporary world in general, and humanity in at large. As you said, it has to be very very humane. तो humane तो होना ही चाहिए। हम किसी जंगल में तो नहीं रहते, हम किसी रेगिस्तान में अलग से, किसी जजीरे में अलग तो नहीं रहते, हम लोगों में बसते हैं, तो उन लोगों की बात खुद ही आ जाती है जब मैं अपनी बात कहूँ।
1: As a literateer, as an author, as a writer, how do you navigate the barriers of the language, culture or personal life, jo hai family life hai, global level ko absorb karke uske baad aap apni creativity ko nikhar sakte hain, hone up kar sakte hain, sheen and shine de sakte hain, isko aap kaise navigate karte hain as an author, how you have been doing it?
0: कि मुझे 5-6 जबानों का इल्म है, अंग्रेजी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, इवन पर्शियन, अरबिक तो है ही, संस्कृत, इन सबको मैं टाइप भी करता हूँ, लिखता हूँ और कंपोजिंग भी करता हूँ खुद ही अपने कंप्यूटर पर। ये पहले मेरे लिए एडवांटेजेस रहा, इस वजह से मुझे कई जबानों के अदब का मुताला करना पड़ा। इसके साथ जो ट्रांसलेशन वर्क है, जो बाकी लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुआ है अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में, तो मैं भी इसमें शरीक हो गया। मैंने इंटर लैंग्वेज एंड इंट्रो लैंग्वेज ट्रांसलेशन किए हैं। मसलन मैं फारसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मैंने मिर्जा गालिब की बेहतरीन गजलों का अंग्रेजी तर्जुमा किया, बेस्ट ऑफ मिर्जा गालिब पर्शियन पोएट्री, मेरी किताब छपी, बहुत चली और बहुत पसंद की गई। इसी तरह मैं कभी उर्दू की बेस्ट सूफियाना पोएट्री को कश्मीरी में डाला, इसी तरह ऐसे ही काम करता रहा और अपनी शायरी और अफसाने लिखने के साथ साथ।
1: Professor Ashok Sahab, the amount of time, I can say the hours, months, life you have spent on writings in academics, years of workings, you know, since childhood, you know, successful in navigating challenges, number one. Number two, how the people around you, your family and your friends who are associated with you, you would like to give credit to anybody?
0: Yes, my wife particularly, because she has provided me ample opportunity to be busy with my own work and free from the household jobs. Also, thankful to my children. Up to the 12th grade, I have been their tutor, very dedicated tutor. मैं आज भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा पढ़ा सकता हूँ।
1: सो मच ऑफ वैरायटी इन योर लाइफ।
0: मुझे एडमिशन नहीं मिला मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि उन दिनों इनविटेशन कार्ड मिलना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो मेरे बच्चे बहुत पढ़े हैं, मेरा बेटा डॉक्टर रिजवान रोमी इस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनकोलॉजी डिपार्टमेंट के सबसे वर्ल्ड फेमस ऑनकोलॉजिस्ट हैं। मेरी बेटी इस वक्त कनाडा में है, वो भी साइंस फील्ड में ही एक्सेल कर गई है। ये मुझे खुशी देता है कि चलिए मुझे तन्हाई मिली।
1: डू यू फील दैट दे वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ह्यूमन सोसाइटी?
0: दैट हैज बीन माय एम, दैट दे शुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन देयर ओन वे, नॉट लाइक मी प्लेइंग विद वर्ड्स एंड मेकिंग थिंग्स, एंड लेट देम डू समथिंग, कंट्रीब्यूट टू ह्यूमैनिटी। ऑनकोलॉजी तो अगर कुछ कर पाए तो
1: exactly.
0: अगर एक ही आदमी को बचा पाए, मेरा बेटा, तो बड़ी बात है। मुझसे ज्यादा बड़ा काम किया है उसने हीमाटोलॉजी में, उसने वो कैसे कैंसर ट्रीटमेंट हो सकता है, और उसने हेडवेज की है। वो रोज एक मुल्क में दूसरे मुल्क में रहता है और वहाँ मुझे पिक्चर्स भेजता है, मुझे खुशी मिलती है।
1: फ्रॉम ऑल अक्रॉस लाइफ, जितने भी फील्ड हैं दुनिया में गवर्नेंस के, एक पॉलिटिशियन आता है, एक MLA आता है, एक मेंबर पार्लियामेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप एज टीचर किस तरह से आप देखते हैं आज की तारीख में? आप बहुत हद तक मुतमईन है?
0: मैं मुतमईन हूँ। मैंने पहले अर्ज किया कि ये जरूरी नहीं कि मुझे बहुत सारे पढ़ने वाले मिले, लेकिन जो कश्मीरी पढ़ते हैं कॉलेजों, स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ना ही पड़ेगा शफी शो। क्यों? डिक्शनरी किसी और ने नहीं लिखी है, तो मेरी डिक्शनरी उनको लेनी ही पड़ेगी। हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर किसी ने नहीं लिखी है, तो मैंने ही लिखी, उनको लेनी है कॉपी, उनकी 31 एडिशन आज तक।

0: गए हैं 1978 से आज तक, हर साल मैं इसको रिवाइज करता। पहला ग्रामर पढ़ना ही पड़ेगा सबको। इसी तरह मैं खुश हूँ हजारों लोगों जो मेरी किताबें खरीदे, उनके साथ मेरा रब्ता न हो वो
1: दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट।
0: मैं उनको जानता हूँ जिनको मैंने डायरेक्टली पढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि उनमें से भी कुछ ऐसे मेहनत करने वाले पैदा हो जाएं, ऐसे काम करें। करने को तो बहुत कुछ है, अभी हर कोई काम दूसरे नए काम की एक फंडामेंटल बुनियाद बनता है। अगर मेरी किताब नई किताब बिना बने तो मेरे लिए खुशी की बात होगी।
1: प्रोफेसर अशोक साहब, किस तरह से आप चाहेंगे कि नेशनल लेवल पे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं और जेंड के लेवल पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको किस तरह से आगे की तरफ देखकर क्या काम किया जाना चाहिए?
0: सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत जरूरी है। एक तो हमारा जो रिवायत, जो हमारी ट्रेडिशन है, किसी भी फॉर्म में, कश्मीरी शायरी में, नसर में वगैरह, उसको प्रिजर्व किया जाए, रिप्रिंट किया जाए। हैरत की बात यह है कि हमारे बड़े बड़े शोरा का कलाम इस वक्त अवेलेबल ही नहीं मार्केट में। हमारे मीरास को बचाया जाए।
1: प्रोफेसर शफी शौक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम विद अस।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सो डियर लिसनर्स, विद दिस द स्पेशल प्रोग्राम विद पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक कंक्लूड्स हियर। खुदा हाफिज।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी जम्मू कश्मीर से साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रोफेसर शफी शौक के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी समाचार के विशेष संवाददाता तारिक राठौर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। अभी आपने सुना फिल्म वक्त से ये गीत ए मेरी जोहरा जबी, मन्ना डे साहब की आवाज थी, रवि का संगीत और साहिल लुधियानवी साहब के बोल। आइए अब सुनते हैं फिल्म मेरा साया से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार श्रोताओं, विज्ञापन के बाद आज हम याद कर रहे हैं सुनील दत्त जी को।

हिंदी सिनेमा के विख्यात अभिनेता, निर्माता और निर्देशक, जिन्होंने हिंदी फिल्मों में और कुछ पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था, उन्हीं की फिल्मों से गीत अभी आपने सुने। और हम आज याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के कालजयी संगीत मनीषी आदरणीय लक्ष्मीकांत जी को। उनकी स्मृति को भी हम सादर नमन करते हैं और आइए सुनते हैं उनका निर्देशित ये गीत।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।
3: हर घर

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद के तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष साक्षात्कार में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपकी मुलाकात स्वामी ब्रह्मदेव महाराज से करवा रहे हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2026 के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। स्वामी जी के प्रयासों से हजारों दिव्यांगों का जीवन रोशन हुआ है। आप पिछले लगभग 5 दशकों से श्री गंगानगर में जगदम्बा अन्ध विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। श्रोताओं जानते हैं समाज सेवा को समर्पित स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में। स्वामी जी, सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन, आपकी शिक्षा दीक्षा और आध्यात्म की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ?
3: मैं छठी क्लास तक तो गांव में ही पढ़ा हूँ, ग्रामीण हमारा जीवन का प्रारंभ है। उसके बाद हमारा गुरुजी से संबंध जुड़ा, उनके सत्संग के माध्यम से हम अपने गुरुजी से प्रभावित होकर के संतों के शरण में चले गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें पढ़ने लगा दिया, तो हमारी शिक्षा सारी अमृतसर की है। वहाँ अखाड़ा संगल वाला है, जहाँ रह करके हमने दुर्गयाड़ा मंदिर में जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं बैठ करके हमने प्रभाकर की संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वहीं हमने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गाँव में

0: तंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए। 1960 में मैं गुरुजी के चरणों में चला गया था। 1972 तक पढ़ने के बाद गुरुजी के पास सेवा की। 72 में गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी तो हम पटियाला चले गए। पटियाला सत्संग के माध्यम से वहाँ एक आश्रम बढ़ गया। तो जब मैं अमृतसर में पढ़ता था वहाँ हमारे संस्कृत विद्यालय के साथ एक छोटा सा अंध विद्यालय भी था, तो मैं अक्सर उसमें जाया करता था। तो मेरे मन में कई बार आता था ये सबसे बड़ी तो ये सेवा है, बाकी तो सबको लोग पढ़ा लेते हैं, तो जिसको दिखते ही नहीं उसको पढ़ाना, उनको किताबें ऐसे पढ़ते देख करके मेरे बड़ी उत्सुकता थी कि प्रभु ने कभी कृपा की तो आप अंध विद्यालय में। वो मन में विचार हमारे बैठा हुआ, तो चलते चलते गुरुजी की आज्ञा से पटियाला चले गए, वहाँ भी आश्रम बन गया। तो 73 में हरिद्वार में भी आश्रम बन गया। उसके बाद हम इधर आए तो समाणा पटियाला धूरी खन्ना इधर सत्संग करते रहे, तो अचानक हमें गंगानगर के दो व्यक्ति हरिद्वार में मिले। वो हमें यहाँ ले 76 में, तो हनुमान जी का मंदिर है वो भी निर्माणाधीन था, वहाँ दो दिन सत्संग करके हम चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अगले साल बुलाया, तो 8-10 दिन जगह सत्संग हुआ तो वो कहने लगे जी हमारा बंदर पूरा करवाओ। 78 तक वो बंदर कंप्लीट हो, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद यज्ञ करने के बाद हम चले गए। जब दोबारा फिर आए अगले साल एक दिन के लिए, तब ये जो नया चक है जिसके बाद करचैल चौक कहते हैं, ये नया चक था। हम यहाँ 78 में आ गए। ये नए चक के एक पुरजाराम जी कुलचाणिया जो थे उनकी ये जमीन है, एक बीघा जमीन है, उन्होंने माता का मंदिर बढ़ाया हुआ था, उसका नाम था जगदम्बा माता मंदिर, छोटा सा मंदिर, एक बीघा उसके नाम जमीन। तो ये हमारे पास हनुमान मंदिर में चले गए जी। हमारा मंदिर तो बन गया, वहाँ पूजा तो होती नहीं, तो हमें लगता है कि पूजा ना हो तो अपराध है, आप उसमें कुछ बनाना चाहते तो बनाओ। वहां से फिर पैदल चल करके गाँव के बाद जब इस जगह को देखा, सड़क के किनारे वहाँ दीप के पेड़ लगे हुए, छोटा सा मंदिर है, तो एकदम माता के दर्शन करते मन में विचार आया कि जो अपने अंध विद्यालय है ना वो यहाँ पूरा हो सकता। शहर से दूर है, चारों तरफ खेत है, कल को जगह की जरूरत होती है जगह भी मिल सकती है। तो 13 दिसंबर 1980 को अंध विद्यालय की नींव हमारे गुरुदेव संत बाबा करदयाल दास जी महाराज जी के कर कमलों से रख दी गई। 81 में 6 कमरे हमने तैयार कर लिए थे, एक बच्चे से जिसका नाम राजकुमार था और एक हमारे थे अध्यापक जिनका नाम था अमरनाथ गर्ग, दोनों से स्कूल शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले गए, हम भी संघर्ष करते गए, सत्संग होता रहा, लोगों की भी रुचि बढ़ती गई। फिर गांव से जहां पता चलता था ब्लाइंड बच्चा लेने के लिए जाते थे, बड़ी समस्या आती थी उनको समझाने के, उनको समझा बुझा के गर्ग साहब को साथ लेके जाना, पढ़ के दिखाना, फिर बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
1: स्वामी जी, इस विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण और स्वावलंबन बनाने के लिए किस प्रकार सिखाते हैं ताकि वो खुद स्वावलंबी बन जाए?
0: ये विद्यालय जब शुरू हो गया इनको तो हम बनाने सिखाते थे, कुर्सियां बनाना, बैग बनाना, बाकी खेल कूद संगीत में एमए की शिक्षा, ये तो इन बच्चों के जीवन यापन के लिए थे, आगे इनको सर्विस भी मिल सके। और साथ ही फिर 83 में डेफ बच्चों के लिए शुरू हो गया, अब उसमें बच्चे आने लगे। उन बच्चों के लिए शिक्षा तो थी ही साइन लैंग्वेज से, साथ के साथ लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी ब्यूटी पार्लर ये काम सिखाना, बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिलवाना, फिर बच्चों को धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया, पहले हम टाइप सिखाते थे फिर कंप्यूटर सिखाने लग गए, तो बच्चों के लिए फिर प्रेस लगाई दूसरी कंपोजिंग वाली, फिर हमने ऑटोमेटिक प्रेस लगाई ताकि बच्चे आगे पढ़ लिख करके कहीं रोजगार प्राप्त कर सके। ये दोनों का डेफ के लिए अलग और ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग दोनों तरफ चलता रहा।
1: स्वामी जी, अब तक की यात्रा में कितने बच्चे लाभान्वित हो सके हैं और भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
0: इसके बाद फिर हमने शुरू किया था नेत्र चिकित्सालय के, जो ब्लाइंड बच्चे ब्लाइंड हो चुके हैं उनको तो शिक्षित करो, जो ब्लाइंडनेस बढ़ रही है वृद्धों में भी और कई जन्मजात बच्चों के भी कैटरेक्ट होता है सफेद मोतिया, उससे ही बच्चा ब्लाइंड हो जाता अगर इलाज ना हो। तो फिर आई हॉस्पिटल की स्थापना की, लोगों के सहयोग से आई हॉस्पिटल बढ़ गया। उस आई हॉस्पिटल में जिसका पढ़ाना तो पढ़ाए, जिसका इलाज नहीं तो उसको वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करते, ताकि जो वृद्ध अवस्था में ब्लाइंडनेस आती है वो ब्लाइंडनेस का कंट्रोल होता रहे।
1: स्वामी जी, भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
0: बच्चों के लिए हमने जो यहाँ प्रयास किए, कुछ बच्चे तो हमने डेफ बच्चे पहलवान बनाए, ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट में जूडो में खेलों में दे करके नेशनल लेवल तक ये भी बच्चे जाते रहे। फिर हमारे पास मिलिट्री के लोग भी आने लगे, उसके बाद दयालू जनरल साहब आए थे, उन्होंने जो मिलिट्री का एमएस डिपार्टमेंट है उसमें हमारे डेफ बच्चे उन्होंने रख ली। फिर तो दयालु बच्चों की सर्विस की कोई चिंता नहीं रही। रेलवे में ब्लाइंड बच्चे हैं, एजुकेशन में ब्लाइंड बच्चे चले गए, स्कूल टीचर बन गए। अब तो उसके

0: मशहूर था, वहाँ वहाँ भेजते रहे। दूसरा ये था कि बैंकों का काफी विस्तार होने लगा, एटीएम लगने लगे, तो हमारा ब्लाइंड बच्चा एटीएम से पैसे कैसे निकालेगा। फिर हमने बैंक से संपर्क किया, इन्होंने फिर एक ऐसा बनाया एटीएम जिसके ऊपर लिखा हुआ था ब्रेल प्रेस के शब्दों से, तब हमारे बच्चे जाकर के एटीएम में इससे अपने पैसे निकाल लेते थे। पहला एटीएम जो ब्रेल लिपि में था वो गंगानगर से शुरू हुआ, पहली जो कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस है राजस्थान में पहली अपने लगाई।
1: स्वामी जी, दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज की धारणा में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है और यह बदलाव क्यों जरूरी है?
0: जो यंग होता है ना, यूथ जिसको आजकल जेन जी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को दिशा देनी है। जैसे हमें गुरुदेव ने दिशा दे दी जवानी में, बढ़ते बढ़ते इधर लागे, तो ये दिशा मिलती है कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। अगर वहाँ भी इसी प्रकार के आयोजन होते रहे विकलांगों के प्रति, ब्लाइंड बच्चा कैसे पढ़ सकता, यूनिवर्सिटी में ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, डेफ की भी कॉन्फ्रेंस जगह जगह रखी जाए, ताकि लोगों में बहुत बड़ी भावना है दयालु, कहीं भी बात करो यंग ब्लड सब कुछ करने के लिए, समाज सब कुछ करने के लिए तैयार है। हमारे को समाज ने बहुत सहयोग दिया, जगह जगह समाज सहयोग दे रहा है, सहयोग लेने वाला चाहिए। इसलिए अगर ऐसे आयोजन हो जगह जगह यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, के ब्लाइंड कैसे पढ़ता है, जैसे अब हमारे पास ना कॉलेजों के बसें भर के आती है, वो उनका एजुकेशनल टूर भी हो जाता है और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, डेफ बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, और किस प्रकार कई लोग आते हैं, किस प्रकार हमारा आई हॉस्पिटल बड़ा है, उसमें आजकल 6 सर्जन है, 70-80 ऑपरेशन प्रतिदिन होते हैं, हर हफ्ते इन दिनों में जगह जगह फ्री कैंप लगते हैं, बस जाती है, फ्री चेकअप करेंगे, लोगों की कमेटियां बड़ी हुई हैं, उनसे जो डिटेक्ट होता है मरीज उनको फ्री लाते हैं, फ्री ऑपरेशन होता है, भोजन पानी की दवाई की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, फ्री ही उसको बस से वहाँ छोड़ के आएंगे उसके डेस्टिनेशन पे जहाँ से उसको लेकर के आए हैं। तो ये व्यवस्था भी सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से और जो कमेटियां बनी हुई है उनके सहयोग से ये व्यवस्था भी बहुत सुंदर चल रही है और आज तक 5 लाख से ऊपर आई कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं।
1: स्वामी जी, युवाओं को मौलिकता के इस युग में समाज सेवा से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए?
0: एक पहले धारणा बनी थी कि कॉलेजों में कोई धार्मिक टीचर भी हो तो उनके माध्यम से हो सकता है, बाकी ये जो आजकल मैंने बताया ना कि कॉलेजों के स्टूडेंट जो हैं, जहाँ प्लस टू के जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जहाँ नर्सिंग कर रहे हैं, वो लोग बसे लेकर के अगर ऐसी संस्थाएं बच्चों को दिखाएं जहाँ वृद्धों उसके लिए काम हो रहा है, जहाँ डेफ बच्चों के लिए काम हो रहा है, ब्लाइंड के लिए काम हो रहा है, MR बच्चों के लिए काम हो रहा है, हमारे यहाँ निशुल्क अंग भी लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल निशुल्क, यहाँ कैंप लगता है उसमें बिल्कुल निशुल्क, जो भी कोई आएगा चाहे रिपेयर करवाए चाहे अंग लगाए वो भी निशुल्क काम यहाँ होता है। तो इस प्रकार अगर संस्था दिखाई जाए विद्यार्थियों को, कॉलेज तक के विद्यार्थियों को, क्योंकि तब तक बच्चा समझने लग जाता है तो वो ना जाने कहाँ जाकर के कौन सा काम क्या कर दे। कई स्टूडेंट हमारे गए हैं यहाँ से, उन्होंने अपने गांव में 5-4 बच्चे लेकर के स्कूल खोल रखे हैं, वो भी सेवा भावना में लगे हुए हैं, कहीं ने डेफ बच्चों के लिए ट्यूशन का काम कर रखा है, तो ये काम हो सकता है अगर इस प्रकार ये संस्था दिखाई जाए। तो मेरे को भी देखने से प्रेरणा मिली, या तो दयालु किसी चीज को देखता है तब वो देखता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, जहाँ जो किसी चीज के बारे में सुनता है कि ये फलानी जगह संस्था चल रही है जी बहुत अच्छी है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी करूँ। इस प्रकार कई लोग हमें यहाँ संपर्क करते हैं, नाना प्रकार की जो संस्थाएं हैं कि आप कैसे डेफ को चला रहे हो, मुखपद विद्यालय कैसे चला रहे हो, इससे प्रेरणा लेकर के आप देखिए बठिंडा में बहुत बड़ा स्कूल बन गया, हमारे संप्रदाय के संत ने 10 एकड़ जमीन दी वहाँ, उसको अब DC साहब जो है रेड क्रॉस वो चला रही। इसी प्रकार ये अबोर में हमारे पास में वहाँ भी मूकबद्र विद्यालय शुरू किया गया, फरीदकोट में भी है। इस प्रकार छोटे छोटे विद्यालय भी शुरू हो जाए तब भी बच्चा नजदीक ही अपनी शिक्षा प्राप्त करके, एक मैं आपको गारंटी देता हूँ दयालु, बच्चा अगर वो शिक्षित हो गया ना वो मुख्य धारा के साथ जुड़ जाता है, समाज को समझने लग जाता है, क्योंकि बुक्स पढ़ता है, बातें सुनता है, तो जो नौकरी लगे हुए हैं उनको भी मिलता है, उनके मिलने से वो भी प्रयास करते। इसलिए ब्लाइंड बच्चे रेलवे में भी जा रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे बैंकों में भी जा रहे हैं, डेफ भी जा रहे हैं, बस बच्चों को लेना है, स्कूल में लाना है, उसको किसी ढंग से प्रशिक्षित करो, एक बार वो प्रशिक्षित हो गया समझ लो बच्चा मुख्य धारा में जुड़ गया, अब वो समाज पे परिवार पे बोझ नहीं रहेगा, सपोर्टर बन जाएगा।
1: स्वामी जी, आपकी तपस्या को 50 साल पूरे

0: हो रहे हैं। आने वाले समय में आप कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें साकार होते हुए देखना चाहते हैं?
1: चलो, मुझे ऐसा लगता है जो आजकल सरकार का जो वातावरण बढ़ रहा है, जैसे और इनको नाम दे दिया दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों के प्रति जो सरकार की योजनाएं चल रही है नाना प्रकार की, उनको ऋण देना, उनको अपने पांव पे खड़ा करने की योजना देना, उनको सर्विस देना, रिजर्वेशन देना, ऐसी योजना जो सरकार चला रही है, तो ये योजना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी तरफ से सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की है, और समाज सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर के कई जो दानवीर हैं, जहाँ जो इसमें समाज में कुछ काम करना चाहते हैं समाज सेवी, उनको भी उत्साह मिलता है। तो मैं एक और भी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार ने इस गंगानगर जिले की सेवा को मान्यता दी है, ये पद्म श्री दे करके इनकी सेवा को स्वीकार किया है कि यहां कुछ हो रहा है। इसके लिए मैं जिले की ओर से भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
0: स्वामी जी, मुझे जितेंद्र शर्मा को अनुमति दीजिए।
2: जय श्री। अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे जितेंद्र शर्मा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

साहित्यानुरागी श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशी भटनागर और आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज की इस महफिल कलाकार बेमिसाल में हम नमन कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के दो ऐसे स्तंभों को जिनका पूरा जीवन मर्यादा, संघर्ष और कला का एक मिसाल रहा। हमारे पहले कलाकार ने विभाजन की तपिश झेलकर बलराज दत्त के नाम से अपनी यात्रा शुरू की और पहले रेडियो सिलोन की लहरों पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा और फिर जब रुपहले पर्दे पर आए तो इतिहास उन्हें सुनील दत्त के नाम से अमर कर गया। आइए उनकी इसी सदाबहार गंभीर और शालीन विरासत को याद करते हैं शंकर जयकिशन की इस धुन के साथ।

श्रोताओं, आज सुर साधना के अप्रतिम शिखर और भारतीय सिनेमा के कालजयी संगीत मनीषी प्रसिद्ध जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के आदरणीय लक्ष्मीकांत जी की भी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम उनकी स्मृति को भी सादर नमन करते हैं। मुंबई की बस्तियों से संघर्ष कर उभरे लक्ष्मीकांत जी न केवल एक अद्भुत मैंडोलिन वादक थे, बल्कि वे प्रतिष्ठित 7 फिल्मफेयर पुरस्कारों और लता मंगेशकर पुरस्कार जैसी कई राष्ट्रीय उपाधियों से भी विभूषित थे। तो आइए फिल्म मिलन से ये गीत सुनते हैं, सुनील दत्त जी के अभिनय और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा।

श्रोताओं, क्या आप जानते हैं सुनील दत्त जी हिंदी सिनेमा के विख्यात अभिनेता तो थे ही, साथ ही निर्माता और निर्देशक भी थे और उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया। चंबल की असली बीहड़ों में फिल्माई गई मुझे जीने दो के खूंखार डाकू के किरदार के लिए अपना पहला फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाले सुनील जी ने जब पड़ोसन के मासूम भोला बनकर सुर छेड़े तो पूरी दुनिया को लोटपोट कर दिया। आइए रस खोलते हैं कानों में इसी अल्हड़ और अमर खिलखिलाती हुई प्रस्तुति के साथ।

0: डेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोताओं, विज्ञापन के इस लघु विराम के बाद आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का पुनर्हार्दिक स्वागत है। आज हम याद कर रहे हैं भारतीय संगीत जगत की अमर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुप्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत जी को। प्यारेलाल जी के साथ उनकी अटूट संगीतमय जुगलबंदी ने 3 दशकों से अधिक समय तक बॉलीवुड पर राज किया और 500 से अधिक फिल्मों में लगभग 1800 सदाबहार गीतों की सौगात दी। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा रचित एक और मधुर गीत, और इसमें भी अभिनय है सुनील दत्त जी का।

पद्मश्री से सम्मानित 5 बार के सांसद और देश के केंद्रीय खेल मंत्री रहे सुनील दत्त जी ने जीवन के हर मंच पर एक सच्चे नायक की भूमिका निभाई। आज ही के दिन यानी 25 मई को भले ही वे इस संसार से विदा हो गए, लेकिन अपनी अमिट कला, मानवीय सिद्धांतों और असीम आत्मीयता के साथ वे हमारे दिलों में सदा रहेंगे। और इसी प्रकार अपनी सम्मोहक स्वर लहरियों से संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले युग प्रवर्तक संगीतकार लक्ष्मीकांत जी को आकाशवाणी परिवार की ओर से विनम्र भावभीनी श्रद्धांजलि। तो सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। आज के कार्यक्रम में इतना ही, और इस मधुर रचना के साथ प्रियांशी भटनागर का आप सभी को सस्नेह नमस्कार।

नागिन फिल्म से ये गीत सुन रहे हैं आप। सुनील दत्त जी इसमें किरदार निभा रहे थे प्रोफेसर विजय का। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के सुर हैं और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायात के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। बाकिया पद्म अवार्ड्स इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनक्किद की जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं, जबकि 16 अफराद को बाद अज मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल योम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। यह अवार्ड लोगों के गिराकद्र कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, समाजी काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: क्वाड मुल्कों के वज़रा खारजा की मीटिंग कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर खारजा पेनी वांग, जापान के वज़ीर खारजा तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के वज़ीर खारजा मार्को रूबियो शिरकत करेंगे। वज़ीर खारजा डॉ एस

0: जयशंकर इस मीटिंग की सदारत करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि लीडर मुख्तलिफ तरजीही शोबों में क्वाड इश्तराक को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल करेंगे, मौजूदा इकदामात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर बैनुल अक्वामी उमूर पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। क्वाड ग्रुप भारत, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पर मुश्तमिल है और ये भारत बहरुल काहिल खत्ते में अमनो सलामती और इस्तेहकाम पर खास तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक कलीदी ग्रुप के तौर पर उभरा है। भारत मस्कूरा ग्रुप के मौजूदा सदनशी होने के नाते इस मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। साल 2024 में अमरीका में वेलमिंगटन में क्वाड की गुज़श्ता सरबराह मीटिंग में ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सिक्योरिटी इश्तराक को वसत देने की खातिर अहम इकदामात का ऐलान किया था। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह की दहशतगर्दी से निपटने में खास तौर पर दिलचस्पी के हामिल हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आजादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाजे रहना चाहिए।
1: हमें दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने के सिलसिले में हमेशा वाजे रहना चाहिए और इसलिए दहशतगर्दी से निपटने के मामले में हमारा इश्तराक इंतहाई अहम है। आवाम से आवाम के दरमियान रابطے भी हमारे ताल्लुकात में खसूसियत के हामिल हैं, क्योंकि इनसे दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी समझबूझ में मदद मिली है और इन्हें एक खास मकाम हासिल है।
0: सुप्रीम कोर्ट ने नीट इम्तिहान के इनकाद में बार बार होने वाली कोताही पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि यह बात मायूसकुन है कि इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी ने पेपर लीक होने के पहले के तनाजे से कोई सबक हासिल नहीं किया। जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी और मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई से जवाब तलब किए हैं। इन दरखास्तों में मेडिकल दाखिला इम्तिहान के इनेकाद के लिए मौजूदा एजेंसी की जगह एक ज्यादा मजबूत और खुद मुख्तार इदारा कायम किए जाने का मुतालबा किया गया है। अदालत ने इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करके उन सिफारिशात पर अमल दरामद की तफसीली जानकारी फराहम करे जो इसरो के साबिक सरबराह के राधाकृष्णन की सरबराही वाली कमेटी ने मस्कूरा एजेंसी के कामकाज को असर नौ तरतीब देने के लिए पिछले साल की थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आसाम सरकार ने आज रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया। मस्कूरा बिल में एक से ज्यादा शादियां करने पर पाबंदी आयद करने और लिव इन रिलेशनशिप्स के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की बात कही गई है। मस्कूरा बिल में कहा गया है कि इसका इतलाक आसाम में रहने वाले किसी भी दर्ज फहरिस्त कबीलों पर नहीं होगा। शादी के लिए मस्कूरा बिल में मर्दों की कम से कम उम्र 21 साल और ख्वातीन की 18 साल तय की गई है। कानूनी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए बिल में शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने की तजवीज़ है जो गुजारे भत्ते, मीरास और शरीक हयात के लिए दीगर कानूनी तहफ्फुज़ के ताल्लुक से अहमियत का हामिल रहेगा। रियासत के काबीना वजीर अतुल बोरा ने वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से ऐवान में यकसां सिविल कोड आसाम बिल 2026 पेश किया। इस तरह यह बिल पेश करने वाली शुमाल मशरक में आसाम पहली रियासत बन गई है, जबकि मुल्क में बीजेपी की सरकार वाली यह ऐसी तीसरी रियासत है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड यूसीसी के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज रहें। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि यूसीसी से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: अजीम इनकलाबी शख्सियत राज बिहारी बोस के यौम पैदाइश पर वजीर दाखिला अमित शाह ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि राज बिहारी बोस ने अपनी गैर मामूली तंजीमी सलाहियत के जरिए आजादी की जद्दोजहद में एक नई तवानाई पैदा की। मगरबी एशिया में इलाकई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब में मनासी के हज अदा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत समेत दुनियाभर से लाखों आजमीन हज मिना में जमा हो रहे हैं। आज़मीन हज ने मक्का मुकर्रमा से मीना जाने के लिए

अपने सफर का आगाज किया। वो रात मिना में गुजारेंगे और कल तलबिया का वर्द करते हुए फजर की नमाज के बाद मैदान अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां हज का रुकन आजम अदा किया जाएगा। इस साल भारत से तकरीबन 1,75,000 आजमीन फरीजा हज अदा करने के लिए वहां गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में दिन का टेम्परेचर 44 और 46 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने का इम्कान है। इधर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन के दौरान गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है। ऑस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट का बाजाब्ता आगाज भारतीय वक्त के मुताबिक आज रात 8:30 बजे होगा। अपनी 13 साल की तारीख में पहली मरतबा ये सरकर्दा टूर्नामेंट स्टेवेंजर्स के बजाय शहर ऑस्लो में हो रहा है। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दी जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में मरकजी सरकार, इम्तिहान के इनेकास से मुतालिक कौमी एजेंसी और सीबीआई से जवाब तलब किए हैं और कहा है कि कई हिदायत के बावजूद अब तक सबक हासिल नहीं किया गया। आसाम असेंबली में यकसां सिविल कोड बिल पेश किया गया है। मौसमियात के महकमे ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भी गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की गई है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2026 आज शाम ओस्लो में शुरू हो रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: 2.7 degrees, Gwalior recorded 44.1 degree and Jabalpur saw 43.3 degrees. The weather department says the heat is only going to get worse between May 25th and 28th and there is no sign of any relief till 31st May. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the Super Tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
4: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब

0: लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा।

0: पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले दो सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल की वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव

मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, कार्यक्रम उन्नत किसान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से आपके काम की चीज, काम की बातें लेकर उपस्थित हूं। मैं आपके साथ आरती
1: और मैं हूं रजनीश।
0: जी हाँ, उन्नत किसान कार्यक्रम हमारे किसानों की उन्नति और साथ ही बहुत सी ऐसी चीजें जुड़ी हुई जो उनकी खेती में उनको एक कदम आगे बढ़ाती है, ऐसी ही बातें आज हम लेकर आए हैं। और आज जो विषय है बहुत ही सदुपयोगी, महत्वपूर्ण विषय हमेशा की तरह। जी हाँ, हमेशा ही हम कुछ ऐसा विषय लाते हैं जो आपके लिए बड़े काम का निकलता है। तो आज भी है, जल संरक्षण के लिए क्या क्या आप तैयारियां कर सकते हैं, किस तरह से कौन कौन सी विधियां हमारे किसान खास तौर पर अपना सकते हैं। भाई, सुनने में रजीश देखो बहुत साधारण लगता है जल संरक्षण, लेकिन जब इसको डीपली हम जाते हैं, इस पर रिसर्च करते हैं या इसके बारे में जानते हैं, तो पता चलता है कि ऐसी बहुत सी विधियां हैं जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर करते हैं तो हमारी खेती बहुत ही ज्यादा अच्छी हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा आरती। और देखिये, खास तौर से इन दिनों में जैसा कि आप अभी हम न्यूज में भी सुन रहे थे, नौतपा शुरू हो गया
0: जी,
1: और जब चारों तरफ गर्मी बरस रही है तो मुझे लगता है कि जल की एक एक बूंद की बहुत वैल्यू होती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन दिनों में तो हम सबको यह पता ही लग जाता है कि जल को संरक्षित करना कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है। जब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आज भी पानी के लिए बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि ना केवल हमारे किसान भाई बहनों को, हर व्यक्ति को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जल संरक्षण क्या है, इसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जो ये आज का विषय है बहुत ही हम सबके लिए बहुत ही जानकारी भरा हुआ है।
0: जी बिल्कुल। देखिए, और जहां तक की जानकारी की बात की तो जानकारी तो मिलेगी ही, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उन्नत किसान लाते हैं तो किसान मित्रों को इससे सहायता भी मिल जाए, क्योंकि उनकी जो खेती है भाई देखिए उस पर वो बहुत हद तक उस पर ही निर्भर है, तो वो खेती अच्छी होनी चाहिए और उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो मॉनसून का सीजन शुरू होने वाला है, हो रहा है, तो ऐसे में क्या क्या तैयारियां आप कर सकते हैं ताकि आपको जो आगे फसलें हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, भरपूर पानी आपको मिले। तो इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में डॉक्टर विपिन कुमार जी को, जो वैज्ञानिक है संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद मैडम, और सभी किसानों को नमस्कार।
0: जी साथियों, और ये फोन इन कार्यक्रम है क्योंकि हमें पता है आपके मन में बहुत जिज्ञासा रहती है, बहुत प्रश्न उठते हैं कि जो हम विषय लाए हैं उसमें अगर कुछ आपको जानना है तो आप कैसे जानेंगे। फोन करें हमें, हमारा फोन नंबर है 011 दिल्ली का स्टडी कोड, इसके बाद अपना नंबर डायल कर सकते हैं 2342।

0: 1081 एक और फोन नंबर है साथियों 2342-1083। तो डॉक्टर विपिन जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि देखिए जल संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पे लगता है कि हमें पानी को बचाना है, किसी तरह से उसको संरक्षित करना है ताकि हम उसका उपयोग आगे कर सकें, लेकिन इनको अगर हम सीधे किसान से, खेती से जोड़ते हैं तो इसको किस तरह से, इस शब्द को इससे जोड़कर हम समझ सकते हैं?
1: मैडम, जैसे जल संरक्षण, जल जो जल है, पानी है, उसको संरक्षित करना, उसको संरक्षण अपने, अगर किसान की बात करें, किसान अपने फील्ड पे करेगा तो जैसे अभी देखेंगे कि मानसून का सीजन आने वाला है, ठीक है, तो अब हमारे पास जो हमारे खेत के नीचे पानी है, भूगर्भ में है, उसकी तो हम अभी बात नहीं करेंगे। बात यह है कि जो पानी हमारे फील्ड पे गिरने वाला है उसकी हमको तैयारी करनी है कि वो पानी हमारे खेत से बह के ना जाए। तो हमें उस पानी के गति को रोकना और उसको एक किसी जगह पर इकट्ठा करना, उसके लिए क्या कर सकता है किसान, या तो उसके पास खेत के आसपास उसके पास पौंड है, या पौंड वो उसकी खेत की स्थिति ऐसी है कि कुछ पोर्शन अगर उसका ढलान है तो उस ढलान वाले एरिया को वो पौंड को पौंड के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से हम सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि जो जल संरक्षण है वो है कि जो वर्षा का पानी है

0: पार्ट है
1: जी।
0: ठीक है, और इसी जगह जल संरक्षण करेंगे तो कहते हैं ना कि जो पानी ईश्वर देने वाला है, गॉड देने वाला है इस वर्षा के रूप में, उसकी वो पूरी अच्छी तरह से अपने खेती में उसका उपयोग कर पाएंगे लंबे समय तक।
1: डॉक्टर साहब एक बात और कि आपने बताया कि जल संरक्षण कैसे होता है, लेकिन आज के दौर में इसका क्यों महत्व है? जैसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, तो इसका क्या महत्व और क्यों करना चाहिए?
0: देखिए, जैसे इस बार ऐसे ऑलरेडी कहा जा रहा है कि जो पानी, जो वर्षा है इस बार कम होनी है, नॉर्मल से कम होगा, क्योंकि एल नीनो जो है इस बार इफेक्ट दिखाएगा। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि जब आपको लग रहा है कि हमारी वर्षा जो है वो
1: जी
0: एक नॉर्मल से कम होने वाली है, दूसरी अगर मान लीजिए कभी ऐसा तो है नहीं कि रोजाना बारिश होती है, किसी भी स्थिति में ऐसी भी होती है जब बारिश नहीं होगी, लेकिन जो फसल है एक बार जैसे आपने लगा दिया तो उसको थ्रू आउट पूरे जीवन चक्र तक उसको पानी की कईयों स्टेजों पर उसकी आवश्यकता होती है। खेती की अगर हम बात करें तो आप यहाँ खेती को पॉइंट में रखते हुए बात कर रहे हैं, तो हम अगर पानी की उपलब्धता उसके सही स्टेज पर नहीं करवा पाएंगे तो हमारी जो भी खेती में लागत है, हमारा प्रयास है, ईंधन है, चाहे जो भी एनर्जी हम एफर्ट दे रहे हैं, वो फ्लॉप हो जाती है।
1: जी
0: ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसी परिस्थिति में बहुत ही सटीक विधि आपको अपनाना है, फसल भी इवन जिन क्षेत्रों में पानी की पहले से आपको आशंका है कि पानी की अगर कमी है तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रॉप ले सकते हैं, आपको उसी तरह से क्रॉप का भी चुनाव करना होता है। इसलिए इस दिशा को अगर देखा जाए, इस बिंदु को देखें तो जल संरक्षण का जो ज्ञान है किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, और इसको किसानों को सोचते हुए ही खेती करना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है कि अभी हम बात करें कुछ क्षेत्र जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ भाग जहां पर धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, मैंने देखा है लोग धान की फसल तो लगा देते हैं बहुत अर्ली रुपाई कर देते हैं, लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो मैंने देखा है लोगों को खेत की जुताई करते हुए भी देखा है
1: जी।
0: रुपाई करवा दिया, सोचिए उसमें फर्टिलाइजर डाल दिया, लेकिन उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं रह पाती कि हम पानी चला के उस फसल को और आगे तक बढ़ा पाए। तो लोग छोटे ही फसल स्टेज पे क्या करते हैं, या तो चारा के लिए लोग खेत को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे कि किसानों को हानि हो, और दूसरी यह है कि अगर आप इस तरह से अपनाएंगे, चीजों को समझ के काम करेंगे, तो आपका फसल का जो उत्पादन है वो प्रभावित नहीं होने वाला है। इसलिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो हमारी इंडिया की एग्रेरियन इकोनॉमी है, जैसे ये डिस्टर्ब होता है किसान के लेवल पे, गांव के लेवल पे, तो हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका बहुत महत्व है
1: जी।
2: जी जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से महत्व बहुत है इस चीज का। अब हमारे किसान मित्र ये भी सोच रहे होंगे कि हम चाहते तो हैं बचाना, कि किस तरह से हम जल को संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन ऐसे क्या कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं कि जिससे वो इसको संरक्षित करे, कौन कौन से तरीके जो किसान सरलता से अपना सकते हैं, इनके बारे में विस्तार से बताया।
0: देखिए क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है
1: जी,
0: मैं इस चीज को नहीं मानता। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर पॉइंट्स किसान ध्यान दे तो मैं मानता हूं कि जल की उपलब्धता जो उसके खेत पे है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे मैं ये किसान के इंडिविजुअल लेवल से ही स्टार्ट करूं तो आज का टाइम खेत खाली है
1: जी।
0: ज्यादा से ज्यादा जो अभी का आपने अपना नौतपा का नाम लिया, नौतपा ऐसा नहीं है कि वो केवल हमेशा हमारे लिए एक हानिकारक ही है, ये 9 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होते हैं, और इस तरह की इंटेंसिटी हमें जो हीट की है, जो ताप की है, आवश्यक होती है हमारे क्षेत्र के लिए, अगर नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: जिसको हम सीधी सी बात करें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ जोन जिसको हम बोलते हैं, फार्म होता है इस बेल्ट में जो हमारे नॉर्थ इंडिया का, इससे क्या होता है कि जो प्रेशर है यहां डाउन करता है नेचर, इसी टेम्परेचर को बढ़ा के, जिससे क्या होता है हवाओं का रुख समुद्र से उठकर हमारी तरफ आना स्टार्ट होता है
1: जी।
0: तो ये हमारे लिए जो नौतपा है ना, ये खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब मान लीजिए जिन किसानों का खेत की जुताई इस टाइम पे हुई होगी, तो जो ये नौतपा है 9 दिन ना, उस खेत को तपा देता है, और जो भी हानिकारक कीड़े मकोड़े हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है
1: जी।
0: एक फायदा यह हुआ। और इसी स्थिति में पहले हम लोग कहते थे ना कि जो समर है उसमें एक गहरी जुताई आवश्यक है, क्यों? क्योंकि जो पानी आएगा

0: बड़ी मतलब बारिश होगी, उस पानी को अच्छे से सोखने की जो है फील्ड के पास कैपेसिटी होनी चाहिए। और जुता हुआ खेत याद रखिएगा वो बहुत तेज सोखता है, तो गहरी जुताई बहुत आवश्यक है। तो किसानों को मैं तो कहूंगा कि अगर किसान कर सकते हैं, जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत आती है, तो उनको एक गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए अपने खेत लेवल पर।
1: डॉक्टर साहब कब कर ले वो कि उनको इसका फायदा बहुत अच्छा हो जाएगा?
0: जैसे आप अप्रैल में खेती का कटाई कर लेते हैं, अप्रैल में खेती कटाई करने के बाद उसी टाइम पर आप गहरी जुताई कर लीजिए, कर छोड़ दीजिए फील्ड को।
1: ठीक है
0: मई जून तक एकदम वो अपना खेत रहेगा खुला हुआ, और उसकी एक तरह सोलराइजेशन भी हो जाएगी, जो मैंने बात किया कीड़े मकोड़ों से भी निवारण हो जाएगा। और जैसे ही मानसून आएगा तो पानी उसी जो गिरेगा उस पे, वो सोखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो जो खेत ज्यादा सोखेगा उसमें मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, पहला ये हो। अब देखिए उसके अलावा आपका खेत खुद एक तरह से माइक्रो कैचमेंट, एक माइक्रो पॉन्ड का काम कर सकता है। जब हम खरीफ में फसलें लेने जा रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि खरीफ में हमारे पास हमारे खेत पर पानी बारिश होगी, क्योंकि ये रेनी सीजन वाला पीरियड होता है। तो हम कोशिश करें अपने मेड़ों की मेड़बंदी जरूर करें, जो रबी में मेड़ हैं वो मेड़ नहीं काम आने वाले हमारे खरीफ की फसल के लिए। तो हम क्या करें, सुनिश्चित करें 20 से 25 सेंटीमीटर हाइट का मेड़ जरूर कर दें। और गेहूं जैसे अभी कटी होगी तो इस दशा में देखेंगे कि आपको जो रैट्स होते हैं, मोल्स होते हैं, खेतों में खूब होल बनाए रहते हैं, ठीक है, एक खेत से दूसरे खेत में मिला देते हैं, ठीक है। तो हमको उनको बंद करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे क्या है कि जो बारिश हो, जो हमारे खेत में पहले पानी अगर आती है, अगर इस दशा में ना पहुंच जाए कि बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन इस दशा में रहे कि पानी हमारे खेत में रोकने भर की रहे, तो आप कोशिश कीजिए अपने पहला काम तो यही कर लीजिए। दूसरा इसके अलावा भी है, जैसे अगर आप देख रहे हैं आपके पास क्षेत्रफल ज्यादा है, आपके पास किसी एरिया में लगता है कि पानी का रुकाव ज्यादा होता है, उस क्षेत्र का चुनाव कीजिए, गहरा एक पॉन्ड बनवा दीजिए, जिससे क्या हो पानी आपका वहां पर इकट्ठा हो जाए, ठीक है। और अगर कोई पुरानी बोरवेल आपके पास है जो नॉन फंक्शनल है, ठीक है, उस बोरवेल को भी आप हार्वेस्टिंग के लिए आप ले सकते हैं।
1: तरीकों पे हम और बात करेंगे, कॉलर्स के कॉल आना शुरू हो गए, वो जानना चाहते हैं कुछ, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। फिलहाल ये जो कॉल थी ये क्योंकि काफी देर से आ रही थी, लेकिन एक और कॉलर जुड़े उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार सर।
2: जी आदा, मैं बोल रहा हूँ कश्मीर से।
1: जी जी, अपना प्रश्न बताइए।
2: जी डॉक्टर साहब से मेरा ये प्रश्न है कि हमने जो है धान के बीज बोए हैं, अभी 40 दिन के बाद हम उसको निकाल के खेतों में लगाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे पास जो है ना दो तरह का पानी उपलब्ध है, एक है पहाड़ों का ठंडा पानी, बर्फ का पानी, और दूसरा है नदियों का पानी जिसका टेम्परेचर ठीक रहता है, गर्म रहता है। और हमारे खेत जो है ना अभी धूप की वजह से उनका खेतों का जो खेत की जो मिट्टी है ना उसका टेम्परेचर भी अभी ठीक है, गर्म है। तो ऐसे में हम कौन सा पानी खेतों में भरे, पहाड़ों का बर्फ का ठंडा पानी या नदियों का जो दरिया का रुका हुआ पानी जिसका टेम्परेचर ठीक ठाक गर्म रहता है, कौन सा पानी अच्छा रहेगा?
0: देखिए जैसे आप ट्रांसप्लांटिंग जब करने जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर उस अवस्था में बहुत ज्यादा ठंडा पानी देंगे, ठीक है, तो वो उतना फसल के लिए उपयोगी नहीं होगा। क्योंकि देखिए क्या क्या होता है कि आपने नर्सरी से पेड़ को अभी उखाड़ेंगे, ठीक है, 35 से जो भी बोल रहे हैं 20 से 25 दिन की हो गई होगी आपकी सीडलिंग, 25 दिन पर अमूमन रिकमेंड करते हैं। तो उस अवस्था में क्या है, जड़ जाके 2 से 3 दिन में लगता है फिर से दूसरी जो फील्ड जहां पर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें स्थापित होने में। तो मेरा मानना है कि उस अवस्था में कोशिश करें नॉर्मल जो पानी दें वो ज्यादा सदुपयोगी होगा, क्योंकि ठंडा पानी में उसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है चेंज रहती है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि विस्कोसिटी जब बढ़ जाती है, फिजिक्स की बात हो जाती है, तो उसमें पौधा उतनी अच्छी तरीके से वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप कम से कम ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे जो आप पौधे का रोपण करने जा रहे हैं उस पे आप नॉर्मल पानी अगर आपके पास उपस्थित है तो आप उसका ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी का इस्तेमाल वो शायद उतने अच्छे से नहीं करेगा, हो सकता है कि आपका फसल प्रभावित हो जाए।
1: जी जी डॉक्टर साहब, इससे सर कॉल से पहले हम बात करते हैं तरीके जो है उसके बारे में आप विस्तार से बता रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं।
0: हाँ तो जी जैसे हम बात कर रहे थे कि अब जैसे जो नॉन फंक्शनल बोरवेल है अगर, तो उन बोरवेल को भी देखा मैंने, किसान लोग

0: सोचते हैं यार ये तो पानी से निकलता नहीं है और इसको ऐसे ही खेतों में देखा हूं मैंने, मतलब पड़े रहते हैं लेकिन हाँ छोड़ देते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि वो बहुत अच्छा एक जो स्रोत है पानी को हार्वेस्ट करने का भी। अब उसके आसपास आप छोटा सा एक हल्का कुआं 15-20 फीट का करवा दीजिए जहां पर पानी जाकर इकट्ठा हो जाए, और कुछ पेबल्स जैसे पत्थर के मोटे सैंड्स उसमें भर दें, जिससे क्या होता है कि पानी पूरा जो गंदा है नहीं जाएगा उसमें बोरवेल में, थोड़ा छन के जाएगा। लेकिन जाएगा तो वो डायरेक्टली आपके जो भू क्षेत्र है ना जो आसपास है उसको वो रिचार्ज करता है। और मैं कहता हूं कि जैसे अगर आपने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना है आपके पास तो जो दूसरी बोरवेल भी करें तो उसके आसपास ही करें, जिससे क्या होगा एक से आपका रिचार्ज होगा और दूसरे से आप वहां से निकाल भी पाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। और इसके अलावा ये भी है कि जो हमारे गांव में आज पॉन्ड्स पहले से भी कल्चर रहा है हमारे, ऐसा नहीं देखेंगे कि हमारी जो पहले से पॉन्ड्स नहीं थे, गांव में हर पॉन्ड हुआ करते थे, खेत आसपास कुएं हुआ करते थे, अब वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, बहुत सी जगहों पे देखेंगे कि अब वो काम नहीं करते हैं। तो मैं किसान भाइयों से ये भी कहूंगा कि जो लोग के पास ऐसी कहीं स्ट्रक्चर है तो उसको कोशिश करें कि जब बरसात का सीजन आता है तो उसमें खूब लबालब पानी भर जाए, ठीक है, और उस पानी को वो लोग क्या कहें खेती में उपयोग कर सकते हैं।
1: जी।
0: तो ये सब कुछ तकनीकियां जो खेती लेवल पर खेत लेवल पर ही करके और किसान बहुत अच्छे तरीके से अपनी जल की उपलब्धता लंबे समयों तक बढ़ा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जब हम किसानों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में आता है कि हाँ एक देहात जहन में आता है, गांव आता है जहन में कि हाँ वहाँ पे किसान है और ये कार्य जो हमने बताया जल संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में भी काफी स्तर पर किसान देखने को मिलते हैं या फिर हम कहें कि आम इंसान भी करना चाहे तो गांव के स्तर पर और शहर के स्तर पर इन दोनों ही जगह पे किस तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है, इनमें क्या अंतर आता है या क्या चुनौतियां आती है?
0: देखिए गांव के स्तर पर देखेंगे तो कंक्रीट के पहाड़ कम दिखेंगे, जैसे आप शहरों में आएंगे तो बिल्डिंगें ज्यादा दिखेंगे, रोड ज्यादा दिखेंगे, ठीक। तो जैसे क्या होता है कि जो शहरी क्षेत्र है जैसे हम दिल्ली की बात कर लें, अगर हम यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पर देखती होंगी जब बारिश होता है तो उस अवस्था में रोड पे पानी लग जाता है क्योंकि पानी जमीन में नहीं जाता
1: जी,
0: ठीक है, तो जाने का उसके पास है ऑप्शन है नहीं, तो ऐसे अवस्था में क्या होता है रोड पे लगता है। तो हमें क्या करना है कि पहली बात तो आपको अगर इंडिविजुअली देखें तो रूफ टॉप जो रेन हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा एक इस पे बहुत सी गवर्नमेंट एफर्ट भी कर रही है कि हर किसी को जैसे ऐसे जो एरिया है वहां पर रूफ टॉप हार्वेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रावधान किया जाए, जिससे क्या आगे जो उस रूफ पे पानी जो उनके आसपास इर्द गिर्द गिर रहा है वो पानी जमीन में ना जाके सीधा वो कलेक्ट हो जाएगा और वो एटलीस्ट पानी पीने के लिए ना मान लीजिए ना यूज करें लेकिन वो चाहेंगे तो अपना किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, अपने पौधों की सिंचाइयां कर सकते हैं जो वैसे करते हैं। और ये भी माना गया है कि अगर आप इसको सही तरीके से जो कहा जाता है कि पहली अगर बारिश हो तो उस पानी को फ्लश कर दिया, उसके बाद फर्श अगर आपका फ्लोर मतलब छत बहुत साफ सुथरा है, अगर वो पानी आप इकट्ठा करके रखते हैं हार्वेस्ट करते हैं तो वो पानी की शुद्धता बहुत ज्यादा होती है, आप बॉयल करके और पिए तो बहुत ही पीने के में भी उपयोग लाया जा सकता है। तो शहरी क्षेत्रों में ये देखा जाए कि यहाँ पर जो रनऑफ बोलते हैं रनऑफ बारिश होने के बाद पानी का बहाव ज्यादा मिलेगा तो ऐसी दशा में उन रनऑफ को हमें क्या करना है डाइवर्ट करना है अपने आसपास के जो पॉन्ड्स हैं अगर कहीं पर हैं नदियां जो उनके क्या कह सकते हैं कि जैसे यमुना है, यमुना में पानी लाने के लिए डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम है मान लीजिए, अब उन ड्रेनेज सिस्टम को अगर साफ नहीं रहेगा तो डायरेक्टली वो आएगा नहीं, इसीलिए क्या होता है कि वो पूरी पॉन्डिंग होती है शहरों में। तो हमें क्या करना है कि अगर अपने खुद के इंडिविजुअल लेवल पर एक कम्युनिटी लेवल पर एक कॉलोनी लेवल पर करना है तो हमें वहां पर एक छोटे मोटे रिक्रिएशनल पर्पज से पॉन्ड बनवा लेना चाहिए, ठीक है, जिसमें उनको पानी को हम वहां पर इकट्ठा करके इस तरह से पार्कों में या उपयोग कर सकते हैं और इस तरह से पानी वो आपका वहां पर उपयोग होगा, जिससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं उस शहरी क्षेत्र के उसमें कमी करने में उसका सहयोग मिलेगा। और दूसरा ये भी है कि अगर आप नहीं भी इकट्ठा हो पा रहा है तो आप कोशिश करें कि जो आपके यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम है वो सही होना चाहिए, जिससे क्या है कि आपके वहां पानी का जल भरा होना हो
1: जी,
0: ठीक है ना
1: जी,
0: और नहीं तो अपने खुद के लेवल पर टैंक

0: जैसे प्लास्टिक के 1,000, 2,000, 4,000 लीटर के टैंक आप रखकर अपने खुद के रूप के जो पानी है उनको आप इकट्ठा करके उस टैंक में कर लें, और अपने जिस तरह से चाहे गाड़ी साफ करने के लिए, चाहे पार्क को करने के लिए, जो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे मोटे जो तरीके हैं शहरी क्षेत्रों में किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने शहरी में तो तरीके बता दिए, लेकिन जब कृषि के स्तर पर हम पानी का किफायती इस्तेमाल कैसे करें, कि जैसे मान लो कि सिंचाई के अंदर हम क्या क्या ऐसा प्रबंधन करें जिससे कि हमारा जो जल संरक्षित भी रहे और समय आने पर काम भी आता रहे।
0: और ये देखिए, जब जल संरक्षण की हम बात करते हैं तो हम हमेशा याद रखिए विधि का भी बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसान ने बड़ा एफर्ट किया बचाने, मतलब हमको इकट्ठा करने में, लेकिन जब उपयोग उसको बेपरवाह की तरह करेगा तो वो तो उसका एफर्ट बर्बाद हो गया ना। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जब किसान इतना एफर्ट करे इकट्ठा करने के लिए, उसको रोकने के लिए, तो अब उसकी उससे कईयों ज्यादा जिम्मेदारी बनती है उसके उपयोग करने के लिए। तो अब वो क्या है, विधि का बहुत बड़ा चुनाव है। अब जैसे मान लीजिए जो बहुत ही चुनौती वाले क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बहुत सच में कीमत बहुत ज्यादा होती है और आपने इकट्ठा कर लिया है, जैसे राजस्थान है आपका, मान के चलिए हरियाणा के क्षेत्र हैं, पंजाब में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि वहां के लिए बहुत अच्छी से प्रणाली आज के टाइम पे हो, टपक सिंचाई है और दूसरा फव्वारा सिस्टम है, इसी को अडॉप्ट कीजिए। इनकी दक्षता ये पाई गई है कि 50 से लेकर 90% तक कुछ फसलों में जल की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। और वही मैंने देखा है कि बहुत किसान जो है एफर्ट करते हैं पानी को खेतों में रोकने के लिए, लेकिन फिर जब सिंचाई देने के जाते हैं तो वो वही फ्लड सिस्टम, वही खेतों में सीधा बहाव वाला। तो मैं किसानों को बोलूंगा कि इस तरह का आप जितना एफर्ट दे रहे हैं पानी को इकट्ठा करने में, रोकने में, उतना ही एफर्ट दीजिए उसके उपयोग करने में। इसके लिए ऑलरेडी सरकार इस पे सब्सिडी देती है इन तरह के स्कीमों पर, मतलब विधियों पर, जिसको आप सस्ते से सस्ता अपने डिफरेंट जो विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग राज्य इस पे कई तरह की अपने अपने लेवल पर, अपनी समस्याओं के लेवल पर सब्सिडी भी अच्छी खासी देती हैं। तो किसानों को विधियों पर भी बहुत सोचने की जरूरत है।
2: जी जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब बहुत सही जानकारी आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। किसान मित्र को इससे जरूर लाभ हो रहा होगा, होगा मतलब वो सुनकर तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्या क्या स्टेप्स है जो वो ले सकते हैं। फिलहाल कार्यक्रम उन्नत किसान में,
1: उन्नत किसान में गर्मी हो रही है, बात हो रही है, तो ऐसे में कोई अच्छा सा गीत जिसमें पानी की बात हो या इस तरह की हो, जो ठंडक पहुंचाए, बिल्कुल ऐसा कुछ होना चाहिए।
2: जो बातें हम कर रहे हैं ना वो ही बातें इस गाने में भी है, ताकि और ज्यादा इम्प्रेशन और ज्यादा लोगों की समझ तक पहुंचे ये चीज।

0: जी बिल्कुल, क्या खूब कही इन गायक ने ये बात। इंद्रवीत तेवतिया की आवाज में आपने ये लोकगीत सुना है और बिल्कुल सही कहा कि किसानी हो, खेती हो, आम जीवन हो, पानी के बिना कहाँ किसका गुजारा होने वाला है। पानी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और इन दिनों में तो खास तौर से हम सबको पता लग जाता है कि पानी कितना अमूल्य है हम सबके लिए।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे तरीके रहे हैं पारंपरिक तौर पर, जो भू संरक्षण की बात कहें या जल संरक्षण की हम बात करते हैं, तो जल संरक्षण के लिए काफी तरीके अपनाए गए हैं। आज के समय में अगर देखें, क्योंकि समय बदल गया है, तकनीकें बदल गई हैं, तो क्या वो तरीके अभी भी कारगर हैं और अपनाए जा रहे हैं क्या जल संरक्षण के लिए?
2: देखिए, जो पुराने तरीके थे हमारे, जो पूर्वजों ने बनाए थे हर गांव में, जैसे हमने बात की थी कि हर गांव में एक पौंड हुआ करता था, जोरट जोहार हुआ करता था राजस्थान जैसे, तो देखेंगे कि आप पहले जो मंदिर हुआ करता था उसके बगलों में एक कंसेप्ट रहा करता था कि एक पौंड होना ही जरूरी है। ऐसा क्यों किया गया? सभी चीजों का एक कारण यही था कि इसका महत्व तब भी था, बीच में हमने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, आज उनका फिर से कहते हैं जीवन दिया जा रहा है। जहां पर जो ऐसे स्ट्रक्चर उपलब्ध हैं उनको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। तो ये कहना कि क्या उनका महत्व नहीं है, तो ये एकदम हमारा गलत होगा कहना। हमें कतई उस तरह के कंसेप्ट को ही लेकर आगे उसमें क्या परिवर्तन करके, जो हमारी प्रेजेंट टाइम में भौगोलिक स्थिति है, जनसंख्या है, उस पर हमको अपनी प्लानिंग करनी होगी। तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उनका हमें सहयोग जरूर लेना है और उन स्ट्रक्चर को ही इम्प्रूव करके, और जो हमारी नई पद्धतियां, हमने थोड़ा कुछ बातें किया जैसे कुछ स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके, ठीक है, उनको हम और आगे बढ़ा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं कि पुराने तालाबों की, बावड़ियों की, जोहड़ों की, तो इनको संरक्षित करने के लिए या इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार की तरफ से भी कुछ किया जा रहा है या इस तरह के प्रोत्साहन राशि दी जाती है?
2: एकदम, जैसे आप देखेंगे कि एक अमृत सरोवर परियोजना गवर्नमेंट की आई थी, उसमें इसका कंसेप्ट यही था कि जो हमारी गाँव के जो क्षेत्रों के जो पॉन्ड्स हैं, नॉन फंक्शनल हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाए। करीबन 50,000 सरकार का था टारगेट कि इस स्कीम के तहत हम लोग क्या करेंगे कि या तो पुनर्जीवित करेंगे या तो नए पॉन्ड हम बनाएंगे, और इसमें सरकार की एक उपलब्धता थी, उससे ज्यादा जितना टारगेट किया था उससे ज्यादा तालाबों का इन लोगों ने, जो ऐसे स्ट्रक्चर थे जो पुराने थे, उनको पुनर्जीवित किया गया और नए पॉन्ड बनाए भी गए। हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो ऐसे एक स्कीम के तहत आपको हम कह सकते हैं हमारे पूसा में आएंगे तो पूसा अमृत जल सरोवर पर एक आपको वहां पर दिखेगा, इसी स्कीम के तहत बनाया गया, एक हेक्टेयर एरिया में पॉन्ड है।
0: अच्छा।
2: हाँ, और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और बरसात के समय में इतना बढ़िया पानी भर जाता है, ठीक है, और उसकी एक कैपेसिटी है कि कम से कम वो आसपास के जो भी राइस बेल्ट है उसको सिंचाई कर देता है। तो इस तरह से सरकार भी इस पे प्रोत्साहन दे रही है।
0: जी जी, सरकार प्रोत्साहन दे रही है और जरूरी कितना है ये तो हम सभी जान गए हैं कि जल संरक्षण पहले से ही जानते हैं कि हम जरूरी, लेकिन खेती के लिए कितनी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है ये चीज, ये आज और समझ में आ गया है। तो ऐसी और ढेर सारी बातें लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कार्यक्रम उन्नत किसान के माध्यम से। आज का कार्यक्रम जो अभी तक आप सुन रहे थे, जिसमें हमने आमंत्रित किया था डॉक्टर विपिन कुमार जी को, जो वैज्ञानिक है संरक्षित कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो साथियों, आज के कार्यक्रम उन्नत किसान से मैं आरती,
1: और मुझे रजनीश को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें पूछा गया है कि पिछले साल एजेंसी के कामकाज में सुधार के लिए पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों का कितना पालन किया गया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 3:10 लीजिए 3:11 हुए हैं। मन भवन लेकर देविका हाजिर है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और हिंदी सिने जगत की एक महत्वपूर्ण जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसा कोई नहीं है जिन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने ना पसंद हो और आज मन भवन में हम याद करेंगे इसी जोड़ी के गीतों को क्योंकि आज लक्ष्मीकांत जी की पुण्यतिथि है। तो आपसे यही गुजारिश है अगर आप मेल कर रहे हैं तो ऐसे गीत मेल कीजिए, ऐसे गीतों की फरमाइश मेल कीजिए जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीत हों। और मेल आईडी आपको बता दें fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। पहला गीत ये

3:29 और 8 सेकेंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, मन भावन। और जैसा मैंने बताया था कि मन भावन में आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लक्ष्मीकांत जी की बात, और क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है तो आपने बहुत सारी मेल्स हम तक पहुंचाई हैं। मेल आईडी है हमारी fmgoldaiadelhi@gmail.com। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर देविका है आपके साथ। और पहली जो फरमाइश हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुलकर रतनमाला सुलकर कुमकुम कुमारी ने, और ये गीत सुनना चाहते हैं फिल्म पारस मनी का। ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जी हाँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। और ये कहते हैं कि इस गीत की फरमाइश की है इन्होंने, फिल्म इम्तिहान का ये सबसे बेहतरीन गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: बहुत सारे श्रोता हैं जिनने बहुत सारी फरमाइश हम तक भेजी है, लेकिन कुछ श्रोता हैं जिनके नाम हम लेना चाहेंगे। गुरनाम शिरटे जिला सांगली से हनुमत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे, हरजिंदर सिंह भाटिया जुड़े हुए हैं, जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, इंशान छिपा, पूजा परिहार, TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप है, कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज, आज बिट्टा बजाज है। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है वाड़ी खाम गांव से अंतावाड़े रामदेव वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाड़े परिवार। और इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है, फिल्म है बॉबी।

मैं शायर तो नहीं, शैलेंद्र सिंह की आवाज में गीत आपने सुना। और अगली फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है आपने मोटला बाजार से, बबलू ठेकेदार अपना नाम लिखा है और कहते हैं कि फिल्म में दोस्ती का एक गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जो बहुत ही खूबसूरती से गाया गया था। जी हाँ बिल्कुल, और आपकी पसंद का गीत ये रहा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: 3:54 और ठीक 44 सेकेंड, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मन भावन और देविका आपके साथ, और आखिरी फरमाइश जो हम पूरी करने जा रहे हैं वो हमें भेजी है, जी हाँ, भोपालगढ़ राजस्थान से छिपा परिहार और पूजा परिहार ईशान है, और ये इस गीत की फरमाइश करते हैं फिल्म क्रांति का सबसे बेहतरीन गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह किसी ज्यादा मजबूत और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका में भविष्य की परीक्षाओं की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय निगरानी समिति बनाने की भी मांग की गई है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिक विषय की लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हिरासत में भेज दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील राष्ट्रहित में है। हरियाणा के जिंद जिले में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ईंधन बचाने के लिए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या भी कम कर दी है। बढ़ती बिजली की मांग पर श्री मनोहर लाल ने कहा कि 21 मई को देश में बिजली की अधिकतम मांग 271 गीगावाट दर्ज की गई, जिसकी आपूर्ति

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 4:11 ठीक 1 सेकेंड। जी हाँ, देविका हाजिर है और गीत का आगाज मैं करने जा रही हूँ। फिल्म है दिल तेरा आशिक।

0: नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। आइए जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। रामपुर रजा लाइब्रेरी द्वारा सेवा अनुबंध के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्णता भरे हुए आवेदन पत्र सभी संबंधित स्व प्रमाणित अभिलेखों सहित निदेशक रामपुर रजा लाइब्रेरी हामिद मंजिल खिला रामपुर उत्तर प्रदेश के नाम पर संबोधित करते हुए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। पूर्ण आवेदन पत्र A4 आकार के लिफाफे में भेजा जाए, जिसके ऊपर स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि किस पद हेतु आवेदन पात्र है। पद का नाम सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमता, डेटा साइंस में स्नातक डिग्री तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में IT क्षेत्र में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्यानुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। लेखा सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य अकाउंट में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में लेखा के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। प्रशासनिक सलाहकार, पदों की संख्या 1, मानदेय 55,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री तथा राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में प्रशासन के क्षेत्र में 7 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 4, पद का नाम शोध सहायक हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 45,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में PhD उपाधि तथा शोध, अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 5, पद का नाम शोध सहायक संस्कृत, पदों की संख्या 2, मानदेय 45,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत में PhD उपाधि तथा शोध, अनुवाद अथवा पांडुलिपि अध्ययन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 6, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर हिंदी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 9000 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। क्रम संख्या 7, पद का नाम टाइपिस्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर अंग्रेजी, पदों की संख्या 1, मानदेय 30,000, अनिवार्य योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री, कंप्यूटर अनुप्रयोग में 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, राज्य, केंद्र सरकार, निकायों, अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी संस्थान में संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट प्रत्येक शब्द के लिए औसत 5 कुंजी दबाव पर 10,500 KDPH के तुल्य। नियुक्ति का प्रकार सीधी संविदा, अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में बजे हैं शाम के 4:30, यानी वक्त है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। दोस्तों, आधा घंटे की इस मुलाकात में होंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर तो रहती है हमारी बराबर नजर, और फिर हम याद करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या जयंती। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपके साथ मुनीष शर्मा और मेरे साथ है अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
2: नमस्कार मुनीष, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। नो रिस्पाइट फ्रॉम सोरिंग टेम्परेचर्स, हीट वेव फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज स्टिल। हीट वेव कंडीशंस इन सेंट्रल इंडिया डज नॉट सीम टू अबेट, इजंट इट मुनीष? Several places record day temperatures close to 45 degrees, and according to the IMD, the prevailing condition of extreme heat will continue till the end of month. Scorching heat causes severe health issues like dehydration, heat exhaustion, and life-threatening heat stroke. It worsens the chronic cardiovascular and respiratory diseases as well, triggers acute kidney injuries, and causes acute drops in air quality. Urban environments amplify these dangers by trapping heat at night. So I would request, take care friends, stay hydrated and limit your outdoor exposure. And also, very important to protect your diet, avoid high protein foods, alcohol and caffeine, as they can accelerate dehydration. Consume water rich fruits like watermelon, cucumber and citrus fruits. Of course, all these things would sound very cliche, but this is the need of the hour. And while staying indoors, stay tuned to Akashvani for some beautiful melodies along with updates on the news front. And so let's begin with news headlines at the moment. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से मांगा जवाब। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया।
2: Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill.
1: और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी।
2: And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. And now time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we will talk on different topics which is being observed today, like World Football Day, International Missing Children's Day and World Thyroid Day. Let's begin with World Football Day first.

0: खेल रहे होते हैं और वहीं दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में हजारों लोग एक विशाल स्टेडियम के भीतर एक साथ मिलकर गा रहे होते हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग जीवन, फिर भी गेंद नेट से टकराती है तो किसी न किसी तरह हर कोई उस एक ही भावना को समझ जाता है।
1: This is the power of football. Today, the world celebrates World Football Day, observed every year on the 25th of May by the United Nations. But have we ever stopped to think about why an entire day was dedicated to this sport? What makes football so special that it connects villages, cities, and entire nations? The answer goes far beyond the game itself. Football is often called the world's universal language, not because everyone speaks the same words, but because everyone understands the same feelings: hope, teamwork, resilience, heartbreak, and joy.
0: Aur shayad isliye Sanyukt Rashtra ne football ko mehaz ek manoranjan se kahin badhkar mana hai. संयुक्त राष्ट्र फुटबॉल को एक ऐसी ताकत के तौर पर देखता है जो पूरी दुनिया में शांति, समावेश, स्वास्थ्य, समानता और सहयोग को बढ़ावा देती है। है ना दिलचस्प? एक ऐसा खेल जिसे कई लोग सिर्फ मनोरंजन का साधन मानते हैं, वो समाज को घावों से उबरने में मदद कर रहा है, युवा लड़कियों को सशक्त बना रहा है, शिक्षा को बढ़ावा दे रहा है और यहां तक कि युद्ध के कारण विस्थापित हुए शरणार्थियों का भी सहयोग फुटबॉल कर रहा है।
1: And maybe that reminds us of something deeply human. Sometimes people do not need the same background to stand together. Sometimes all they need is a shared dream. World Football Day was officially proclaimed by the United Nations General Assembly in 2024. The date marks the 100th anniversary of the first international football tournament in history that included representation from all regions of the world, held during the 1924 Paris Olympics.
0: दोस्तों, 100 साल बाद ये खेल कुछ ऐसा बन गया है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। अरबों लोग इसे देखते हैं, लाखों इसको खेलते हैं, अनगिनत लोगों की जिंदगी इससे समर्थी है। लेकिन यहां एक सवाल है जो पूछने लायक है। दूसरे कई खेलों के मुकाबले फुटबॉल लोगों के साथ इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव क्यों बनाता है? शायद इसलिए क्योंकि फुटबॉल तक पहुंच बनाना आसान लगता है। इसके लिए आपको हमेशा महंगे सामान की जरूरत नहीं होती, आपको किसी शानदार स्टेडियम की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी बारिश के बाद की कोई तंग गली ही खेलने के लिए काफी होती है।
1: एंड समटाइम्स एन एम्प्टी स्कूल ग्राउंड बिकम्स अ वर्ल्ड कप फाइनल इन द माइंड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड India understands this emotion beautifully. For years, cricket has dominated conversations in our country, yet steadily football has been growing in the hearts of millions of Indians.
0: दोस्तों, फुटबॉल हमें ऐसे सबक भी सिखाता है जो चुपचाप जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। एक चूका हुआ गोल हमें मजबूती सिखाता है, एक पास हमें भरोसा सिखाता है और एक कप्तान हमें जिम्मेदारी समझाता है। एक टीम हमें एकता का संदेश देती है और शायद इसीलिए फुटबॉल हमें सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है, क्योंकि कई मायनों में फुटबॉल जिंदगी का ही तो आईना है।
1: Right, Monish. And let's move on to the next topic of the day, International Missing Children's Day.
0: जी हाँ अनुजा, देखिए दरअसल कुछ पल ऐसे होते हैं जो खामोशी से पूरी दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। इसलिए नहीं कि वो शोर मचाते हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने पीछे एक गहरा खालीपन छोड़ जाते हैं। एक माँ जो बार बार उस फोन पर कॉल करती है जिसकी घंटी अब कभी नहीं बजती। एक पिता जो आधी रात को पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा है इस उम्मीद में कि शायद किसी ने उसके बच्चे को देखा हो।
1: एंड समवेयर इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अनदर फैमिली इज लिविंग द सेम नाइटमेयर। Every year on 25th of May, the world observes International Missing Children's Day, a day that reminds us that behind every missing child poster is not a statistic, but a family waiting for life to feel normal again.
0: दोस्तों, जब कोई बच्चा लापता हो जाता है, तो कुछ लोगों के लिए शायद महज एक ऐसी खबर हो जो कुछ ही दिनों में पुरानी होकर भुला दी जाएगी। लेकिन दूसरों के लिए ये जिंदगी भर का एक ऐसा जख्म बन जाता है जिसे और भी ज्यादा तकलीफ दे बना देता है। इस संकट का विशाल दायरा दुनिया के अलग अलग देशों में समय के साथ लाखों बच्चों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आती हैं और कई क्षेत्रों में तो आज भी इन लापता बच्चों की सही तादाद का कोई सही आंकड़ा मौजूद नहीं है।
1: That is not merely a number. That is thousands of

0: Dinner tables with one empty chair. Thousands of birthdays celebrated with unanswered prayers.
1: हर सुबह हजारों माँ बाप इस उम्मीद के साथ जागते हैं कि शायद आज उन्हें आखिरकार कोई खबर मिलेगी, लेकिन जागरूकता जान बचाती है, समुदाय जान बचाते हैं, जो लोग ध्यान देते हैं वो जान बचाते हैं। कभी कभी कोई बच्चा इसलिए मिल जाता है क्योंकि किसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में उसके चेहरे को पहचान लिया।
0: That's true. Sometimes a shopkeeper notices a frightened child standing alone, and sometimes a teacher senses that something feels wrong and decides to act. It raises an important question. How often do we teach children about safety without frightening them?
1: बिल्कुल, एक साधारण सी बातचीत भी एक बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। एक माँ अपने बेटे को फोन नंबर याद करना सिखाती है, एक पिता अपनी बेटी को याद दिलाता है कि वो कभी भी अजनबियों के साथ ना जाए। माँ बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं कि अगर कोई बात उन्हें असहज महसूस कराती है तो वो बेझिझक उसके बारे में उनसे बात कर सकते हैं।
0: These may sound like small conversations, but in critical moments, small lessons become powerful protection. That is why organizations across the world continue working tirelessly to protect children and reunite families. International Missing Children's Day itself began after the disappearance of six-year-old Etan Pads in New York in 1979, a case that deeply moved society and changed conversations around child safety forever.
1: सालों बाद 25 मई याद, जागरूकता और कार्रवाई का एक वैश्विक प्रतीक बन गया है। और शायद असल में ये दिन इसी के बारे में है, डर के बारे में नहीं, निराशा के बारे में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के बारे में। ध्यान देने की जिम्मेदारी, सुनने की जिम्मेदारी, रक्षा करने की जिम्मेदारी, एक ऐसी दुनिया बनाने की जिम्मेदारी जहां बच्चे स्कूल जाते हुए, पार्क में खेलते हुए या फिर सूरज डूबने के बाद घर लौटते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करें।
0: So perhaps the next time we hear about a missing child, we may look at it differently, not as another passing headline, because for one family, time has stood still since that child disappeared, and somewhere in that silence, they are still waiting to hear your child has been found.
1: और दोस्तों, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का क्या कुछ है खास उनके पास।
0: And first we take you all to Agartala. In a proud moment from Tripura, Sehpaji Jalar district has emerged as the number one district in the entire country in the National Panchayat Awards 2025, announced by the Ministry of Panchayati Raj, Government of India. The district has received the prestigious Nanaji Deshmukh Sarvottam Panchayat Satat Vikas Puraskar for its outstanding achievements in rural development and sustainable governance. We have a report on this.
2: The award recognizes excellence in 9 key areas of sustainable development. Because of remarkable progress in all these sectors, the socio-economic condition of rural people in Sipahi Jala district has witnessed a major transformation. The district has set a benchmark for the rest of the country. Naturally, this historic achievement has brought immense joy and pride among people from every section of society across Sipahi Jala district.
3: पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स तो 2.0 उसमें हम हमारे जिला का जो 174 जीपीबीसी है सब पार्टिसिपेट किया है, सब मिल के इसके ऊपर अच्छे से काम किया है। बहुत गौरव का बात है हमारे लिए, हमारे इस जिला के लिए।
2: द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज असिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया यूजिंग द पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2.0 व्हिच मेजर्स ओवरऑल प्रोग्रेस इन ग्रासरूट्स डेवलपमेंट। एज अ पार्ट ऑफ द अवार्ड द डिस्ट्रिक्ट विल receive a financial grant of rupees 5 crore for further strengthening rural development initiatives and sustainable infrastructure. With a vision of Viksit Bharat 2047 guided by Prime Minister Narendra Modi, strengthening rural India has become a national priority. And today, Sipahi Jala district of Tripura stands as a shining example of how grassroots development, people's participation and good governance can bring meaningful change to rural lives. For Parikrama, Shuman Bhattacharji, Akashvani, Agartala.
1: दोस्तों, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गोवा सरकार पूरे राज्य में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे बड़े

0: पैमाने पर वृक्षारोपण का अभियान शुरू करेगी। इस पहल में जैव विविधता समितियां और स्वयं सहायता समूह भी शामिल होंगे और इसका मकसद गोवा के पारिस्थितिकी संतुलन को मजबूत करना और इसकी प्राकृतिक विरासत की रक्षा करना है। हमारे संवाददाता से आइए सुनते हैं कुछ और जानकारी।
1: द गवर्नमेंट ऑफ गोवा हैज अनाउंस्ड अ मेजर ग्रीन इनिशिएटिव टू मार्क वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन जून 5th. चीफ मिनिस्टर डॉ प्रमोद सावंत सेड प्लांटेशन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज विल बी टेकन अप अलोंग नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज अक्रॉस गोवा विद सपोर्ट फ्रॉम बायोडायवर्सिटी कमिटीज एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. एड्रेसिंग अ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ ग्लोबल बायोडायवर्सिटी डे, द चीफ मिनिस्टर सेड द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रिजर्विंग गोवाज एनवायरमेंट एंड बायोडायवर्सिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस. He also announced plans to expand mangrove plantation along rivers and coastal stretches in Goa. Bamboo cultivation will receive special focus with government set to distribute bamboo seeds free of cost during the current monsoon season. The chief minister said bamboo offers economic opportunities due to growing market demand and encouraged people to participate. During the event, chief minister also appealed people not to leave agricultural land unused, to conserve water resources and to protect traditional salt pans. He added that the government remains committed to biodiversity conservation and is advancing the vision of mission life through sustainable lifestyle practices. For Parikrama, Mahesh Sopade, Akashwani News, Panji.
2: Continuing its stellar streak of record profits for the fourth consecutive financial year, the Jammu and Kashmir Bank has posted its highest ever annual profit of approximately 2,363 crore rupees for the last financial year. Let's hear the report.
3: The J&K Bank also ended the financial year on a high with a record quarterly performance, posting a net profit of almost rupees 800 crores when compared to rupees 584.54 crores recorded for the corresponding period last year. In an exclusive interview to Parikrama, the J&K Bank Managing Director and CEO Amitabh Chatterjee said,
4: "Pichle saal humne jo mushkilat dekhi yahan Jammu and Kashmir mein, उसके मद्देनजर अगर आप हमारे प्रॉफिट को या हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है. हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, एमएसएमई पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्रांचेस हैं.
3: After government, J&K Bank is being considered as number two employer for the young, educated and meritorious aspirants to get jobs. Talking about the upcoming recruitment process, the J&K Bank Managing Director and CEO said,
4: 2021 के बाद से कोई recruitment नहीं हुआ है इस बैंक में. उसका main reason ये था कि जो cost to income ratio था ना हमारे बैंक का, वो बहुत high था. तो हमने कोशिश की कि income बढ़ाए last पिछले 5 साल में. तो हम इस साल हमारा plan में ये है कि हम recruit करेंगे.
3: Sustaining its healthy growth trajectory during financial year 2025-26, the bank's total business surged 13.61% year-on-year to rupees 2,90,341 crores as on 31st March 2026. For Parikrama, Tariq Rather, Akashwani News, Srinagar.
0: और दोस्तों आइए अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं क्या है वहां की हलचल। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया है। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा बनाए रखा। अमर सिंह देवंदा ने 24 घंटे में 282.88 किलोमीटर की दूरी तय करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गिनो एंटनी ने 272.894 किलोमीटर की दूरी तय करके रजत पदक हासिल किया, जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय करके कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से चौथे स्थान पर रही। ये चैंपियनशिप जापान के हिरोसाकी शहर में आयोजित की गई थी, जिसमें 9 देशों के 81 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
2: And if we talk about the business news of the day, benchmark domestic equity indices ended on a bullish note today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 1,074 points or 1.4% to close at 76,489, while the Nifty advanced 312 points or 1.3% to settle at 24,032. In the broader market, at the National Stock Exchange, Mid Cap 100 100 index advanced 0.9%, while small cap 100 index jumped 1.9%.

0: One of the pioneers of modern Indian sculpture, Behge created art spontaneously, driven by intuition and energy, and disregarding the artistic standards accepted by the institution. A brief introduction to modeling by a visiting French sculptor led Behge to engage with clay in a unique manner. He introduced cement concrete casting as an alternative to expensive plaster, the first artist in Shantiniketan to use oil paint and create distinctly modern and abstract work. Drawn from life, Behge's figures breathed a bold realism, an earthy strength and spontaneity seen in his sculptures, drawings and paintings. He was awarded the Padma Bhushan by the Government of India in 1970. And today we also pay tribute to Sunil Dutt. Yes, he was an iconic Indian actor, filmmaker and politician whose profound humanity both on and off the screen left an indelible mark on the nation.
1: जी हाँ, दरअसल न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि सामाजिक सुधार के कार्यों में भी अंत तक वो जुड़े रहे और खासी चर्चित रही उनकी पदयात्रा जो उन्होंने की थी भारत की, और युवाओं को आजीवन उन्होंने प्रेरित किया। 1957 में प्रदर्शित हुई थी उनकी मदर इंडिया, जिससे उन्हें अभिनेता के तौर पर एक खास पहचान मिली, और फिर आई थी 1965 में बड़ी ही यादगार फिल्म वक्त, जिसमें थे बलराज साहनी, उनके साथ राजकुमार, शशि कपूर और रहमान। और खास फिल्मों की अगर उनकी बात करें तो साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन जैसी फिल्में हमें याद आती हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं का ये एक यादगार संवाद फिल्म मेरा साया से, और उसके बाद गीतों की एक झलक।
2: तुम मेरी बीवी हो ना, तुम्हें उस डायरी से बहुत प्यार था, तुम उस डायरी को बड़ी हिफाजत से रखती थी, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो डायरी इस वक्त भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। कहाँ है वो?
3: जब मैं घर से निकली थी तो डायरी साथ लेकर नहीं गई।
2: मैंने घर का कोना कोना छान मारा, चप्पा चप्पा देख डाला, अलमारियां, सूटकेस, ट्रंक उलट पलट कर दिए, मगर उस डायरी का कहीं पता नहीं, कहीं नाम निशान नहीं। वही चीज तुम्हें याद नहीं आ रही, कहां रखी थी? मैं बताता हूं तुम्हें क्यों नहीं याद आ रही, इसलिए कि तुम मेरी बीवी नहीं हो।
0: And a song from Sujata was another masterpiece picturized on him, which still remains unforgettable.

0: And as one part of the legendary Bollywood composing duo Lakshmikant Pyarelal, today is Lakshmikant Kundalkar's death anniversary, who dominated the Indian film music industry from the 1960s to the 1990s.
1: जी हाँ, 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में पिता का निधन हो गया और उसके बाद बीच में पढ़ाई उनको छोड़ देनी पड़ी. बचपन से ही रुझान था लक्ष्मीकांत का संगीत की ओर और फिर संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने हासिल की थी अपने उस्ताद हुसैन अली से. और आगे चलकर लक्ष्मीकांत ने अपने दोस्त प्यारे लाल के साथ मिलकर संगीतकार जोड़ी बनाकर फिल्म जगत में अपना लोहा मनवाया. अपने करियर की शुरुआत में कल्याण जी आनंद जी के सहायक के तौर पर भी काम किया. मदारी, सट्टा बाजार, छलिया, दिल तेरा हम भी तेरे और कई उनकी ऐसी फिल्में हैं जिसमें उनके गीत खासे मशहूर रहे और अब भी गुनगुनाए जाते हैं.

और दोस्तों अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी मुनीश शर्मा और मेरी सहयोगी अनुजा कुमार को। परिक्रमा यहीं

0: पर समाप्त हो रहा है। अगर आप हमें दोबारा सुनना चाहें तो लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.newsonair.com और हमारा ऐप है न्यूज ऑन AIR, इस पर भी आप हमें सुन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेज सकते हैं। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: बियॉन्ड हर इलस्ट्रियस परफॉर्मिंग करियर डॉक्टर राजम सर

0: with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly four decades, and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
2: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं, और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी.
0: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट.
1: श्री भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य.
2: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय, और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं.
0: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन.
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग.
2: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है.
0: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर फोर डेकेड्स, एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को-चेयरमैन ऑफ द इंडो-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप.
1: विजय कुमार मल्होत्रा, मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा.
2: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे. उनके बिहाव पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते.
0: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palniswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी.
2: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं. आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था.
0: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
0: श्री
1: पीयूष पांडे, मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी.
2: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम. 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया. नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं.
0: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स.
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी.
2: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की. 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत.
0: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस, एंड रिमेन्स सो ओवर 6 डेकेड्स.
1: श्री भरत सिंह भारती, कला लोक गायन.
2: भरत सिंह भारती, 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं. आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है.
0: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987, वेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड. He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil, Kala Algoza Badan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors.

0: and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, साहित्य एवं शिक्षा।
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
0: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose, Kala Tabla.
2: Kumar Bose, Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
0: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
1: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
0: श्री बोधे कंपनीड राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया, इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धे हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए ये संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली, स्कूप एंड खाकी।
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी, समाज सेवा।
2: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती है। 3,000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
0: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management.
2: श्री
0: She was also conferred the Nari Shakti Puraskar.

0: और पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
1: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
2: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है। उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
2: श्री तेची गोबिंद समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गोबिंद 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
1: Shri Gobind organized and led the Simant Darshan Yatra in 2010 and 2021, visiting remote villages bordering China, Myanmar and Bhutan. He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security
2: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं। लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
1: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
2: Shri
1: B.C. Roy
2: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं। इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
1: Well, through his sustained artistic practice, Shri Gafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies in folk.
2: Meer Hazi Qasim Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं। आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: Shri Qasim has been instrumental in carrying Gujarati folk music to global audiences, performing across countries such as the USA, UK, South Africa, Canada, UAE, Oman, and several others. He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
2: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
1: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
2: Shri R. Krishnan Kitna Mannoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Shrimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज
2: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।

0: एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉर्न में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
2: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार अपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
1: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
2: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की। T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन हैं और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
1: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
2: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। As additional DG law and order, he strengthened public safety
2: Deva Lad, Dada Lad, Krishi.
0: Deva Lad, किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्मे हैं, 79 वर्ष के हैं।
1: श्री रंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
2: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
1: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
2: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa Cardiology.
0: 69 वर्षीय डॉक्टर मंडल इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
1: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
2: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of

0: organs. For that, he has traveled extensively across India.
1: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
2: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने.
0: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी.
2: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
0: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
2: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय.
0: Well, Shri Mukhopadhyay's writings on
1: theatre. Shri Satya Narayan Nandlal Nuwal, Vyapar Evam Udyog.
2: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
0: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition.
1: श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम.
2: सिलंबम 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल.
0: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mamalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
2: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं. आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान.
0: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
2: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत. मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है.
0: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
2: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है.
0: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार.
2: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार. गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए. प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप.
0: Over a career spanning 6 decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और

0: क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज़ द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
1: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.
2: Srimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
1: श्रीमती रेड्डी वाज़ द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
2: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: have borne fruit. श्री हरिचरण शाइकिया, कला सत्रिया नित्य।
0: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शाइकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई।
1: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री
0: 86 साल के शास्त्री जी
2: साहित्य
0: एवं संस्कृत विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स। He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hain aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka praman ki unka kitna bada contribution raha hai.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
2: Shri Yumnam Jatra Singh Marnoprant Kala Nat Sankirtan unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
0: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए यूं

0: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
1: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan Evam Engineering.
2: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का.
0: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
1: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा.
2: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की. आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है. 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने.
0: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
1: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
2: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल.
0: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस. He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
1: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
2: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं. संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट. ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
1: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा.
2: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
0: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
1: श्री एन स्वामीनाथन, कला भक्ति संगीत.
2: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
0: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
2: Dr. Thakral.

0: आयुर्वेदिक पद्धति के शल्य चिकित्सक हैं और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
0: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी।
1: डॉक्टर त्रिवेदी सिंस द लास्ट 5 इयर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
2: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
0: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है। काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ।
1: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू व्हिच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hain. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टेक्स, ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस। ही हैज पब्लिश्ड अबाउट 200 पेपर्स इन लीडिंग जर्नल्स।
2: डॉक्टर नारायण व्यास, पुरातत्व विज्ञान।
0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Gambhir Singh Yonzan, Sahitya evam Shiksha.
0: Gambhir Singh ji, Darjeeling pahadiyon ke ek pratishthit vanaspati shastri, shikshavid, paryavaranvid aur sansthan ke nirmatak hain aur khas taur par vanaspati vigyan mein aapne bahut karya kiya hai.
1: Professor Yonzan's contribution to educational and intellectual advancement of Darjeeling Hill region are pioneering and far-reaching. A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge success.
2: Shri Halley Var, Samaj Seva.
0: अब बारी हेली वॉर जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स। सिंस द एज ऑफ 10 ही हैज मेटिकुलसली गाइडेड द एरियल रूट्स ऑफ द फिकस इलास्टिका ट्री टू क्रिएट ड्यूरेबल लिविंग स्ट्रक्चर्स। His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious

0: prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
1: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of this ceremony.
2: Akashwani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhule. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र, कमल सिंह और हेमराज मीणा। ओब इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार। मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस। नमस्कार।
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह की अध्यक्ष डॉ शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है सदाबहार गीत का। सदाबहार गीत में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: और आइए अब सुनते हैं फिल्म मधुमती से गीत लता मंगेशकर जी की आवाज में।

0: we don't address company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. I'm Vaibhav Jyotsna Srivastav with my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीटी कोड 011 भी डायल करें, लेकिन जरूर याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। श्रोताओं, आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और विशेष मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
2: धन्यवाद प्राची।
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
0: We begin with the headlines. Domestic benchmark indices start week on positive note. Sensex rallies over 1,000 points. Nifty reclaims 24,000 level. Major Asian stock indices end in positive territory and global crude oil prices decline over 5%.
1: घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की। सेंसेक्स 1,000 अंकों से अधिक बढ़ा। निफ्टी 24,000 के स्तर पर फिर से पहुंचा। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 5% से अधिक की कमी आई।

0: The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और श्रोताओं, आप जानते हैं कि पूरे दिन के अंतराल में शेयर बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया? देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। बाजार में ये तेजी पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित समझौते की उम्मीदों के बीच आई। सेंसेक्स 174 अंक यानी 1.4% बढ़कर 76,489 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312 अंक यानी 1.3% बढ़कर 24,032 पर स्थिर हुआ। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 सूचकांक में लगभग 1% और स्मॉल कैप में लगभग 1.5% की तेजी देखी गई। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण सत्र की शुरुआत जो है वो तेजड़ियों के साथ हुई।
0: Benchmark domestic equity indices end on a bullish note today amid hopes of a possible agreement to end the US-Iran conflict. The Sensex surged 1,074 points, or 1.4%, to close at 76,489, while the Nifty rose 312 points, or 1.3%, to settle at 24,032. In the broader market, at the National Stock Exchange, mid-cap 100 index advanced 0.9%, while the small-cap 100 index jumped 1.4%. Markets rallied early in the session as a pullback in crude oil prices cooled inflationary worries.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में बजाज फाइनेंस 2.8%, लार्सन एंड टूब्रो और एचडीएफसी बैंक 2.7% तथा इटर्नल के शेयर लगभग 2.5% बढ़े। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इन्फोसिस और टीसीएस, इन दोनों ही कंपनियों के शेयर्स लगभग 0.5%, तथा सन फार्मा के शेयरों में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई।
0: In the sectoral indices at the BSE, 23 out of 25 sectors ended in positive territory. In the top gainers, PSU Bank soared almost 3%, Bank X climbed nearly 2.3%, and top 10 bank index added 2.2%. However, FMCG as well as hospitals dipped marginally. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,785 companies advanced, 1,535 declined, and 211 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 47 पैसे मजबूत होकर 95.23 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सूचकांक, जो 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमरीकी डॉलर की मजबूती को दर्शाता है, वो दिन के कारोबार में 98.99 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज हमने बाजार में एक रौनक देखी है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे विस्तार से, मगर उससे पहले आइए लेते हैं कॉल महाराष्ट्र से। इनका नाम है वेदांत। वेदांत जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: मेरा प्रश्न इस प्रकार है कि जो अभी जो एक्टिव ट्रेडर है उनको कॉल आते हैं कि भाई हम सेबी रजिस्टर्ड है, हमारा ये सुविधा है, वो सुविधा है, तो ये इनको कैसे वेरीफाई करें, ये इनका डाटा कहाँ मिलेगा कि कौन सेबी रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है, कैसे वेरीफाई करें, मतलब जेन्युइन क्या है? और मैंने तो उसको कॉल काट दिया फ्रॉड समझ के, और इसकी जानकारी चाहिए थी। धन्यवाद।
3: देखिए, जो आप जिनके साथ आप डील करते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, आप उनके बारे में उनका प्रोफाइल चेक कर लीजिए। ऐसे रैंडम आप मत किसी के साथ निवेश करिएगा।
1: बिल्कुल। इससे पहले हमारे पास एक कॉल आ रही थी श्रोताओं, मगर शायद तकनीकी दिक्कत के कारण वो फिर से हमारे पास लौट जाएंगे श्रोता। उससे पहले आइए हम चर्चा करते हैं आज के ट्रेंड की, जो मार्केट में हमने देखा, हमने एक रैली देखी है कि 1000 अंकों से ज्यादा का उछाल आया है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक, जिसको कहते हैं कि अब हम जो क्यूज जो हमें मिल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, वो बहुत ही अच्छे सकारात्मक रूप में मिल रहे हैं। इसको अवलोकन आप कैसे करती हैं?
3: बिल्कुल। देखिए, अगर आज का जो देखें, एक बहुत उत्साह था बाजार में, और उत्साह, और ये उत्साह उस उम्मीद पर था कि हो सकता है एक समझौता हो जाए और लड़ाई रुक जाए। तो जो कुछ दिनों से बहुत उदासी छाई हुई थी और बाजार तकरीबन गिर रहा था हर रोज, तो ये थोड़े से पॉजिटिव क्यूज जो मिले हैं जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर के, उसी का उत्साह जो है बाजार में दिख रहा था आज। और अगर आप देखें कि क्रूड ऑयल जो है उसका भी दाम घटा है, तो कुछ एक ये फैक्टर्स थे, रुपी भी जो है उसका डिप्रिसिएशन आज थोड़ा रुका, आज थोड़ी बढ़त हुई, आरबीआई गवर्नर का बहुत एक जोरदार सा स्टेटमेंट आया है उसके तहत कि रुपी का वैल्यूएशन तो और मजबूत होना चाहिए, ये गिरावट जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे वो आज बाजार में दिखे।
0: हंदीप शुक्ल जी, व्हाट डू यू फील अबाउट द फैक्ट दैट Iran has clearly stated there will not be any more further tariffs on the Strait of Hormuz, on the vessels that are crossing the Hormuz Strait, and the fact that the talks are ongoing. Do you feel that the ongoing talks could lead to not just a solution in the West Asian crisis or the conflict, as we can say, but also towards a bilateral trade agreement between India and the US that has been hanging in the balance for a quite a long time now?
3: Vaibhav, you know, I would not like to connect the two. You know, the US-India trade deal is a separate parallel track which has been going on. Secretary Rubio is in Delhi, India. You know, for yes. The Quad Summit. There's also a team expected to visit in June. So those discussions are going on at the parallel level. But what is happening in West Asia is something which is there are a lot of factors there which are in the play, and I think the entire world, all the economies are keeping their fingers crossed, which have large import exposure to crude oil or any other, because that's a passage which is used by many countries. So I think everyone's very hopeful with the kind of statements that have come about, but I think till the time the deal happens, you are never very sure.
1: दीपशिखा, वैश्विक रुझानों को हम सकारात्मक दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं, जिसका एक सीधा असर हमने आज बाजार में आई उछाल को लेकर के देखा। क्या आप इसे कैसे देखती हैं कि क्या ये सस्टेन करेगा कुछ वक्त के लिए, या ये आज भर की बात है और कल फिर वही उदासी?
3: प्राची, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाजार जो है, जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ग्लोबल लीडर्स के, खासतौर से अमेरिका से क्या स्टेटमेंट आता है, ईरान से क्या स्टेटमेंट आता है, इसराइल से क्या स्टेटमेंट आता है, और क्या एक समझौता

0: हो पाता है कि नहीं। तो काफी हद तक ये उम्मीद बन रही है कि अब शायद कुछ समझौता हो जाए, लड़ाई जो है और आगे ना बढ़े और चीजें जो हैं अब सुलझें। पर ये होने में और ये होता है नहीं होता है, ये इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स, मैं कहूँगी बहुत सारे अंदेशे हैं। तो इसलिए उतार चढ़ाव जो है बाजार का, वो इसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अगर हम देखें, हम आयात पर काफी हद तक निर्भर हैं कच्चे तेल के लिए, तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को काफी एक्सपोज करता है, और वही एक्सपोजर जो है हमने देखा रुपए में गिरावट हुई। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक जो वहाँ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन जाती है, क्योंकि हम कच्चे तेल का आयात, वो एक बहुत बड़ा रूट है जहाँ से हम आयात करते हैं उसे, और हमारा एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्ले करेंगे कुछ समय, मुझे लगता है। तो ये कुछ समय तक, जब तक कि एक बहुत ही बिल्कुल स्थिरता नहीं आती है वहाँ, तब तक ये थोड़ा उतार चढ़ाव हमें शायद देखने को मिलेगा।
1: आज जिस तरीके से, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद हम देख पा रहे हैं कि आज 1000 अंकों से ज़्यादा बाजार में उछाल आया है, तो हो सकता है कि जो निवेशक है उनके मन में ये आ सकता है कि क्योंकि वैश्विक जो रुझान है वो भी सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं, बाजार में भी पॉजिटिविटी हमें नजर आ रही है, तो क्या आप ये सलाह देंगी कि ये समय है, अब वो समय शुरू हो गया है कि जब आप बाजार में निवेश करना शुरू करें, या अभी भी सोच समझ करके और एक बार परिस्थितियों को एक बार फिर से उसकी समीक्षा करके और फिर अपने पैसे लगाएं?
0: देखिए, सोच समझ कर निवेश तो करना ही चाहिए, लाजमी है, वो तो एक प्रिंसिपल है,
1: मगर अभी
0: लेकिन
1: अभी
0: इस समय जो है, जैसा कि हम लोग पहले भी बातचीत करते हैं कि बाय ऑन डिप्स, अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिस पर आप नजर रखे हुए हैं, कंपनी मजबूत है, फंडामेंटल्स मजबूत है, और अगर आपको वो अच्छे दाम में मिल रहा है, तो खरीदिए उसको इस समय, और थोड़ा थोड़ा खरीदिए ताकि आपका जो है, आपको दाम जो है वो सही मिल पाए और आप ठीक तरह से उसमें निवेश कर पाए। और कुछ एक जो क्षेत्र हैं, जैसा कि फार्मा है या डिफेंस है, इन क्षेत्रों में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के हिसाब से भी ये क्षेत्र काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, तो इनको आप देख सकते हैं निवेशक जो हैं। तो उतार चढ़ाव कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन ये एक्सपोजर जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो सोच कर और समझदारी से ही लें।
1: जी,
2: our next call is from Bhopal. We are joined in by Shankar. Shankar ji, I think there's a technical problem. We'll hope that Shankar calls us again.
1: रुक करते हैं श्रोताओं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांक आज सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। पश्चिम एशिया में तनाव के मद्देनजर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच सकारात्मक बातचीत होने की उम्मीदों के कारण जापान का निकी लगभग 3% बढ़कर अपने सबसे ऊंचे स्तर यानी 65,158 के ऊपर बंद हुआ। चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स लगभग 1% उछला, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली रूप से बढ़ा। वहीं दक्षिण कोरिया और हांगकांग के बाजार आज बंद रहे। श्रोताओं, यूरोप के प्रमुख सूचकांक भी आज अवकाश के कारण बंद रहे, साथ ही अमरीकी बाजार भी मेमोरियल डे के उपलक्ष्य में आज रात बंद रहेंगे। और दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी नमस्कार मैडम जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे अभी ये जो लड़ाई के चक्कर में पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट बढ़ गए, उसकी वजह से दाम बढ़ते जा रहे हैं, आज भी बढ़ गया, और ये जो पेट्रोल अब बढ़ने के बाद घटता भी है, तो सरकार अब जैसे लड़ाई बंद हो जाती है तो ये सरकार इसको घटाने की कोशिश करेगी, और जिस जो दुकानदारों ने अपने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, हलवाइयों ने और अदर जो चीजों के, कि भाई गैस महंगी हो गई है, तो क्या वो भी गैस सस्ती होने के बाद वो भी अपना घटाने की कोशिश करेंगे? अगर नहीं करते तो इसके ऊपर क्या सरकार कुछ कार्रवाई करने का कुछ प्लान बना रखा है?
0: केशव जी, अगर आप देखें देश में पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं, अगर दुनिया भर में देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बहुत सारे देशों ने जितनी बढ़ोतरी हुई कच्चे तेल के दामों में, पूरी जो है रिटेल जो कंज्यूमर है उनको पास ऑन कर दिया।

0: था। हमारे देश में सरकार ने काफी हद तक उसको संभाल के रखा है और बढ़ने नहीं दिया। अगर आप देखें तो बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो काफ़ी नुकसान में जो है मुहैया करा रही हैं पेट्रोल और डीजल। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ उसका कीमतों पर असर होता है, सेकेंड राउंड इफेक्ट आता है और वो कुछ हद तक आ भी रहा होगा, क्योंकि दामों जैसे ही दाम बढ़ते हैं बाकी लोग बढ़ा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब दाम सस्ते होंगे या उनमें कटौती होगी, तो चूंकि हर कोई चाहता है कि उसका बाजार बरकरार रहे, तो वो अपने उपभोक्ता के लिए हो सकता है दाम घटाए। हमने देखा है जब जीएसटी में कटौती हुई थी तो बहुत सारी कंपनीज ने कटौतियां जो हैं अपने प्रोडक्ट्स में अनाउंस की थी।
1: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हुई, जो 2 हफ्तों में चौथी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपये 71 पैसे की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इसी तरह दिल्ली में डीजल की कीमत 95 रुपये और 20 पैसे प्रति लीटर हो गई है। श्रोताओं, हमारे साथ नोएडा से पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज जी, कार्यक्रम में आपका अभिवादन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: हेलो मैम
1: जी, अपना सवाल पूछिए।
2: मैम, मैं सिल्वर ETF और गोल्ड ETF के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, ये निवेश करने के लिए ठीक है मैम?
0: गोल्ड और सिल्वर ETF जो है एक अच्छा जरिया है बाजार में निवेश करने के लिए। और आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, लोगों को डिस्करेज किया था सोना खरीदने के लिए। तो निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है प्रधानमंत्री की बात पर ध्यान दीजिए, लेकिन हाँ ETF में निवेश आप बिल्कुल कीजिए।
1: शंकर हमारे साथ भोपाल से दोबारा जुड़ रहे हैं। श्रोताओं, शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: नमस्ते मार्केट मंत्र टीम। मैडम, हम लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, उन लोगों के लिए बेसिकली सोना महंगा है, डॉलर में हम लोग इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट में SIP में करते रहे, उसमें कोई चेंज ना करे तो ये स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी क्या? दूसरा सवाल इसी से संबंध में है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिस्ट ने भगा नहीं दिया, मतलब वो घबरा गए क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 0 था, फिर 10 लगाया, फिर 12.5 गया। अब परिस्थिति को देखते हुए क्या उसको 0% करके फिर बाद में धीरे धीरे चाहो तो बढ़ा दें, तो इससे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे क्या? क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं इकोनॉमिस्ट लोग की FII फिर से आ जाए और हमारे यहाँ थोड़ी सी खुशी आ जाए? थैंक यू।
0: शंकर जी, देखिए सरकार की तरफ से, रेगुलेटर्स की तरफ से ये बराबर कोशिश है कि देश को हम विदेशी निवेश के लिए कितना और आकर्षक बना लेते हैं। तो अगर आपने देखा होगा SEBI की तरफ से भी बराबर प्रयास है, उसके अलावा भी सरकार की तरफ से भी बहुत प्रयास किए गए कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट रेजीम है वो विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनी रहे। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि विदेशी निवेशक यहाँ आए, लेकिन कर लगाना या नहीं लगाना किसी भी देश के, किसी भी सॉवरेन का हक होता है।
4: And to be on a very positive note, the fundamentals of Indian markets have always been strong. They've meant to be stronger. The debt markets are very strong in today's times. And that's the reason why the FIIs come again. The reason for FIIs leaving, or not exactly leaving, is the fact that they had earned a lot of profits from the Indian market. And if you are an investor in the markets, you should realize the fact that every interval or every after period of few months or years, every investor needs to book the profits. The FIIs have booked enough profits from Indian markets. Now they are revolving around and it's a very clear, regular cycle that keeps on. The FIIs go to another market, they pull out their money, they come back into the Indian markets. But the positive point is that our fundamentals remain strong and we are steadfast towards being an even better economy in the future.
1: बिल्कुल वैभव, आपने बहुत सही बात कही। अब हम जुड़ रहे हैं बॉम्बे से, हसमुख हमारे साथ हैं। हसमुख जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र।
1: गुड इवनिंग।
5: माय क्वेश्चन बेसिकली इज रिगार्डिंग क्रूड। द क्रूड इज नाउ, ब्रेंट क्रूड इज नाउ ट्रेडिंग यू नो बिलो $98। सो कैन वी से that whatever the, you know, 7.5 rupees at the increase in the petrol or diesel has happened since last 10 days, I think, can we say, or what is your gut feeling, or what is your back of the calculation, you know, back of the envelope calculation, can we say that that rise is now in the petrol or diesel is over, and we can see the, at least, if not reduction, but same prices, you know, till remaining for the next year? Thank you.
0: Hasmukh ji, thank you for your question. It is very difficult to say which direction will crude take, because you know, this is what we saw today was a reflection of, you know, this optimism around a deal happening. So if the deal happens, definitely crude could slide down, but if the deal does not take place, then there is going to be some issue for at least some time.
1: दिल्ली से हमारे साथ सिद्धार्थ जुड़ रहे हैं. सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: नमस्कार मैम, गुड इवनिंग. ब्यूटिफुल टू हियर द वॉइस फ्रॉम द अदर साइड. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय कॉल. एंड माय क्वेश्चन टू द गेस्ट टुडे इज, इन द इंडियन मार्केट द पीपल आर गोइंग ऑन, यू नो, फॉलोइंग द ट्रेंड ऑफ एसआईपी, एंड इफ वी सी द मार्केट रिटर्न्स इन द पास्ट 1.5 years, दे हैव बीन सो डिसअपॉइंटिंग. And moreover, crushing the whole sentiment is the IRA depreciation as well. So I believe a person in the last...
4: I believe Siddharji was asking that whether one should continue with SIPs even during times of downturn. Ma'am, your views?
0: Absolutely,
4: yes.
0: Yes.
4: Well, you listen to any of the...
0: Yeah, you should not, because you will realize it later that you made the right choice.
4: Again, the Indian equity markets have their fundamentals right. If you are invested in equities, stay for a longer period. These downturns are an opportunity for investors to get their stocks, their ETFs, their mutual funds averaged out, to get all these wonderful units at a cheaper price, and then of course get
0: the benefits. Absolutely, you're buying the India growth story, and
4: that's a wonderful, wonderful way to put it, ma'am.
0: Yeah, and we may be, you know, sort of, there are challenges because of some geopolitical factors, something that's happening overseas. But if you look at you know, government is seized of the matter. There are, you know, a lot of discussions going on how to tackle the crisis. So, you know, once there's clarity on what happens in West Asia, the story is going to be as strong as ever.
4: And absolutely. And I also believe that the bilateral relations, or the bilateral agreements they are entering into, we entered into a bilateral agreement that was called the mother of all deals with EU. That itself tells a big story about how the India growth story, as Deepshika ji very rightly said, would be portrayed. Our next caller is Subhash from Faridabad. Subhash ji, welcome to the show. Please, apna sawal puchhe.
7: नमस्कार सर
4: जी. नमस्कार, अपना सवाल पूछिए.
7: हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि एफआईआई जो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं, ये लगातार ये बहुत लंबा मतलब सिस्टम चल रहा है, कि इसमें हमें पता चल सकता है सर कितना प्रॉफिट उन्होंने बुक किया अब तक?
1: भावनाएं आहत हैं.
4: मैम
0: बिल्कुल, देखिए एफआईआईज जो हैं, कुछ समय से ये चल रही है बिकवाली. अगर आप देखें तो एक तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, दूसरा अगर आप देखें अमेरिकन मार्केट्स में, यूएस ट्रेजरी के यील्ड्स अगर आप देखें, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि यहाँ से लोग पैसे निकाल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं. तो प्रॉफिट बुकिंग जो है काफी हद तक हुई है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि अब ये जब संकट के बादल चढ़ छाएंगे तो एफआईआईज वापस आएंगे.
4: बिल्कुल. और एएमसीज की एनुअल रिपोर्ट्स जो सेबी और आरबीआई के हिसाब से मैंडेटरी है उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन में देना, आप उनको पढ़ सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन टुडे कॉल्ड फॉर इंक्रीज्ड फोकस ऑन द 3 F's, फ्यूल, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, Ms. Sitharaman launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. The initiatives launched include the SIDBI Match Fin Mart, a digital
8: digital platform to help MSMEs access machinery through a structured marketplace supporting price discovery, standardization and technology adoption. The finance minister also launched the RRB co-lending portal to operationalize partnerships between SIDBI and regional rural banks for improving credit flow in rural and

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा

0: सभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामास्वामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में हैं।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इनमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at an investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत दौरा, भारत अमेरिका संबंधों को नई मजबूती पर। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत पिनाक रंजन चक्रवर्ती। पिनाक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्कार
1: पिनाक जी। एक बेहद अहम दौरा है अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भारत में, और भारत अमेरिकी संबंधों को नई मजबूती देने

0: पर बेहद जोर दिया जा रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण चर्चा को आरंभ करने से पहले भारतीय विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर के शब्द सुने।
1: आई थिंक वेयर द यूनाइटेड स्टेट्स इज कंसर्न्ड, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन वेरी फोर्थराइट इन पुटिंग फॉरवर्ड इट्स फॉरेन पॉलिसी आउटलुक एज अमेरिका फर्स्ट। नाउ वेयर वी आर कंसर्न्ड, वी हैव अ व्यू ऑफ इंडिया फर्स्ट। So both of us are obviously driven by our respective national interests. There will be many areas where our national interests are in harmony and we work together, which is why we have a strategic partnership.
0: पिनाक जी, एस जयशंकर जी ने कहा कि अमेरिका फर्स्ट की तरह ही भारत इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बहुत साफ कर दिया है कि अमेरिका फर्स्ट की जो उनकी नीति है वो सर्वोपरि है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे?
2: देखिए, हर एक देश अपनी जो इंटरेस्ट है उसको सबसे नेचुरली प्रायोरिटी देती है। अब उसमें ऐसा होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कभी, अच्छा ठीक है आप ये करिए तो हम ये करेंगे। पर जो ट्रंप साहब ने नीति अपनाई है वो थोड़ा सा और पिछले प्रेसिडेंटों से थोड़ा सा हटकर, क्योंकि वो उस पर ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि अमेरिका को क्या फायदा है वो सबसे पहले वो देख रहे हैं। भारत भी हमेशा देखता है कि भारत का क्या फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत और अमेरिका के संबंध काफी मजबूत है, काफी गहराई है, पर हमारे डिफरेंसेस भी हैं क्योंकि ज्योग्राफिकल है, पावर इक्वेशन जो होता है वो अलग अलग है, लोग डिफरेंट हैं, उनकी सिस्टम अलग है, वो डिफरेंट पीपल हैं, तो इसमें तो होता ही है, डिफरेंसेस तो होंगे ही, ये नॉर्मल होता है। तो इसीलिए हम लोग बातचीत करते हैं, डायलॉग करते हैं, उसमें से जब कुछ मुद्दा निकलता है इस पे दोनों तरफ राजी होते हैं तब आगे बढ़ती है बात।
0: जी पिनाक जी, आइए सुनते हैं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के शब्द।
3: एंड वन ऑफ दोज रिलेशनशिप्स दैट आई एम सो एक्साइटेड अबाउट गोइंग इनटू द 21st सेंचुरी गिवन द चैलेंजेस एंड द अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस न्यू एरा इज इंडिया। इट्स वन ऑफ दोज कंट्रीज दैट आई नो दैट वी हैव दिस वेरी वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद एंड वी शेयर सो मेनी वैल्यूज एंड सो मेनी कॉमन इंटरेस्ट्स। एंड सो ऑब्वियसली आई ट्राई टू गेट अराउंड द वर्ल्ड, आई विल ट्राई टू गो टू अदर सेलिब्रेशंस ऑफ आवर 250th बर्थडे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल्दो आई डाउट एनी विल हैव अ प्रोडक्शन लाइक दिस वन, बट I want you to know that part of my visit here is also to reinforce how important this relationship is, how exciting it is, and how many opportunities we have to do things together. If I think about all of the key issues and all of the key opportunities of the modern economy, India and the United States together are perfectly positioned to work together on these issues to achieve a better life for the people of the United States, for the people of India, and frankly, for the people of other countries working together as well.
0: पिनाक जी, मार्को रूबियो ने कहा कि न सिर्फ अमेरिका और भारत के लोगों के लिए बल्कि विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी में रहने वाले लोगों के लिए भी भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो उन सब के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी पार्टनरशिप्स अमेरिका की हैं उनमें भारत की पार्टनरशिप को अमेरिका बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और समझता है कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते वक्त भारत अमेरिका के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस पर?
2: स्टेटमेंट में तो काफी चीजें उन्होंने कही जो अच्छी हैं, पर इसका जो नतीजा अगर असली निकालना है तो वो नेगोशिएशन से ही निकलेगा। जैसे हमारे ट्रेड नेगोशिएशन अभी चल रहे हैं तो उसका क्या होगा, फाइनली उसका रूप क्या होगा वो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो बातें सेक्रेटरी रूबियो ने कही क्या उसका कोई झलक उसमें दिखाई देता है, ये हम लोग असेस करेंगे। क्योंकि कहना एक बात है और इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है। इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि अमेरिका और इंडिया के संबंध जो है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस करेगा बहुत लोगों को, हमारे देश को तो करेगा ही, उनके देश को करेगा और बाकी देशों को भी करेगा। क्योंकि बड़े बड़े देश हैं जो मिलिट्री और इकोनॉमिकली राइज कर रहे हैं, अमेरिका तो है ही मिलिटरली और इकोनॉमिकली सबसे पावरफुल कंट्री, और इंडिया का भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो भार है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये जो हमारे संबंध है ये इन्फ्लुएंस करेगा, दुनिया को करेगा, रीजन को करेगा और दोनों मुल्कों को करेगा।
0: पिनाक जी, कई बार कोशिश की गई कि व्यवसाय की डील क्रैक की जाए, ट्रेड नेगोशिएशन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर अब तक ये मुमकिन नहीं हो पाया है। साथ ही साथ मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि रशिया पर लगे जो सैंक्शंस हैं, जितनी भी पाबंद हैं, वो इंडिया की तरफ टारगेट नहीं किए गए हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि हम रशिया के खिलाफ तो हैं लेकिन भारत और रूस के जो संबंध हैं उनके खिलाफ नहीं है। ये बात कितनी सच है और असल में

0: प्रैक्टिकली कितना ज्यादा हम देख पा रहे हैं कि इसका असर इंडिया यूएस के रिलेशंस पर पड़ रहा है?
1: इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि सैंक्शंस का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर तो पड़ ही रहा है
0: जी,
1: क्योंकि हम लोग उनके साथ बिजनेस करते हैं, हमारी मिलिट्री रिलेशनशिप है, और फिर तेल खरीदते हैं क्योंकि वो हमको सस्ते में मिल रहा था तेल। तो ये कहना कि ये इंडिया के खिलाफ नहीं है शायद कुछ हद तक सही है, पर बात तो यह है जो भी रशिया के साथ तेल खरीदता तो सबको इफेक्ट किया है, उसमें इंडिया भी है। तो हम तो उस नजरिए से देखेंगे कि हमको क्यों इफेक्ट हो रहा है, आप ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हो जिसमें हमें इफेक्ट हो रहा है। एक स्तर पर आप कहते हो जैसे रूबियो साहब ने कहा कि हम बहुत बड़े दोस्त हैं, पर दोस्त के खिलाफ इस तरह का एक्शन मतलब डायरेक्टली ना ले पर इनडायरेक्टली तो फर्क पड़ रहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही काम होना चाहिए। ये सैंक्शंस वगैरह जो है ये टेम्पररी है, कभी कभी वो उठा देते हैं फिर कहते हैं नहीं हम फिर लगा देंगे, तो इस तरह की चीजों में काफी दिक्कत हो जाती है, सप्लाई चेन्स जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सैंक्शंस की नीति से हम लोग खुश नहीं हो सकते और कभी भी खुश नहीं हो।
0: पिनाक जी, आपने एक बेहद जरूरी शब्द कहा, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन को आज की इस दुनिया में हर देश या हर उभरता हुआ देश या हर विकसित देश कंट्रोल करना चाहता है, नियंत्रित करना चाहता है। वो चाहता है कि सप्लाई चेन उनके लिए लाभकारी हो। क्या लगता है कि जितनी भी ट्रेड नेगोशिएशंस हैं अब या अब के बाद या इस विश्व की जो परिस्थिति है उसके बाद, इस बात पर निर्भर करेंगी कि सप्लाई चेन जिन देशों के बीच में जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं उनको कितना लाभ देती हैं, और अब हम म्यूचुअल या मल्टीलैटरल अग्रीमेंट से आगे बढ़कर सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल अग्रीमेंट्स के विश्व की तरफ जा रहे हैं?
1: देखिए, वो तो मल्टीलैटरल WTO जो एग्रीमेंट्स थे वो तो ट्रंप साहब ने अपनी नीतियों के धक्के से उसको तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है ऑलमोस्ट, पर जो उसको मानते हैं उसके साथ तो चल रहा है। पर अब सब लोग बायलैटरल की तरफ झुक रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि जो सबसे बड़ा इकोनॉमी दुनिया में है वो अगर कहता है कि हम नहीं मानते हैं मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, एक तरफा उन्होंने वो डिसीजन लिया है। इसीलिए भारत भी EU के साथ बायलैटरल कर चुका है, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट्स जो है उनके साथ भी करेंगे, सबके साथ ही अब करना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी चलाने के लिए ट्रेड बहुत जरूरी है और उससे सप्लाई चेन्स बहुत जरूरी है। तो सप्लाई चेन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसके लिए भी नीतियां बदलनी पड़ती है, और इंडिया बदल रही है नीति क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई चेन्स के जो कई हब्स हैं वो अब यहाँ बनने लगे हैं। तो इसलिए हमें भी अपनी जो इंटरेस्ट है वो देखना है, पर बायलैटरल हो जाए तो ठीक है, वो तो होना ही पड़ेगा क्योंकि अब जब मल्टीलैटरल आप मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के साथ तो बातचीत कर ही रहे हैं हम, तो मल्टीलैटरल जो बायलैटरल जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो जब हो जाता है तो तब फिर मामला फिर बैक टू नॉर्मल हो सकता है। पर नॉर्मल नॉट इन द सेंस कि जो दुनिया पहले थी जहां मल्टीलैटरल एग्रीमेंट सब मानते थे, पर वो दुनिया नहीं रहेगी, अब बायलैटरल एग्रीमेंट्स की दुनिया में हम पहुंच गए।
0: तो पिनाक साहब, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब हो, जब मध्यस्थता ना हो पाए, तो किन मुद्दों पर बातचीत करती हैं सरकारें? आपके तजुर्बे से आप क्या बता सकते हैं श्रोताओं को कि वो कौन से नेगोशिएशन पॉइंट्स होते हैं जिन पर अंत में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि चलिए हम अब इन पॉइंट्स पर एक दूसरे से सहमति जताते हैं और अब आगे चलकर हम इस तरीके से अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ाना चाहेंगे?
1: ट्रेड का जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि वहां पे एग्रीमेंट्स काफी हो जाती हैं कि अच्छा इस आइटम पर हम ये करेंगे, उस आइटम पर इतना ड्यूटी लगाएंगे, पर कुछ आइटम हमेशा बच जाती है क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब हमारी तरफ से जो इंटरेस्ट है उस आइटम को हम चाहते हैं कि कम ड्यूटी लगे, और वो अपनी तरफ से बोलेंगे कि नहीं इस पे आप जीरो ड्यूटी कर दें। देखिए, अमेरिका ने जो ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ये एक नीति अपनाई है कि जिन देशों के साथ हमारा एडवर्स ट्रेड इंबैलेंस है, यानी जो लोग हमें ज्यादा बेचते हैं और हम उन्हें कम बेचते हैं
0: जी,
1: उनके साथ हमारा रुख बदलेगा, और उन्होंने बदला भी चाइना के साथ हमारे साथ, क्योंकि हमारे लिए एक ट्रेड बैलेंस जो है वो हमारे फेवर में है, वो 40-45 बिलियन डॉलर है। अब अमेरिका की ये नीति के बजाय अब वो ज्यादा हमको बेचना चाहते हैं क्योंकि कहते हैं कि आप हमें ज्यादा बेचते हो पर हम नहीं बेच पाते हैं क्योंकि आपके टैरिफ ज्यादा है, और हमारी तरफ से हमने बोला ठीक है आप ट्रेड एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो बात हो जाएगी, तो हम लोग भी थोड़ा कम कर देंगे टैरिफ आपके अच्छे जो गुड्स हैं उन पर। फिर एक और बात थी कि वो एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो हमने मना कर दिया कि वो हम नहीं खोलेंगे, डेयरी एंड एग्रीकल्चर, क्योंकि करोड़ों लोग इस पे निर्भर हैं और वो गरीबी की रेखा से ऊपर ही हैं और कुछ गरीबी रेखा से नीचे भी हैं, तो इसलिए उनका जो जीवन है हम नष्ट नहीं करना चाहते।

0: जो संघर्ष चलता ही जा रहा है, अभी फिलहाल उसका कोई समाधान नजर नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है भारत अमेरिका के रिश्तों के लिए भारत चीन रिश्ते कितने अहम हो जाते हैं? भारत ने अब चीन के साथ व्यवसाय दोबारा धीरे धीरे धीमे धीमे ही सही ग्रेजुअली ही सही दोबारा शुरू किया है। चीन और रूस के रिश्ते हम सभी जानते हैं कि बेहद मजबूत हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका साथ नहीं है, वैसे ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे भारत और चीन भी साथ नहीं है, लेकिन भारत और चीन ज्योग्राफिकली बेहद करीब हैं और हम जानते हैं कि इससे पहले आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहे हैं। आपको क्या लगता है आने वाले समय में भारत और चीन के रिश्ते कितना ये तय करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत रहते हैं?
1: ट्रायंगल जो हम बनाते हैं कि चीन, भारत और अमेरिका,
0: जी
1: इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो मतलब इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं,
0: जी
1: और इसीलिए चीन के साथ भी हमारे इंटरेस्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। चीन भी बहुत बड़ा इकोनॉमी बन चुका है और
0: बिल्कुल
1: सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
0: बिल्कुल
1: वो सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। उनके यहाँ ऐसी चीजें हैं जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं,
0: जी
1: वो 90% कंट्रोल करते हैं, तो ट्रेड तो करना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप भी वहां पहुंचे थे बीजिंग उनसे
0: जी
1: बातचीत करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए दबाव तो वो ट्रेड भी यूज करते हैं लोग दबाव बनाने के लिए, कि अगर आपके पास एक मोनोपोली हो किसी आइटम का, तब दूसरों को जब लेवरेज करते हैं तो आप फायदा देखते हैं अपने देश के लिए। चाइना के साथ इंडिया का ट्रेड भी बहुत बड़ा है और हमारा जो ट्रेड है वो एडवर्स बैलेंस है हमारा, हम उतना नहीं एक्सपोर्ट कर पाते। और आप आज बाजार में देख लीजिए चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड जो आइटम्स हैं, गुड्स हैं, कितने भरे हुए हैं। चाइना हमारे यहाँ मोबाइल बनाते हैं, कई चीजें हैं जो उसपे होता है। इसलिए चाइना को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिकली हम लोग बड़े इंटरडिपेंडेंट हैं, पूरी दुनिया ही आज इंटरडिपेंडेंट है। इसीलिए नेचुरली ये नेगोशिएशंस करके, और इंडिया ने भी देखा कि अगर अमेरिका इस तरह से हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाता है तो हमें फिर दूसरे मार्केट ढूंढने पड़ेंगे, हमें दूसरों के साथ भी हमें ट्रेड की जो चिंता है उसको कैसे बढ़ाया जाए वो सोचना पड़ेगा। और इसी संदर्भ में चाइना काफी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि वो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कई चीजों में तो वो अमरीका से भी आगे चला गया। तो इसलिए हमें ये रियलिस्टिक पोजीशन तो लेना ही पड़ेगा। और चाइना के पास इन्वेस्टमेंट्स है,
0: जी
1: वो तो चाहते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
0: बिल्कुल मिनाक साहब, भारतीय मूल के जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, टैक्स भरते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी जो अमेरिका के ग्रोथ रेट में बहुत अहम योगदान देती है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
1: देखिए वो तो कह रहे हैं कि हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को ओवरऑल कर रहे हैं। अब जैसे सेक्रेटरी रूबियो ने कहा दिल्ली में अपने स्पीच में कि जो नया इमिग्रेशन पॉलिसी हम कर रहे हैं शायद उससे भारतीयों को ज्यादा फायदा मिले, तो देखते हैं कि उनकी नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या बनेगी और उसमें फाइनली क्या होगा इस तरह की चीजों को सॉर्ट आउट करने।
0: पिनाक जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।
2: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ये वक्त है सांझ ढले का और सांझ ढले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

इतना बेहतरीन सा गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर की आवाज़ और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। ऐसे ही बेहतरीन गीत आप हमेशा सुनते हैं FM गोल्ड पर। जी हाँ, जब अच्छा म्यूज़िक शुरू होता है तो फिर दिल करता है कि ये जो सिलसिला है वो कभी रुके ना। और जी हाँ, बिल्कुल नहीं रुकेंगे, एक और बेहतरीन गीत आप सभी के लिए, फिल्म शर्मिली से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार,
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
5: तो क्या करूं?
6: कॉल उठाओ फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: नब्बे वर्षों की वो मधुर गूंज, अनगिनत आवाजें, अनगिनत एहसास, संगीत संस्कृति और यादों से सजा आकाशवाणी का सुनहरा सफर,
8: जहां हर कहानी में छुपा है एक दौर, हर आवाज में बसता है अपनापन,
7: जिसमें मिलिए आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानिए रेडियो जगत के उन विशिष्ट व्यक्तित्वों को जिन्होंने अपनी आवाज और प्रतिभा से पीढ़ियों के दिलों को जोड़ा।
8: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर
7: आकाशवाणी के संग यादों के रंग।

जी हाँ, और अब ये वक्त यहीं समेटने को है। और ये जो गीत अभी आप सुनेंगे, ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा, और इसी गीत के साथ मैं विमलेश फिलहाल के लिए आपसे विदा चाहती हूँ।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके?
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
1: बन गया बजट?
4: हाँ, 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया, जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई। आप भी लगवा ही दो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अल्बा लांगवा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात कर दोनों राज्यों के बीच सहयोग और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले तीन दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से दो हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
2: जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
3: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
2: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावाधिनी डॉक्टर आर गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉक्टर कलीपट्टी रामासामी पाई स्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, टागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह में दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: दिल्ली की एक अदालत ने आज कांग्रेस नेता अल्का लांबा को वर्ष 2024 में जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला करने से जुड़े एक मामले में दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने लांबा को दोषी करार देते हुए उनकी सजा पर दलीलें सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अल्का लांबा पर 29 जुलाई 2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस के काम में बाधा डालने और एक सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का आरोप लगाया था। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने आज केंद्र सरकार के उस आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई जिसमें क्लब को अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सरकार को सौंप देने को कहा गया है। न्यायालय ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए कल का दिन तय किया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब से 5 जून तक अपना परिसर वापस सरकार को सौंपने को कहा है। सरकार का कहना है कि 27 एकड़ का ये जमीन का टुकड़ा रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित बनाने के लिए जरूरी है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सरकार की मेट्रो मंडे पहल के तहत अपने आवास से दिल्ली सचिवालय तक मेट्रो और डीटीसी बस से यात्रा की। श्रीमती गुप्ता ने नागरिकों से साझा और टिकाऊ परिवहन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि अगर अधिक से अधिक नागरिक सार्वजनिक परिवहन को अपनाते हैं तो इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव कम होने के साथ साथ प्रदूषण भी कम हो जाएगा। मेट्रो मंडे अभियान के अंतर्गत दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता आज अपने आवास से दिल्ली विधानसभा तक मेट्रो से यात्रा करके पहुंचे। श्री गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ईंधन संरक्षण के आह्वान से प्रेरित ये पहल नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने और ईंधन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दिल्ली की उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत आज दिल्ली नगर निगम की आमसभा की बैठक में शामिल होने के लिए ई व्हीकल के माध्यम से कार पूलिंग करते हुए दिल्ली नगर निगम मुख्यालय पहुंची। ये प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज बताया कि सभी पार्षदों को 50-50 लाख रुपए की विकास निधि जारी की गई है। इससे विभिन्न वार्डों में नालियों का निर्माण, सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी। ये निर्णय दिल्ली सरकार निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान लिया गया। श्री वाही ने बताया कि दिल्ली की सड़कों की बेहतर सफाई और धूल नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा 14 नए यांत्रिक सड़क स्वीपर खरीदे गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई से मुलाकात की और दोनों राज्यों के आपसी सहयोग को और मजबूत करने तथा विकास के विभिन्न आयामों पर विस्तृत चर्चा की। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दोनों राज्यों का सतत विकास और परस्पर सहयोग विकसित भारत के साझा लक्ष्य को गति प्रदान करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं लिया। एक रिपोर्ट।
5: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य प्रणाली में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। राजधानी के दो प्रमुख सरकारी अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक ढांचे के अंतर्गत प्रतिष्ठित गुणवत्ता प्रमाणित मान्यता प्रदान की गई है। राजधानी के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रक्रिया में 95% से अधिक अंक

0: प्राप्त किए हैं, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ने 96% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज ओखला में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण कर यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में अहम समीक्षा की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स को उन्नत करने को लेकर पिछली सरकारों ने जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया।
1: दिल्ली में यमुना की सफाई के लिए एक बड़ा अभियान चल रहा। पिछले 25 सालों से लगातार सरकारें इंश्योरेंस देती रही, लेकिन किसी ने नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात के लिए कमिटेड है कि हमने हर सूरत में अपने 5 साल के टेन्योर में यमुना जी की सफाई करनी है, और उसके लिए जरूरी है कि जो उसके अंदर पानी आता है, जो अलग अलग जगह से एसटीपी के माध्यम से सीईटीपी के माध्यम से आता है, वो साफ जाए। हम सारे एसटीपी को सीईटीपी को जहां जहां डिसेंट्रलाइज किया जा सकता है वो भी कर रहे हैं।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के माध्यम से इस महीने की 6 से 23 तारीख के बीच दिल्ली के सभी 13 जिलों में लगभग 2,65,000 लोगों तक राहत पहुंचाई गई। लोगों को गर्मी से बचाने के लिए लगभग 1,13,900 लीटर ठंडे पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई। एक रिपोर्ट।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन यूनिट्स के माध्यम से 1 लाख से अधिक ORS पैकेट बांटे गए, जिससे लोगों को लू और पानी की कमी से बचाया जा सके। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए 40,000 से अधिक गमछे और 30,000 से अधिक कैप भी वितरित की गयी। उन्होंने बताया कि राजधानी के विभिन्न जिलों में विशेष कूलिंग जोन भी स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को आराम करने और गर्मी से राहत पाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि हर कूलिंग जोन में 100 कुर्सियां की बैठने की व्यवस्था, ठंडा जल, 5 कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। इन कूलिंग जोन के संचालन और सहायता के लिए प्रत्येक स्थान पर 10 नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार ये भी सुनिश्चित किया गया है कि मोबाइल हीट रिलीफ यूनिट्स के वाहनों की जगह प्रतिदिन बदली जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाले क्षेत्रों और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंच सके। ये अभियान जुलाई महीने तक जारी रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। कांग्रेस नेता अलका लांबा को दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2024 में जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में दोषी ठहराया। दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों ने परिसर खाली करने के केंद्र के आदेश के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। दिल्ली के पार्षदों को 50-50 लाख की विकास निधि जारी की गई है और राष्ट्रीय राजधानी में लू का येलो अलर्ट, अगले 3 दिन तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, शतावधानी डॉ आर के गणेश, उदय सुरेश कुमार और डॉ कलीपटे रामासामी पाईस्वामी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जिन प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमप्रीत कौर भुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं।

0: समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमारस्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। वित्त मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
2: Several key agreements were signed.
3: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने आज जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित जमात इस्लामी संगठन से जुड़े आतंकी वित्त पोषण मामले में 3 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां जिले के 3 स्थानों पर की गई जांच में कई आपत्तिजनक वित्तीय दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। और आज इस प्रोग्राम में राग पहाड़ी का जिक्र होगा, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत मधुर और लोकप्रिय राग है।

राग पहाड़ी, जैसा कि नाम से ही जो है समझ में आता है कि ये प्रकृति की सुंदरता और पर्वतीय क्षेत्रों के शांत स्वभाव और वातावरण को दर्शाने वाला एक अति प्रिय राग है। अगर हम इसके थाट की बात करें तो थाट इसका बिलावल है, जाति इसकी ओड़व संपूर्ण है, वादी स्वर प और संवादी स्वर सा है।

0: कही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरविंदर मांकड़, एक राइटर, एक कार्टूनिस्ट और फिल्म डायरेक्टर। आप मुझे मेरे करैक्टर मोटू पतलू से अच्छी तरह जानते होंगे। पिछले 50 साल से मैं उसे लिख रहा हूं और ड्रा भी कर रहा हूं और टीवी पे भी आ रहे हैं। संपत चंपत शेख चिल्ली और ना जाने ऐसे 500 करैक्टर्स आप सबके मोहब्बत और प्यार से इस दुनिया में मशहूर हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आकाशवाणी के बारे में। जी हाँ, मेरा बचपन जिसके साथ बीता, आज 90 साल हो गए हैं आकाशवाणी अपना 90 वर्षगांठ मनाने जा रही है। मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो मेरे घर में एक रेडियो हुआ करता था, उसके अंदर एक प्लास्टिक की तार जैसी एक लाइन होती थी और एक गोल स्विच होता था जिसको हम मैनुअल घुमाते थे और वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज को पकड़ता था। लेकिन मुझे आकाशवाणी की जो सबसे सुंदर लगती थी, सुबह सुबह की जो सिग्नेचर ट्यून आती थी सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले, यकीन माने कि मैंने एक एक प्रोग्राम को नोट किया हुआ था, जैसे कि 9 बजे ये आएगा, 6 बजे ये आएगा। मुझे आज तक याद है कि 9 बजे हवा महल आया करता था, 7 बजे फौजी भाइयों का फरमाइशी प्रोग्राम आता था, चित्रमाला आता था और इसके अलावा बहुत सारे और बच्चों के कार्यक्रम, बड़ों के कार्यक्रम। विविध भारती का अपना एक अलग मजा था क्योंकि टीवी होता नहीं था, रेडियो एकमात्र साधन था। तो एक ट्रांजिस्टर मेरे पापा ने मेरे को लेके दिया था जो मैं रात को हवा महल जिसपे सुना करता था। समय बीता, मुझे याद है ये 1977 की बात है, मैं 12 या 13 साल का था। तो उस समय धर्मवीर फिल्म रिलीज हुई थी मनमोहन देसाई की, और जहां तक मुझे लगता है पहला स्पॉन्सर्ड सॉन्ग, प्रायोजित गाना रोज सुबह 9:30 के आसपास बजता था मोहम्मद रफी की आवाज में, ओ मेरी महबूबा, ओ मेरी महबूबा। तो मैं कहीं भी खेल रहा होता था, क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जैसे ही मुझे मालूम होता था कि अब 9:30 हो गए, मैं भागता हुआ घर आता था और मोहम्मद रफी साहब का वो गीत, ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरा क्या, ये सुना करता था, इतना पसंद था मुझे। और बहुत सारे किस्से आकाशवाणी के साथ मेरे, हर दम रेडियो का दीवाना हुआ करता था मैं। बेशक आज टीवी आ गया है, बेशक आज बहुत कुछ आ गया, मगर आज भी मेरी जो पसंद है वो विविध भारती होता है या आकाशवाणी का गोल्ड होता है, क्योंकि पुराने गाने बजाते हैं, संस्कारी गाने बजाते हैं और बेहतरीन ढंग से इसमें परिभाषा से बोला जाता है, कोई उलझुल नहीं बोलते, पब्लिक को एक अच्छा संदेश देते हैं। तो मैं हमेशा कहूंगा आकाशवाणी, अभी तो 100 साल आएंगे, आप 100वीं वर्षगांठ मनाएं, फिर 1000वीं मनवाएं, खूब रहे आकाशवाणी, जैसा कोई हो नहीं सकता। आई लव यू आकाशवाणी, हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ,
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार।
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है,
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट, बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है, सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

की बात करते हैं तो सारे ग म प ध सा और अवरो सा ध प ग रे सा और जाति ओड़ हमने संपूर्ण बताई थी आपको और गाने का समय रात्रि का प्रथम पहर है। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हमने जो गीत आपको सुनवाए वो आपको पसंद आए होंगे। फिलहाल वक्त हमें अनुमति नहीं देता कि हम और आपसे बातें करें, फिलहाल थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स स्कैन का यह नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने किया जीत के साथ प्रतियोगिता का आगाज, जियोवानी पेरिकार्ड को हराकर दूसरे राउंड में प्रवेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। खेल क्षेत्र में 9 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। ओशोनिया चैंपियनशिप में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल 5 पदक जीते। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कल से जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट आज से शुरू, डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा भारत का नेतृत्व करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कुश्ती से, जहां वियतनाम में आज भी भारतीय कुश्ती पहलवानों का जो है लगातार पदक जीतने का सिलसिला जारी है। वियतनाम के दनांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियन

0: में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे और विक्की ने स्वर्ण पदक जीते। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय तानाजी धीरे ने यलमन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में विक्की ने शिरजोद पोयोनो को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने विरोधियों को पटकनी देते हुए देश के लिए कई पदक अपने नाम किए। बचे हुए मुकाबलों में इन खिलाड़ियों से पदकों की संख्या बढ़ाने की पूरी उम्मीद है। सीधे चलते अब चर्चा करते हैं फ्रेंच ओपन पर। रोलैंड गारोस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने प्रतियोगिता का आगाज जीत के साथ किया है। जोकोविच ने कड़े मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए फ्रेंच के खिलाड़ी जियोवानी एम्पेट्सी पेरिकार्ड को हराकर पेरिस में दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।
1: 39 वर्षीय नोवाक जोकोविच ने लगातार 82वीं बार किसी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में जगह बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने रॉजर फेडरर और फेलिसियानो लोपेस के साथ साझा किया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जोकोविच का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में रिकॉर्ड 80 जीत और सिर्फ 2 हार का हो गया है। नोवाक जोकोविच 2006 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से किसी भी ग्रैंड स्लैम का पहला मैच नहीं हारे हैं। पेरिस में फ्रेंच खिलाड़ियों के खिलाफ उनका अब तक का रिकॉर्ड 13-0 है। पहले सेट में नोवाक जोकोविच को पेरिकार्ड की शानदार सर्विस के सामने एक भी ब्रेक पॉइंट नहीं मिला। फिर फ्रेंच खिलाड़ी ने जोकोविच की सर्विस तोड़ दी और सेट जीत लिया। इसके साथ ही वह 14 साल में पेरिस में जोकोविच से एक सेट जीतने वाले पहले फ्रेंच खिलाड़ी बने। इसके बाद जोकोविच ने पेरिकार्ड को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया और 2 घंटे 51 मिनट तक चले मुकाबले में 5-7, 7-5, 6-1 और 6-4 से जीत दर्ज करते हुए दूसरे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
0: प्रतियोगिता में जहां नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, अलेक्जेंडर ज्वेरेव जैसे प्रतिष्ठित खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा करते नजर आ रहे, वहीं कार्लोस अल्काराज चोट के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो गए। अगर हम भारतीय खिलाड़ियों की मौजूदगी भले ही इस प्रतियोगिता में सीमित हो, लेकिन आने वाले दिनों में पेरिस की क्ले कोर्ट पर करोड़ों भारतीय निगाहें यूकी भांबरी, श्रीराम बालाजी और जूनियर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर टिकी रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्ष 2026 के लिए 9 पुरस्कार खेल के क्षेत्र में वितरित किए गए। टेनिस में विजय अमृतराज को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं पद्मश्री पुरस्कार क्रिकेट में रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को दिया गया। वहीं हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया और हॉकी कोच बलदेव सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को ऊंची कूद में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जबकि भगवान दास रैकवार को मार्शल आर्ट्स में और के पजनीवेल को सिलंबम में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुश्ती कोच व्लादिमीर मस्तिष्ली को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
2: सुश्री हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट, श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग, श्री के पजानीवेल खेल सिलंबम।
0: समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और एचडी कुमार स्वामी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। बात कर लेते ओशेनिया चैंपियनशिप में, जहां कल भारत ने कई पदक अपने नाम किए। जापान में आईएयू 24 एच एशिया और ओशेनिया चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 5 पदक जीते, वहीं पुरुषों के व्यक्तिगत इवेंट में क्लीन स्वीप किया।
3: भारतीय पुरुष टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा किया और कुल 815 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय करके टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। 23 से 24 मई तक 24 घंटे की कड़ी रेसिंग में टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। अमर सिंह देवंदा ने करीब 283 किलोमीटर की शानदार दूरी के लिए 226 लैप पूरे करके स्वर्ण पदक जीता। वहीं गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया। मेजबान देश जापान ने

0: मासा की किमोतो की अगुवाई में टीम स्पर्धा में सिल्वर अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक पर कब्जा किया। महिला वर्ग में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता। जापान की मीहो नाकाता ने 261 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करते हुए व्यक्तिगत गोल्ड मेडल 20 किलोमीटर के बड़े अंतर से जीता। उनके प्रदर्शन की वजह से जापान की महिला टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया ने रजत पदक अपने नाम किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैम।
1: टॉप अल्ट्रा रनर्स ने अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार करते हुए व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में न सिर्फ पदकों की संख्या बढ़ाई बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान भी बढ़ाया। अब सीधे ले चलते आपको झारखंड की राजधानी, जहां 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता जारी है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता जारी है। आज का दिन भी रिकॉर्ड और पदकों के लिहाज से बेहद शानदार रहा है। स्टेडियम में मौजूद हमारी संवाददाता महवीश रहमान सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। महवीश
2: जी,
1: फेडरेशन कप के चौथे दिन आज मैदान पर कैसा रोमांच देखने को मिला? हमारे श्रोताओं को आज के मुख्य परिणामों के बारे में बताइए।
2: जी प्रशांत, आज चौथे दिन मैदान पर कड़ा मुकाबला देखने को मिला। आज कई राज्यों के स्टार एथलीटों ने पदक जीतने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया, जिससे दर्शकों को बेहद करीबी और रोमांचक मैच देखने को मिले। आज की सबसे बड़ी खबर दौड़ और हाई जंप स्पर्धाओं से आ रही है, जहां नए विजेताओं ने बाजी मारी है।
1: जी बिल्कुल, तो हमारे खेल प्रेमियों को ये भी बताइए कि आज महिलाओं और पुरुषों की इन मुख्य स्पर्धाओं में किसने बाजी मारी है।
2: आज महिलाओं की 500 मीटर दौड़ में रिलायंस की स्टार एथलीट सीमा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। सीमा ने कल भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वहीं पुरुष वर्ग की 500 मीटर दौड़ में कर्नाटक के शिवाजी परशुरामा सबसे आगे रहे। इसके अलावा महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में हिमाचल प्रदेश की कुसुम ठाकुर, जबकि पुरुषों में अनिमेश कुजूर जो हमारे स्टार धावक हैं उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर हर्डल में तमिलनाडु की आर विथाया रामराज ने बाजी मारी, जबकि महिलाओं के हाई जंप में उत्तर प्रदेश की ख्याति माथुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है।
1: महवीश, ये प्रतियोगिता कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है, तो इस प्रतियोगिता में अब तक कुल 12 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो आज के इस शानदार प्रदर्शन का आगे क्या असर देखने को मिल रहा है?
2: जी, जैसा कि हम सब जानते हैं जो यहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलेंगे। तो प्रतियोगिता के शुरुआती दिन में गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके और तेजस्वी शंकर ने जो नेशनल रिकॉर्ड बनाए थे उसका उत्साह आज चौथे दिन भी खिलाड़ियों में साफ दिखा। आज विधाया रामराज, ख्याति माथुर, सीमा और शिवाजी जैसे खिलाड़ियों ने उनकी जीत ने साबित कर दिया है कि भारतीय एथलेटिक्स का भविष्य बेहद सुरक्षित हाथों में है। इससे पहले कल पुरुष पोल वॉल्ट में मध्य प्रदेश के देव कुमार मीणा और कुलदीप कुमार ने 5.45 मीटर की ऊंचाई पार कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। काउंटडाउन नियम से देव कुमार को स्वर्ण और कुलदीप को रजत पदक मिला और दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन से तो हमें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए देश को कई मेडल की उम्मीदें अब जाग गई हैं।
1: जी महवेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्रतियोगिता पर विस्तृत जानकारी हमारे साथ साझा की। ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप 26 से 31 मई के बीच जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाएगा। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की चयन समिति ने 22 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित कर दी है। इस टीम में ओलंपिक में दो पदक अपने नाम कर चुकी मनु भाकर और उनकी साथी ओलंपियन और विश्व चैंपियन पदक विजेता ईशा सिंह शामिल हैं। एक नजर भारतीय निशानेबाजों पर।
3: इस प्रतियोगिता की शुरुआत 25 मीटर पिस्टल विमेन्स प्रिसीजन स्टेज इवेंट से होगी। इसके साथ ही 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष वर्ग का क्वालिफिकेशन राउंड और महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन का एलिमिनेशन राउंड भी शुरू होगा, जिसके बाद 10 मीटर एयर राइफल मेंस इवेंट के लिए क्वालिफिकेशन राउंड होगा। पहले दिन दो फाइनल मुकाबले होंगे। इन इवेंट्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मेंस और 10 मीटर एयर राइफल मेंस शामिल है। इस विशेष कप के लिए 80 देशों के कुल 696 एथलीट्स ने दावेदारी पेश की है, है। भारतीय टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का एक बेहतरीन मिश्रण है। दो बार की ओलंपियन और पूर्व एशियन गेम्स की चैंपियन राही सरनोबत म्यूनिख में सबसे सीनियर भारतीय निशानेबाज होंगी। अन्य अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों में मौजूदा विश्व चैंपियन सम्राट राणा, पूर्व विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट अनिश भानवाल, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, वर्ल्ड चैंपियनशिप सिल्वर मेडलिस्ट एलाविनिल वलारिविन, वर्ल्ड कप फाइनल विजेता सुरुचि सिंह और मौजूदा म्यूनिक मिक्स टीम चैंपियन अर्जुन बबूता शामिल है। भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वालों में पुणे की 22 वर्षीय साक्षी पाड़ेकर है। दूसरी तरफ 18 वर्षीय सूरज शर्मा म्यूनिक में भारत की तरफ से पहली बार हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों में सबसे युवा है। वहीं 23 वर्षीय अजेंद्र सिंह चौहान ने घरेलू प्रतियोगिताओं में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में जगह बनाई है। म्यूनिक में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के साथ भारत के लिए अपने पहले ओलंपिक इवेंट में हिस्सा लेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: नॉर्वे के ओस्लो में आज से शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा की मौजूदगी में भारतीय दल टूर्नामेंट में खिताब के अपने सूखे को खत्म करने की कोशिश करेगी। बात आईपीएल पर, आईपीएल के लीग मुकाबलों के कल समापन के साथ ही प्लेऑफ की चार टीम फाइनल हो गई हैं। प्रतियोगिता में अब तक कई रिकॉर्ड्स बने और कई ध्वस्त हुए। जानते हैं अब तक खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन।
4: अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला क्वालिफायर वन में दूसरे स्थान पर काबिज गुजरात टाइटन से 26 मई को धर्मशाला में होगा, जबकि तीसरे और चौथे स्थान पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला एलिमिनेटर में 27 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। क्वालिफायर वन जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी। वहीं क्वालिफायर वन में हारने वाली टीम और एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम का मुकाबला 29 मई को न्यू चंडीगढ़ में होगा। इस मैच को जीतने वाली टीम को फाइनल में जगह मिलेगी। फाइनल मुकाबला 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। हम ऑरेंज कैप की रेस की बात करें तो वहां साई सुदर्शन 638 रनों के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। वहीं 616 रनों के साथ शुभमन गिल दूसरे, हेनरी क्लासन 606 रन के साथ तीसरे और केएल राहुल 594 रन बनाकर चौथे स्थान पर हैं। वैभव सूर्यवंशी 583 रनों के साथ पांचवें स्थान पर हैं। पर्पल कैप के लिए भुवनेश्वर कुमार 24 विकेट और बेहतर इकोनॉमी के साथ पहले, कासिगो रबाडा 24 विकेट के साथ दूसरे, जोफ्रा आर्चर और अंशुल काम्बोज 21 विकेटों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर हैं।
1: और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्म

0: नरेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
0: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: High international crude prices and
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
6: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा

0: यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
3: Padma Vibhushan, Shri Dharmendra Singh Deol, Marnoprant, Kala Film Abhinay, Unki Patni, Shrimati Hema Malini.

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289904044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका?
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क।

0: है, उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था। उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन, जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहां पे ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं, उन सब के बारे में वहां पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहां पे अपना ढूंढ सकते हैं।
1: ऐसे जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया, और सीनियर सिटीजन के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
0: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहां पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहां पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं उसके बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहां पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहां के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहां पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती हैं, उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे, और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
1: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी, ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरियाट्रिक केयर गिवर का वहां पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा, और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा, इसके अलावा वहां पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू भी,
1: ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहां के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा, पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी नगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी,
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो, कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के

0: जी जी जी मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना हो और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी। जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
1: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना जरूरत नहीं है।
0: जी थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
1: जी, थैंक यू कमलकांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
0: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
1: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळ सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत, तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल। अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्या वयोश्री केंद्र है, वहां पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं। तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है।
0: जी, और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं। उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा।
1: जी, संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी। आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूंगी। जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता। दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ। तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में। चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहां पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहां से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहां कहां से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहां अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है। इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है, जहां पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी।
0: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी?
1: जी, इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी,
0: ताकि लोगों को आसानी हो।
1: जी, और जो संजीवनी
0: संजय सूरी जी। और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी।
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल। ये इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुंच बना सकते हैं। मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक, जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चल नहीं सकते हैं, उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं? तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके। जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा है, ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं। जी,
0: सुझाव दे रहे हैं अमित जी की दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो।
1: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए। हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं। तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहां भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं। वहां भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है, तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुंचे।
0: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का। मोनाली जी, अगर देखूं, जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है?
1: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूंगी। हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन हैं, 40-45 मिनट सिर्फ बोलते हैं, क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहां पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने, माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे, बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करे।
0: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
1: जी
0: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूं, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई, और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
1: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए है आभा कार्ड, उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स है जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैकएंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
0: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध हैं, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन हैं। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो,
0: नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी धन्यवाद, मैं श्रीपद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ और वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का

0: अब मिल सकता है, कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है, मतलब हम लोगों
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
2: को। श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं, सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ,
2: अच्छा,
1: उन्होंने बताया वृद्धाश्रम में।
2: वृद्धाश्रम से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है, इसमें तो हर जानकारी है, इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहां से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
2: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने भी प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेस ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन। उसके तहत ना ही, जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियां।
1: जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: आप सभी लोगों को आगामी पर्व जो है हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
3: जी। और हाँ जी, मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
2: जी रशीद जी, आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 1-4-5-6-7 ये जो हेल्पलाइन है, इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी मिलेगी, इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है, इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहां के वहां पहुंचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं, 1-4-5-6-7 और जो कनेक्टेड है 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
2: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए, अभी पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी,
2: प्रेस के तहत और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहां पे इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुंचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है, तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है, तो उधर भी उपलब्ध होगी जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहां पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
2: जी, अगर वहां पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से, सासाराम से, अगर वहां पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, वो उसकी पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी
1: जी। दिल्ली से जुड़े

0: राजकुमारी जी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ
0: जी।
1: और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
0: जी।
1: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
0: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें आपके बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
2: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहां पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स है उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्री वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
0: जी, तो इसमें जैसे आपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
2: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरैक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी आईसी मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
0: जी, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
3: नमस्कार।
0: आपका सवाल?
3: हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गांवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है कृपया बताएं।
0: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं ये प्रयास है पहुंचे?
2: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की जरूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
0: अगर उन्हें का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें?
2: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है। नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने। मध्य प्रदेश
2: मंत्रालय ने
0: जी। राजेश नेमा जी।
4: जी
0: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
4: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: जी,
4: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बिठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
0: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567 और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
0: जी, तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
2: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी इसके लिए काफी प्रयास

0: करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके इससे साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इसी से हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
1: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
0: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से एप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पे जोड़ते जाएं।
1: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की, इस बारे में धन्यवाद। और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000।

0: चांद पर डे नाउ एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोटेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. Legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.J. Kumaraswamy were present. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said that more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among the tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Omar Abdullah announced a probe into the malfunction and said that action would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery, and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, or SIDBI, today, Ms. Sitharaman called for increased focus on the 3 Fs, that is fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
3: The West Asia crisis.

0: crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
1: External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi, and Secretary of State of the US Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The Inter-Meteorological Department, IMD, has issued a red alert for warm night conditions over Madhya Pradesh, Orissa, Telangana, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. The weather agency has forecast heat wave to severe heat wave conditions over Haryana, Chandigarh, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during the next 2 to 3 days. Similar conditions are likely to prevail over Chhattisgarh, coastal Andhra, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand and Uttarakhand till tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In 57kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yalaman Amagaldiyev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in 97kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzod Boyanov. And the first BRICS 2026 Tourism Working Group, or TWG, meeting was successfully convened virtually today. The meeting was chaired by the Joint Secretary in the Ministry of Tourism. The meeting served as an introductory and preparatory platform for advancing this year's tourism cooperation agenda. And that is the end of this news bulletin.
2: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में क्वाड बैठक में भाग लेंगे। श्रीलंका ने नई निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति योजना के अंतर्गत भारतीय पर्यटकों को 30 दिनों के तक बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी। बांग्लादेश के टांगेल जिले में ट्रक के पलटने से 15 लोगों की मौत। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
3: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: श्री जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। उन्होंने कहा कि दोनों देश ऊर्जा आयात करने वाले देश हैं और उनके समुद्री हित भी हैं। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने आज ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री

0: मजीद तख्त रावांची से बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बातचीत में क्षेत्र के हालिया घटनाक्रमों और द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगेर गालिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची आज कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। वार्ता होर्मुज जलडमरू मध्य और ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाखाई ने कहा है कि अमेरिका के साथ चल रही वार्ता फिलहाल संघर्ष को समाप्त करने पर केंद्रित है और परमाणु मुद्दे पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। ईरान ने कहा है कि वह होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि जहाजों के सुरक्षित गुजरने के लिए एक व्यवस्था बनाने हेतु ओमान के साथ मिलकर काम कर रहा है। ईरान की नौसेना ने आज घोषणा की कि 32 जहाजों के एक बेड़े ने सफलतापूर्वक जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका सरकार ने आज से भारत सहित 40 देशों के नागरिकों के लिए निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति योजना शुरू की है। योजना के अंतर्गत भारतीय पर्यटक वीजा शुल्क का भुगतान किए बिना श्रीलंका की यात्रा कर सकेंगे। भारतीय यात्रियों को अब तक श्रीलंका में प्रवेश करने से पहले 30 दिनों का पर्यटक निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति प्राप्त करने के लिए शुल्क देना पड़ता था। नई नीति के अंतर्गत भारतीय नागरिक ऑनलाइन निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना जारी रख सकते हैं, लेकिन 30 दिनों तक के अल्पकालिक प्रवास के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। आव्रजन विभाग ने कहा कि शुल्क छूट के बावजूद आगमन से पहले निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में आज एक तेज रफ्तार बस सड़क के किनारे खड़ी एक दूसरी बस से टकरा गई, जिससे कम 17 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा मर्दान जिले में स्वात एक्सप्रेसवे पर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, जबकि बचाव दल घटनास्थल पर राहत कार्य जारी रखे हुए है। ये बस यात्रियों को स्वात घाटी ले जा रही थी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित अपरदीर और बाजौर जिलों के रहने वाले थे। संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईद अल अधा से पहले सुधार और पुनर्वास केंद्रों से 956 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिया कि वे उनकी सजा से जुड़ी सभी वित्तीय देनदारियों और अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने का निपटारा करें। अमीरात के कई अन्य राज्यों में भी इसी तरह के क्षमादान उपायों की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने विभिन्न राष्ट्रीयताओं के 836 कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। रास अल खैमा में 443 कैदियों को रिहा कर दिया गया, जबकि अजमान ने 230 कैदियों और शारजाह ने 227 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की। फुजराह में अच्छा आचरण दिखाने वाले 104 कैदियों को क्षमादान दिया गया। उम अल क्वैन के अधिकारियों ने भी छुट्टी से पहले कई कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दी है। अधिकारियों ने कहा कि ये क्षमादान महत्वपूर्ण धार्मिक अवसरों के दौरान मानवीय मूल्यों, करुणा और पारिवारिक एकता के प्रति संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार।
0: ब्रिक्स देशों के पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की। बैठक में भारत ने पर्यटन सहयोग के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक इस वर्ष अगस्त में राजस्थान के जयपुर में आयोजित की जाएगी। इसके बाद ब्रिक्स देशों के

पर्यटन मंत्रियों की बैठक भी होगी। युगांडा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इबोला संक्रमण के 2 नए मामलों की जानकारी दी है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। ये सभी मामले पड़ोसी देश कांगो में फैले इबोला से जुड़े हैं। कांगो के अधिकारियों ने बताया है कि देश के पूर्वी हिस्से में चल रहे इस प्रकोप में इबोला के संदिग्ध मामलों की संख्या अब 9 से ज्यादा हो गई है। कांगो के संचार मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 904 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और 119 संदिग्ध मौतें हुई है। श्रीलंका में खराब मौसम के कारण बड़े स्तर पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। पूरे द्वीप पर लगभग 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सक्रिय होने से तेज बारिश और हवाओं के कारण 31,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। उधर नेपाल में मौसम विभाग ने तराई जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और 2 प्रांतों के पहाड़ी इलाकों में गर्म दिन की स्थिति की संभावना जताई गई है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी के लोग भीषण गर्मी से प्रभावित हुए हैं। वियतनाम के दा नांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेलरी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोद पोयोनो को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में क्वाड बैठक में भाग लेंगे। श्रीलंका ने नई निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक यात्रा अनुमति योजना के अंतर्गत भारतीय पर्यटकों को 30 दिनों तक बिना वीजा प्रवेश की अनुमति दी। बांग्लादेश के टांगेल जिले में ट्रक के पलटने से 15 लोगों की मौत। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। हर सिंगार का ये सफर लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। अक्सर हम बात करते हैं प्यार की, तो प्यार क्या है? प्यार मानवीय संवेदनाओं का सबसे सुंदर और गहरा रूप है। अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि क्या प्यार की कोई उम्र है। वास्तव में तो ये है कि प्यार किसी कैलेंडर की तारीखों या फिर चेहरे की झुर्रियों का मोहताज नहीं होता। ये एक ऐसा एहसास है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक अलग अलग रूपों में हमारे साथ चलता रहता है।

लता और मनमोहन सिंह की आवाजों में आपने ये गीत सुना फिल्म वारिस से। बचपन में प्यार का जो रूप होता है वो निस्वार्थ होता है और बहुत ही मासूम होता है। एक बच्चे का अपनी माँ के गोद के लिए तड़पना या फिर पिता की उंगली थाम कर चलना प्यार का पहला पाठ होता है। यहाँ प्यार की उम्र केवल कुछ महीनों या साल होती है, जहाँ

सुरक्षा और ममता ही सब कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे उम्र बढ़ती है, बच्चा किशोरावस्था में कदम रखता है, प्यार में आकर्षण और रोमांच जुड़ जाता है। और ये वो उम्र होती है जब दिल की धड़कनें किसी खास के नाम पर तेज होने लगती हैं, और अक्सर लोग इसे कच्ची उम्र का प्यार भी कहते हैं।

0: फिल्म आए दिन बहार के से ये गीत सुना आपने लता और महेंद्र कपूर के आवाजों में, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर है हर सिंगार का और आज हम इसमें बात कर रहे हैं कि क्या प्यार की भी कोई उम्र होती है। बात हो गई कि बचपन का प्यार कैसा होता है और किशोरावस्था का क्या है, और अब हम आ गए हैं युवावस्था में। तो प्यार इस उम्र में, प्यार समझदारी और स्थिरता की तलाश में रहता है। यहाँ व्यक्ति सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि विचारों और फिर भविष्य के सपनों से जुड़ता है। ये उम्र साथी के साथ जीवन बिताने के संकल्प की होती है। लेकिन ये बताएं कि क्या प्यार यहीं रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे क्या होता है ये भी बताएंगे इस गीत के बाद जो हम लेकर आए हैं आपके लिए, फिल्म घरोंदा से।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये कार्यक्रम है हर सिंगार का, जिसमें आपके साथ मैं हूँ माधुरी, और हम बात कर रहे हैं प्यार की उम्र की, प्यार की असली परीक्षा, और उसकी सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो बुढ़ापे में नजर आती है, जब शरीर साथ छोड़ रहा होता है और याददाश्त भी धुंधली होने लगती है, तब एक दूसरे का हाथ थामे बैठना ही प्यार की पराकाष्ठा हो जाती है। झुर्रियों से भरे हाथों को चूमना और फिर बिना कुछ कहे एक दूसरे की तकलीफ को समझ लेना ही ये बताता है कि प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता।

ये प्यारी सी कव्वाली सुनी आपने मन्ना डे की आवाज में फिल्म वक्त से। समाज अक्सर प्यार को उम्र की सीमाओं में बांधने की कोशिश करता है, पर यह हर उम्र में नया, ताजा और प्रासंगिक बना रहता है। यदि दिल में किसी के प्रति सम्मान है, परवाह है और समर्पण है, तो प्यार हर दौर में जवा रहेगा। प्यार तो वो अमर झरना है जो जीवन के हर पड़ाव पर इंसान को जीवंत बनाए रखता है।

फिल्म बाहर आने तक से गीत सुना आपने और हरसिंगार का ये कार्यक्रम अब यहीं तक। अब से कुछ देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा

0: सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the 3 Fs. Fuel, fertilizer and forex amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
2: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. all of them coming together, it's a big challenge.

आप जुड़े हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए शुरू करते हैं सफर गीत मेरे मनमीत। साथ हूं आज मैं आपके माधुरी। गीत मेरे मनमीत में सुनिए सदाबहार फिल्मी गीत, वो भी बिना रुके।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ट्यून किया आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये सफर जिसे आप सुन रहे हैं वो है गीत मेरे मनमीत का, जिसमें हम लेकर आपके लिए आते हैं गोल्डन एरा के गोल्डन गीतों को, वो भी बिना रुके।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है और दीजिए माधुरी को विदा। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस,
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाले नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और ये सफर है निशिगंधा का। सैर कर दुनिया की गफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी कर कुछ रही तो ये नौजवानी फिर कहाँ। ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर और इन पंक्तियों में बहुत कुछ छुपा है। इन पंक्तियों ने हमेशा ही मुझे आवाज दी, हिम्मत दी, उठकर चल पड़ने को साहस दिया। कुछ तो था इन पंक्तियों में जिसने हमेशा मुझे जगाया है। आज सोचा कि इन पंक्तियों के मतलब को आपसे भी साझा करूं निशिगंधा के बहाने।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक यात्रा है। इसे छोटे छोटे दायरों में जीने की बजाय खुलकर जीने का नाम ही तो जिंदगानी है। सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, ये पंक्ति मात्र नहीं है बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें आमंत्रित करती हैं कि दुनिया की सैर करो, उसके रंग रूप, संस्कृतियों को, स्वादों को, अनुभवों को अपना लो। जब तक सांस है तब तक जियो, बिना किसी बंधन के, बिना किसी डर के जियो, बिना किसी पछतावे के जियो, क्योंकि ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। जी हाँ, फिर कहाँ मिलेगी ऐसी जिंदगानी।

देखिए ना, आज का हर इंसान बहुत से नियमों से, अपेक्षाओं से और भय के पिंजरे में कैद है। समाज कहता है ऐसा करो, वैसा मत करो। फिर धर्म कहता कुछ और ही है। परिवार कहता है स्थिर हो जाओ, बस जाओ। लेकिन गाफिल जिंदगानी बंधनों से मुक्ति का नाम है। इसका मतलब संकीर्णता से मुक्ति है। ये कहती है कि दुनिया का हर कोना अद्भुत है। पहाड़, समुद्र, जंगल, शहर, गांव, अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, सब कुछ देखो। दुनिया घूमने का मतलब केवल पर्यटन नहीं है, ये अनुभवों का संग्रह है। जितना आप ज्यादा लोगों को जानेंगे, संस्कृतियों को पहचानेंगे, आपका अनुभव, आपका ज्ञान उतना ही बढ़ता है। और ज्ञान ही इंसान में समझ को बढ़ाता है, इंसान को असल मायनों में इंसान बनाता है।

बिल्कुल, यादें छोड़ जाता है और बहुत सारी यादें वो समेट भी लाता है। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये सफर है निशिगंधा का। आज हम बात कर रहे हैं उन खास पंक्तियों की जिसमें सचमुच जीवन का दर्शन छिपा है, और वो पंक्तियां हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी अगर कुछ रही तो जवानी फिर कहाँ। और लोग घूमते हैं देश विदेश न जाने कहां कहां और बटोरते हैं ढेर सारे अनुभव। जब आप इटली के रोम में कोलेजियम के खंडहरों के सामने खड़े होते हैं तो इतिहास जीवंत हो उठता है। जापान के चेरी ब्लॉसम के नीचे बैठकर साकुरा देखते हैं तो क्षण भंगुरता का सबब मिलता है। जब राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की पीठ पर सूर्यास्त देखते हैं तो लगता है कि जीवन कितना विशाल है। हर जगह इंसान की कहानी अलग अलग है, फिर भी पता है क्या एक है। एक चीज एक है कि वो एक ही चाहत में घूमता है और वो चाहत है खुशी की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है निशिगंधा का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ। और आज टटोल रहे हैं कुछ शब्दों के अर्थ निशिगंधा के बहाने। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, इस लाइन में छुपा है जिंदगी का फलसफा, जिसे ढूंढ रहे हैं हम, जिसे कह रहे हैं हम, जिसे गुनगुना रहे हैं हम और जिसे गा रहे हैं हम।

0: मोहब्बत कभी कभी।
1: गाफिल जिंदगानी यानी बेसुध बेखबर। सच्ची जिंदगी तो तब शुरू होती है जब हम तेरा मेरा का भेद मिटा देते हैं। ये जिंदगानी हमें सिखाती है कि सुख वस्तुओं में नहीं, अनुभवों में है। नया खाना खाना, नई भाषा सीखना, अनजान लोगों से दोस्ती करना, गलतियां करना और फिर उन गलतियों से सीखना, यही तो जीवन है। अनुभवों का असली नाम ही जीवन है और जीवन में हमें तरह तरह के अनुभव लेते रहने चाहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सफर है निशे गंधा का और हम बात कर रहे हैं सैर कर दुनिया के गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। इसी सफर में फिर कहाँ, ये सवाल बहुत गहरा है। मौत के बाद क्या, कोई नहीं जानता। स्वर्ग नर्क की कहानियां तो सिर्फ कहानियां ही हैं, जो कुछ है वो यही है, इसी धरती पर है, इसी वक्त में है। अगर यही नहीं जिया तो फिर कहाँ जाना है, अगर यहाँ नहीं जिया तो फिर कहीं और जाकर भी क्या मिलने वाला है। कई लोग कहते हैं पैसे नहीं है, समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि कभी भी कोई भी समय परफेक्ट नहीं आता कि हाँ सब कुछ बढ़िया होगा और फिर हम कहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता। समय को अपने लिए परफेक्ट बनाना पड़ता है और इसके लिए आप ही को प्रयास करना पड़ेगा। ये जो समय बहुत तेजी से भाग रहा है ना, इसे थोड़ा रोक लीजिए अपने लिए।

ये जीवन दर्शन हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ कमाने और खर्च करने वाली मशीन नहीं हैं, हम महसूस करने वाले, अनुभव करने वाले प्राणी हैं। इतनी सुंदर धरती है, हमारी आत्मा को हवा चाहिए, रोशनी चाहिए, नई नई सुगंध चाहिए। जब तक हमारा शरीर साथ दे रहा है, तब तक सैर करो। अंत में यही कहना चाहूंगी, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी का मतलब है खुलकर जीना, बेखौफ जीना और प्रेम से जीना। आप अपने अनुभवों को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें आकार दे सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं, कोई कविता या गीत बन सकती है आपका अनुभव, किसी को राह दिखा सकती है, रिपोर्टाज बन सकती है। और ये जो इतना सुंदर चित्रकार है, उसने जो ये चित्रकारी की है, हमें अलग अलग अनुभव देने के लिए, हमें जीवन का दर्शन देने के लिए, तो हमें उन चीजों को देखना और समझना चाहिए। इसी के साथ दीजिए माधुरी को निशिगंधा से इजाजत। ये आखिरी गीत निशिगंधा का आप सभी के लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान सीएसआईआर और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान एनआईएएस के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं गीत सुहाने, जिसमें आप सुनते हैं ओल्ड क्लासिक्स। और आज की रात आपके साथ मैं हूं माधुरी।

ये जिंदगी तो ऐसी ही है, किसी के लिए मुश्किल है तो किसी के लिए आसान है। ये गीत सुना आपने फिल्म CID से मोहम्मद रफी और गीता जी के आवाजों में। और अगला गीत आपके लिए ये रहा।

लतार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप, फिल्म गूंज उठी शहनाई से, संगीत दिया वसंत देसाई ने।

नवरंग फिल्म से ये प्यारा सा गीत आप सभी सुन रहे थे महेंद्र कपूर के आवाज में, संगीत सी रामचंद्र का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह

0: 12 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: क्या है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

0: PIR at 90.
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह सफर है गीत सुहाने का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स।

0: भाई किसी का साथ ही ऐसा हो कि मन कर जाए कि दिन और रात बस उसी के साथ रहें, तो क्या बात है। और ये जो बात हुई ये हुई फिल्म मिस बॉम्बे में, और आवाज़ें थीं सुमन और मोहम्मद रफ़ी साहब की। हंसराज बहल का संगीत था। और अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं अब, जो हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म चलती का नाम गाड़ी से।
1: मगर आपने तो कहा था कि तुमने तो कहा था कि कुछ काम वाम करने का है। यहाँ तो कुछ गाड़ी वाले भी नहीं दिखाई देती, मैं मरम्मत किसकी करूंगा?
2: अरे गाड़ी की मरम्मत किसी और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता।
1: और भला क्या काम हो सकता है?
2: और बहुत से काम हो सकते हैं।
1: जैसे?
2: कर सकोगे?
1: मैं हर काम कर सकता हूँ।
2: सोच लो।
1: सोच लिया।
2: और अगर ना कर सकी तो?
1: हार मान जाऊंगा।
2: ऐसे नहीं, कोई शर्त होनी चाहिए।
1: क्या?
2: हाँ, अगर तुम हार गए तो ये टोकरी उठाकर सारा दिन साथ घूमना पड़ेगा।
1: टोकरी?
2: मंजूर।
1: मंजूर, काम तो बताइए।
2: जरा सोच तो लू।
1: हाँ।
2: वो देखते हो वो?
1: हाँ हाँ।
2: क्या?
1: मुर्गी।
2: हाँ पकड़ लाओ।
1: मुर्गी?
2: हाँ।
1: ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी पकड़ता हूँ। ये लीजिए।

कुछ गाने होते हैं ना कि जब भी सुनो तो मन जो है रिफ्रेश सा हो जाता है, फ्रेश कर देता है मन को, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे सिंटर फ्रेश की तरह इसकी भी टेस्ट आती है इस गाने की। और ये जो गीत था, ये था फिल्म चलती का नाम गाड़ी से, आवाज़ें किशोर कुमार और आशा जी की, और संगीत एस टी बर्मन साहब का।

फिल्म अलबेला से ये गीत सुना आपने चितलकर लता जी और कोरस की आवाज में, संगीत चितलकर रामचंद्रन का।

फिल्म मल्हार से ये गीत आप सुन रहे थे लता और मुकेश की आवाज में। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म बैजू बावरा से लता जी की आवाज में।

0: अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन 3 महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, six with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Raja was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. Union Home Minister Amit Shah congratulated all the luminaries and changemakers who have been conferred with Padma Awards by President Draupadi Murmu. In a social media post, Mr. Shah said, Prime Minister Narendra Modi has reoriented Padma Awards as an institution to drive socio-economic progress by honoring the real changemakers, strengthening the society at crossroads. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of the NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Omar Abdullah announced a probe into the malfunction and said action would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI, yesterday, Ms. Sitharaman called for increased focus on the three Fs, that is, fuel, fertilizer and forex, amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
1: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States, Marco Rubio, will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Union Minister Science and Technology Dr. Jitendra Singh yesterday met a high-level delegation led by Secretary General Minister of Science, Innovation and Universities of Spain Dr. Eva Ortega Peino in New Delhi yesterday. The meeting reflected the growing momentum in India-Spain scientific engagement and the shared commitment of both countries to deepen collaboration in futuristic and technology-driven sectors. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई का ये सफर लेकर मैं माधुरी हूँ आज की रात आप सभी के साथ।

तूने खलवत में कभी ये भी तो सोचा होगा, तू न होगा तो मेरे दिल में अंधेरा होगा। आंख में ठहरे समंदर ये पता देते हैं, दिल के सहरा पे कोई अब्र तो बरसा होगा।

दिन को भटकूंगा तेरी प्यास का सहरा बनकर, रात खो जाऊंगा तुझ में तेरा साया बनकर। मैं के मंजिल था कभी तेरे एक ख्वाब की, अब रह गया हूं तेरा एक भूलता रास्ता बनकर। उसने अच्छा किया ठुकरा दिया मुझको, वरना खुद उसे जीना ही पड़ता मेरे जैसा बनकर।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात माधुरी है आप सभी के साथ।

तुम्हारे खत में नजर आई इतनी खामोशी कि मुझको रखने पड़े अपने कान कागज पर।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

जी हाँ, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और ये सफर है रात सुरमई का, जिसे लेकर आज की रात मैं माधुरी हूँ आप सभी के साथ। उम्मीद करती हूँ कि इस सफर के गीतों गजल आपको पसंद आ रहे होंगे और आपकी रात भी हमारी रात की तरह अच्छी गुजर रही होगी। और कई बार बातों ही बातों में ऐसी बातें हो जाती हैं कि लगता है कि खामोशियों को सुनना शुरू कर दें। कुछ हिस्सा ही है अगला गीत, कुछ ना कहो।

खुशबुएं लहरें समंदर पे कोई बात होगी, प्यार में आगे बढ़ेंगे तो प्यार की कोई किताब होगी।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान

राजस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉ. ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के एनपीएफ में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात के 3:11 और 15 सेकंड हुए हैं। सुस्वागतम, आप सभी का स्वागत करते हुए हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यादें भी क्या हैं और कब बिन बुलाए दस्तक दे देती हैं, और हमें भी जब आपकी याद आती है हम आपसे मिलने पहुंच जाते हैं। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। ना जाने कौन सी खूबी है तुझ में, जो तू दूर होकर भी दिल के सबसे करीब है। और दिल कहता है मत तड़पाओ उन्हें, और यादें कहती हैं बस उन्हीं के हो जाओ। तेरी यादों का समंदर कुछ ऐसा है कि हर लहर दिल को छूकर गुजर जाती है। कितनी अजीब है ये दिल की कश्मकश भी, यादें तो उनकी आती हैं और सांसें हमारी रुक जाती हैं।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म पतिता से ये गीत आपने अभी सुना। नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं, हम घबरा के अपनी आंखें झुका लेते हैं। कैसे मिलाएं हम उन आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जाने अनजाने से अभी आपने गीत सुना। वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, वादा नहीं कोई ना ही कोई कसम, फिर भी तुझसे प्यार है और

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं कारवां फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में।

अक्सर तन्हा चांदनी रातों में, अक्सर तन्हा चांदनी रातों में मन की खामोशी है और दिल कुछ कहना चाहता है। आइए सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आवारा फिल्म से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जानो कहा अब तुम हो जवां मेरी जान धड़क पन।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म तीन देवियां से ये गीत आपने सुना। इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, इस बारिश पर ना जाओ मेरी आंखों में देखो, दिल के दरिया में कहीं एक तूफान उठा होगा। आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म 9 2 11 से ये गीत।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म रंगीला रथ से ये अभी गीत आप सुन रहे हैं। और इसी के साथ ही हम राही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी

0: 53वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृहमंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधनों निर्देशनों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक साधन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। आरबीआई ने कहा है कि यह कदम सहकारी बैंकों में बेहतर प्रशासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी जारी की है। डीजीसीए ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, two were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in the cabins of the Gulmarg gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials yesterday said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children.

सुबह के 4:11 और 10 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर हमारा मन खुश है तो हमें सब जगह अच्छा ही नजर आता है। जमी, आसमां, सब कुछ अच्छा ही दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क

अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, दिल में जो भी बातें हैं वो किसी अपने के साथ जरूर शेयर कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपके मन का बोझ भी हल्का हो जाता है।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में फिल्म जोशीला से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, बेकार की दुख चिंता में अपना समय मत गवाइए, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहता है। आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा से ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं खानदान फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में।

जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है दोस्तों, बस ये आपको देखना है कि इसे जीना किस अंदाज में है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अंदाज से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी

मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म जिगरी दोस्त से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, घबराना नहीं है, क्योंकि जिंदगी का असूल है तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म रेशमी रुमाल से ये गीत।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म गीत गंगा से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशी उन्हें मिलती है जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी की शर्तों को बदल देते हैं। आइए सुनते हैं वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ ही अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति गंगटोक में आज शाम नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। राष्ट्रपति कल नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे आज राजस्थान

0: के बीकानेर पहुंचे हैं, जहां वे 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज सुबह वे बीएसएफ की साचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे और सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दोपहर में वे बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधिकारी, बीएसएफ अधिकारी, साथ ही 5 सीमावर्ती जिलों के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। रिजर्व बैंक आरबीआई ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में आरबीआई शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। President Draupadi Murmu yesterday conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam was also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. In keeping with the Quad vision for a free and open Indo-Pacific, the ministers will build on discussions held in Washington, D.C. on 1st July last year. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg gondola ropeway have been rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials said more than 300

सुबह के 5:11:13 हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की बेला है और ऐसे में ध्यान को प्रभु सिमरन में लगाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा भजन जो गाया है तनुश्री कश्यप शर्मा ने।

दोस्तों, गीत गाते गुनगुनाते जिंदगी का ये सफर बिताते चलो, हंसते मुस्कुराते ये प्यारे से पलों से अपने को महकाते चलो।

जसपाल सिंह और साथियों की आवाज में फिल्म गीत गाता चल से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जिंदगी में आए हैं तो बिछड़े हुओं को मिलाते चलो और मंजिल की धुन में झूमते गाते चलो, बिल्कुल इस गीत की तरह। अनोखी अदा फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में, फिल्म घर संसार से।

0: दोस्तों, हम सभी एक मुसाफिर की तरह ही यहाँ पर हैं। बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए और चलते रहिए।
1: मुसाफिर
0: किशोर कुमार की आवाज में परिचय फिल्म से सुनते हैं ये गीत।